मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स एफएम बैंड, 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 19 जून सन 2026, सुबह के 5:57 होने को है। अब हमारी पहली सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार। हम
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित

0: होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सदियों से जमाने का ये अंदाज रहा है, साया भी जुदा हो गया जब वक्त पड़ा है। हर लम्हे में सदियों का अफसाना होता है, गर्दिश में

रोम रोम में बसी है तेरी यादों की खुशबू, हर धड़कन में बस तेरा ही नाम है, मेरे रोम रोम में समाया है तेरा एहसास, तू ही मेरी सुबह, तू ही मेरी शाम है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं, लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
1: भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य एवं अद्वैत के अन्य आचार्यों ने मुक्ति की आकांक्षा अथवा मुमुक्षुत्व को ज्ञान के पथ का अनुसरण करने वाले साधक की 4 अत्यावश्यक अर्हताओं में से एक बताया है, दोष का अग्रदूत है। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि भोर के सन्निकट होने पर पूर्वाकाश ललाम हो उठता है और कोई भी जान सकता है कि शीघ्र ही सूर्योदय होगा। उसी तरह यदि आप किसी व्यक्ति को ईश्वर के लिए व्याकुल देखें तो आप

0: निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि उसे ईश्वर दर्शन के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। व्याकुलता ही वह वस्तु है जो शरीर और मन की स्वाभाविक जड़ता को पराभूत और आत्मा को ईश्वरोन्मुख करती है। गहन व्याकुलता की तुलना एक शक्तिशाली स्वचालित इंजन से की जा सकती है जो एक विशाल रेलगाड़ी को खींच रहा हो। सच तो यह है कि वे लोग भी जो किंचित मात्रा में ईश्वर के लिए व्याकुलता अथवा उत्कंठा का अनुभव करते हैं, यह मानते हैं कि इस व्याकुलता को अचल या स्थायी बनाए रखना सरल नहीं है। व्याकुलता की अग्नि को सदैव ही उज्जवल किए रहना और जगाए रहना पड़ता है। हमारे जीवन में अनेक शक्तियां इस आंतरिक अग्नि को ठंडा करने के लिए सतत सक्रिय रहती हैं। इनमें से पहली शक्ति है नास्तिक तथा अनैतिक लोगों के साथ सहवास। आज पूरी दुनिया में अनैतिकता व नास्तिकता एक विषाक्त और संसर्गजन्य रोग की तरह फैल रही है। सार्वजनिक स्थलों, दफ्तरों और औद्योगिक संस्थाओं में ऐसे लोगों के संसर्ग से बच पाना सचमुच ही दुष्कर है। और कहावत भी है कि जो शैतान के साथ चुस्की लेता है उसका चमचा जरा ज्यादा ही लंबा होना चाहिए। प्रत्येक निष्ठावान आध्यात्मिक अन्वेषी ये पाता है कि ज्यों ज्यों वह अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता जाता है उसकी व्याकुलता शुद्धतर, उज्ज्वलतर तथा अधिक सशक्त होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि वो दैवी प्रकाश से भास्वर हो उठती है। किंतु सच तो यह है कि सभी लोग इस आध्यात्मिक व्याकुलता का अनुभव नहीं कर पाते। यदि कहे कि एक सहस्र में कोई एक ही इसका अनुभव करता है तो गलत न होगा। संभवतः अनेक युगों के जन्मांतरण के पश्चात ही सच्ची व्याकुलता का मनुष्य हृदय में उद्भव होता है। यदि आप अपने भीतर गहन व्याकुलता का अनुभव करते हैं तो आपको जानना चाहिए कि आप अपने वास्तविक स्वरूप के उद्घाटन की दहलीज पर खड़े हैं। और यह भी जानना चाहिए कि आपका आगे का विकास, आपका वास्तविक आनंद और आपके जीवन का परितोष इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस नई इच्छा के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। यदि आप अपने हृदय की गहराइयों में दैवी पुकार को सुन पाते हैं तो आपको आनंदित होना चाहिए कि आपका समय आ गया। आपको समझना चाहिए कि आप अनंत का सूर्योदय देखने की कगार पर खड़े हैं। आप चाहे तो इस नई उषा से मुंह भी मोड़ सकते हैं और अंधकार की प्रतिछायाओं और मृत्यु के विभत्स नर्तन से एकाकार होने के लिए अंधेरे की ओर वापस फिर लौट सकते हैं। या फिर आप चाहे तो ज्ञान के सूर्य के आमने सामने हो सकते हैं जो अमृत तत्व की सुनहली धूप से पटा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जिसके लिए सांसारिक सुख निरानंद हो गए हो, जो आहार, निद्रा और इंद्रिय सुख के निष्क्रिय जीवन से घृणा करने लगा हो, जिसके लिए धन, नाम, यश और सुख साधन निरर्थक हो गए हो और जो सचमुच ही ईश्वर के दर्शन के लिए संतापग्रस्त हो गया हो, उसे और सिर्फ उसे ही ईश्वर के दर्शन होते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख और स्वर था स्वामी चंद्रशेखरानंद का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन, स्वर ये हरिहरण और साथी का। संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

संवत 1631 के चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों के भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरि की भांति हरि की कथा भी अनंत है।

0: श्री रामचरितमानस का गायन अभी आप सुन रहे थे। स्वर ये हरिहरन और साथियों का, संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। यह आकाशवाणी जगदलपुर है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लिए सुनिए कृषि सामी की बेड़ा खड़ा चुगोट।
1: गांवकारी खेतीहर दादा दीदी मन, असन तो आजिकाली सपाय किसान मन साग भाजी आरू धान फसल जो कमानी आगर

जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली कार्यक्रम में सुनिए भैरम देवपाड़, वादक कलाकार हैं मंगलू और साथी।

हुनी हुनी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भैरम देवपाड़, वादक कलाकार थे मंगलू और साथी। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। लिए सुनिए आज की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। शाम 5:10 पर सुनिएगा रोजगार मेला 2026, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए, जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। अब से कुछ देर बाद सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आकर्षण होंगे झलक।

हम हैं लड़के वाले, लेखक शैलेंद्र पांडे, प्रस्तुति होगी शाहिद हुसैन की और होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी का प्रसारण समय होगा सुबह 9 बजे का। संपादक होंगे बलवीर सिंह कच्छ। एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे साया फिल्म के गीत सुबह 9:30 पर। सुबह 10 बजे गुलशन कार्यक्रम में सुनिएगा कार्यक्रम मेरी पसंद यानी मेरे पसंद के गीत। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में हम आपको सुनवाएंगे लोकनाथ वैष्णव और साथियों के गाए हल्बी गीत सुबह 10:30 पर।

सुबह 11 बजे रुतरुता लोक गाथा में आप सुनेंगे आंधा राजा का भाग 3। गायिका होंगी सुप्री बाई। आज का एक ही कलाकार केंद्रित होगा पार्श्व गायिका शमशाद बेगम पर सुबह 11:30 पर। कला और कलाकार ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दोपहर 12:30 पर। आप सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन आप सुनेंगे दोपहर 1:10 पर। NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम होगा दोपहर 2:30 पर।

शाम 5:05 पर आप सुनेंगे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार खोंडी बोली में। यलमनी देवी और साथियों के गाए हलवे गीत सुनिएगा शाम 6:35 पर। हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर शाम 7:00। ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम आम चुका होगा शाम 7:20 पर। रात 8:00 बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम घर में सुनिएगा दैमती नाग और साथियों के गाए हलवे गीत पीला मन का जिकोट। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी भरत कुमार गंगादित्य की। रात 9:15 पर कार्यक्रम नंजर में सुनिएगा मंथर रामनाग से बलबीर सिंह कच्छ की बातचीत।

0: खेल पत्रिका। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 9:30 पर। इसमें सुनिएगा विजय कश्यप से भेंट वार्ता, भेंट करता होंगे बलवीर सिंह कच्छ। रात 10 हम आपको सुनवाएंगे सुंदरलाल और साथियों के गाए हल्ब गीत। ये थी हमारी केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार। हम
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ता। भारत फ्रांसयोः आर्थिक औद्योगिक सहकारं प्रगाढं कर्तुं प्रयत्नस्य भागरूपेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पेरिस नगरे प्रमुखैः फ्रांस देशीयैः वाणिज्य नेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीय मेलनानि विहितानि। प्रधानमन्त्री पेरिस नगरे मिस्ट्रल AI संस्थायाः सह संस्थापकेन मुख्य कार्यकारी अधिकारिण्या सह आर्थर मेंच इत्यनेन सह अपि मिलितवान्। सामाजिक प्रसार माध्यमे प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य वर्धमान AI इति पारिस्थितिक व्यवस्थायाः अवसराणां विषये अपि अवधानं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री

0: विकसित भारत रोजगार योजना इत्यस्य अन्तर्गतं 2,000,000,000 कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहकाणां वितरणं करिष्यति। नवदिल्ल्यां योजनायाः विषये प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रम रोजगार मन्त्री डॉक्टर मनसुख मांडवीयः अवोचत् यत् गतवर्षस्य अगस्त मासात् आरभ्य 63,00,000+ कर्मचारिणः PMVVRY इत्यस्यान्तर्गतम् औपचारिक कार्यक्षेत्रे आनीताः सन्ति, येषु प्रायः 30% महिलाः सन्ति। सः इतोपि अवोचत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रोत्साहिताः 80% अधिकाः संस्थाः, 25% न्यूनाः लघुद्यमाः सन्ति इति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमानुएल मैक्रोन ह्यः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कृते हिन्दी भाषायाम् एकं भावपूर्णं सौप्रस्थानिक चलच्चित्रं प्रसारितवान्, यत्र सः प्रधानमन्त्रिणं प्रियं मित्रम् इति सम्बोधयन् अवदत् फ्रांसः भवन्तं स्निह्यति। मैक्रोनः हिन्द्याम् अवोचत् यत् प्रिय मित्र नरेन्द्र, मुझे बहुत खुशी है आपका नाइस एवियन और पेरिस दौरे के लिए स्वागत करते। फ्रांस भारत की दोस्ती अमर रहे। फ्रांस राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एतं प्रवासं अतीव फलदायकम् इति उद्घोषयत्। प्रवासार्थं च कार्तज्ञ भावं ज्ञापितवान्। आगामी फरवरी मासे पुनः मेलनस्य आकांक्षां प्रकटयन् सः अवोचत् यत् प्रवासाय अस्माकं मैत्रीभावाय च धन्यवादः। वयं शीघ्रमेव फरवरी मासे पुनः मेलनाय प्रतीक्षामहे। जय हिंद। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आभासीय माध्यमेन चतुर्णां राज्यानां कृते MSP इति न्यूनतम समर्थन मूल्येन बृहत् परिमाणे तिलहन क्रयणस्य स्वीकृतिम् अयच्छत्। कृषि मंत्रालयानुगुणम् एषः क्रयण संकल्पः तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्येतेषु राज्येषु मूल्य समर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति। अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तर प्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98,200,000+ मेट्रिक टन मितमुद्गम, 97,000+ मेट्रिक टन मितम माश, अथ च 18,700,000+ मेट्रिक टन मितम कलाय क्रयणस्य अनुमतिः दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत यत् दृढ़ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास सन्धिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में

0: भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान की सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार 3री जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

सुबह केवल एक नया दिन नहीं बल्कि नए अवसरों और नई शुरुआत का संदेश लेकर आती है। हर उगता हुआ सूरज हमें ये सिखाता है कि अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। यदि दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ की जाए तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसान लगने लगते हैं। सुबह का समय आत्मचिंतन, सीखने और अपने सपनों की

दिशा में पहला कदम बढ़ाने का सबसे अच्छा समय होता है। इसीलिए हर सुबह मुस्कान के साथ उठें और अपने दिन को सफल बनाने का संकल्प लें। इन्हीं प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ हम आगाज करते हैं कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर का। तो स्वीकारें मेरा यानी आपके रेडियो दोस्त सुखेंदु मलिक का प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार।

श्रोताओं, विश्व सिकल सेल रोग दिवस हर वर्ष 19 जून यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2008 में की गई थी, जिसका उद्देश्य सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय पर जांच और उपचार को प्रोत्साहित करना तथा रोगियों के जीवन को बेहतर बनाना है। सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रक्त विकार है। इस बीमारी में लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य गोल आकार की जगह हसिया के आकार की हो जाती है। ये कोशिकाएं रक्त वाहिकाओं में आसानी से नहीं बह पाती, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचने में कठिनाई होती है। ये रोग माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से पहुंचता है। यदि माता पिता दोनों में सिकल सेल जीन मौजूद हैं, तो बच्चों में यह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। सिकल सेल दिवस 2026 का विषय है, जीवन रक्षा के अंतर को कम करना, सिकल सेल देखभाल में समानता। श्रोताओं, जागरूकता ही बचाव है। सिकल सेल को पहचानने और समय पर उपचार अपनाएं। स्वस्थ समाज का निर्माण तभी होगा जब सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। विश्व सिकल सेल रोग दिवस हमें इस गंभीर आनुवंशिक बीमारी के प्रति संवेदनशील बनने और रोगियों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए मिलकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। बीमारी किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होती, उसका साहस और संघर्ष ही उसकी असली पहचान होती है। सिकल सेल रोगी को दया नहीं बल्कि सम्मान, सहयोग और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। आपका एक सकारात्मक शब्द और एक मुस्कान किसी रोगी के जीवन में नई उम्मीद जगा सकती है।

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुरा कर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
1: 222150 या 222400।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।

0: हम बाजार नहीं जाएंगे, हमारा नौकर जाएगा बाजार, क्योंकि अब हम कमाऊ बहू की तलाश कर रहे हैं।
1: कमाऊ बहू की तलाश इस अखबार में?
0: हाँ, इस वैवाहिक विज्ञापन में कमाऊ बहू खोज रहा हूँ अपने माखन के लिए। कमाऊ बहू आएगी तो घर की मासिक आमदनी बढ़ेगी, और जब आमदनी बढ़ेगी तो एक नौकर तो रखा जा सकता है ना। आया कुछ समझ में? 25 वर्ष, 5 फीट 2 इंच, पोस्ट ग्रेजुएट, आकर्षक व्यक्तित्व हेतु सुयोग्य वर चाहिए। फोटो पूर्ण विवरण सहित भेजें या संपर्क करें। जैन मंदिर रोड, प्रतापगंज पारा, जगदलपुर। पूर्ण विवरण सहित लिखें। क्या खाक लिखें? अरे लड़की कमाऊ है या नहीं ये तो लिखा ही नहीं। शादी ब्याह नहीं, जैसे अपनी सेकंड हैंड गाड़ी की बिक्री का विज्ञापन दिया हो। दूसरा विज्ञापन पढ़ा जाए। ये है सनाद्य ब्राह्मण, 24 वर्ष, 5 फीट 2 इंच, गृह कार्य में दक्ष, 7,000 रुपया मासिक, 7,000 रुपया मासिक। अरे यही तो मैं खोज रहा था। अरे मिल गया यार, मिल गया। अरे माखन की अम्मा, ओ माखन की अम्मा,
1: क्या बात है, क्या मिल गया? क्यों फटे हुए बांस की तरह चिल्ला रहे हो?
0: अरे माखन की अम्मा, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, नाचो गाओ। हमने माखन के लिए दुधारू गाय, मेरा मतलब है कमाऊ बहू, ढूंढ ली है।
1: लक्ष्मी की बात हो रही है? अरे मेरे पति परमेश्वर, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो और आराम से पूरी बात बताओ ना।
0: आराम से पूरी बात बताओ ना, लगी ना लाल टपकने। सुनो, हमारा माखन शादी के लायक हो गया है, और तुम्हें भी कामों में हाथ बटाने के लिए बहू चाहिए कि नहीं?
1: हाँ चाहिए तो।
0: अरे वही तो मैंने खोज ली है। सुनो, पेपर में ये विज्ञापन निकला है, सनाद्य ब्राह्मण, उम्र 24 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 2 इंच, पोस्ट ग्रेजुएट, आकर्षक व्यक्तित्व, गृह कार्य में दक्ष, 7,000 रुपया मासिक। अरे सुन रही हो, 7,000 रुपया महीना कमाती है।
1: हाँ हाँ सुन रही हूँ, सुन रही हूँ।
0: पत्र व्यवहार के लिए पता है प्रतापगंज पारा, जैन मंदिर रोड, जगदलपुर, है ना? ठीक।
1: हाँ ठीक बात तो है, पर आप पत्र व्यवहार क्यों, डायरेक्ट मिल लेते हैं? कौन सा जो बाहर जाना है, शहर की तो बात है। ऐसा करो, कल चलते हैं, कल शुक्रवार है, दिन भी ठीक है, संतोषी माँ का दिन है। और हाँ, जाओ जाओ, अभी जाओ, लॉन्ड्री से सूट वगैरह प्रेस करा लो, टाई वाई ठीक करा लो, समझे?
0: समझे, पर सूट है कहाँ? हमारी शादी के बाद आज तक नजर ही नहीं आया।
1: वो शादी के बाद जब तुम्हारे यहाँ आई तो सासू जी ने तुम्हारी सूट थमाते हुए कहा था।
0: क्या कहा था?
1: बहू इसे संभाल के रखना, ये तुम्हारे दादा ससुर का कोट है, जब मेरी नाती की शादी होगी ना तो तुम भी यही पुश्तैनी सूट अपने बेटे को पहनने के लिए देना।
0: माँ जी ने तो माखन के लिए कहा था, पर मैं क्यों पहनूं वो पुराना सूट? माखन क्या पहनेगा?
1: अरे माखन भी वही पहनेगा, शादी तक तो लोग ये भी भूल जाएंगे कि तुमने भी कभी ये सूट पहना था।
0: अरे वो तो प्रेस किया हुआ सूट है, और जब प्रेस नहीं करवाना है तो आज ही चलो, आज ही चलते हैं लड़की देखने।
1: हाँ हाँ ठीक है, शाम को चलेंगे।
2: Love me forever. It's now or never.
0: अरे माखन की माँ, चलो भी, शाम हो गई, तुम तो ऐसे समरने लगी हो जैसे तुम लड़की देखने नहीं, कोई तुम्हें देखने आ रहा है।
1: चुप रहो जी, तुम भी कैसी बात करते हो, इस उम्र में शर्म नहीं आती?
0: अजी शर्म कैसी, कैसी शर्म, पत्नी से बात कर रहे हैं, कोई बाहर वाले से थोड़ी ना।
1: हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो निकलो घर से, ताला लगाना है, माखन अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रुक गया वो।
0: हाँ हाँ चलो भाई चलो।

0: हाँ, हटो हटो, यही रुक यार। ये नेम प्लेट में राधे श्याम मिश्रा। हाँ, यही रुको। अरे उतरो ना भगवान, जगह आ गई, उतर जाओ। हाँ
1: हाँ उतर रही हूँ, तुम चलो, मैं रिक्शे वाले को पैसा देकर आ रही हूँ।
2: जी नमस्ते, कहिए।
0: नमस्ते
1: नमस्ते
0: नमस्ते
1: नमस्ते।
0: जी, हम लड़के वाले हैं।
2: अच्छा, आप लड़कियों वाले हैं। आइए आइए आइए, अंदर आइए, यहाँ बैठिए, सोफे पर बैठिए भाई साहब।
1: आहा, कितना सुंदर सोफा है, बिटिया के दहेज के लिए बनवाया है क्या?
2: जी जी नहीं, वो तो घर के लिए बनवाया था।
1: मॉडर्न जमाना है, सोफा से भी कुछ अच्छी चीज सोची होगी, नहीं मिश्रा
2: जी
0: आजकल महंगाई के
1: अजी रुको भी, बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह छीके जा रहे हो। तुम्हारी इस छींक से तो मैं परेशान हो गई हूँ, जहाँ कुछ अच्छी बात करो बस छींक देते हो। घर आती लक्ष्मी तुम्हारी छींक सुनकर आधे रास्ते से ही लौट जाती है।
2: अजी बहन जी, आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं कुछ व्यवस्था देखता हूँ।
0: अजी भाई साहब, ज्यादा कष्ट मत कीजिएगा, कुछ ठंडा वंडा और साथ में थोड़ा सा कुरमुरा बस।
2: जी जी जरूर जरूर।
1: चुप रहो जी, कहीं भी पेटू की तरह खाते रहते हो, अपनी आदत से बाज नहीं आओगे।
0: मैं तो
1: भाई साहब, खाने
2: जी
1: पीने की कुछ चीज मत लाइएगा,
2: आए
1: सिर्फ फल फ्रूट और एक एक आइसक्रीम अच्छी वाली बस, बाकी सब की तकल्लुफ मत कीजिएगा। आजकल मैं डाइटिंग कर रही हूँ।
2: जी, इसमें तकल्लुफ कैसा।
0: अरे अरे मिस्टर जी, इतना सामान एक साथ लाइए लाइए, मैं पकड़ लेता हूँ।
2: जी
0: मिश्रा जी, ये सब तो चलता ही रहेगा, अब थोड़ी बिटिया की बात हो जाए।
2: जी हाँ, क्यों नहीं।
0: मिश्रा जी, बिटिया नौकरी करती है, 7,000 रुपया कमाती है,
2: हाँ,
0: ये सब तो हमें पता है, पर क्या वो अपना पैसा बैंक में रखती है या घर के छोटे मोटे काम में।
2: अरे अरे अरे अरे नहीं भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं, लड़की का पैसा हम लोग खर्च नहीं करते।
0: बिल्कुल सही मिश्रा जी, बिल्कुल सही, लड़की तो पराया धन होती है और पराया धन खाना तो महापाप है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो बिटिया की कमाई खर्च नहीं कर रहे हैं। एक बात और मिश्रा जी, आपकी एक ही बेटी है या फिर।
2: जी नहीं भाई साहब, एक ही बिटिया है और मैं इसकी शादी धूमधाम से करना चाहता
0: जरूर जरूर।
2: हूं। अपनी जिंदगी भर की कमाई इसकी शादी में लुटाना चाहता
0: क्यों
2: हूं।
0: नहीं क्यों नहीं।
1: कितने
0: कितने नेक
1: नेक
0: विचार
1: विचार
0: हैं,
1: हैं।
0: भगवान की दया से मिश्रा जी, हमारा बेटा नौकरी में है
2: जी
0: और
2: जी
0: आपकी बेटी भी। मैं तो चाहूंगा भाई साहब, दोनों अपना अलग घर बसाएं, अन्यथा बहुओं की अक्सर अपनी सास के व्यवहार से शिकायत होती है ना।
1: जी हाँ भाई साहब, हम लोगों ने तो सोच लिया है, अपने बहू बेटे के वैवाहिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक भरे पूरे घर का सामान जो बहू अपने साथ लाएगी वो उसे ही मुबारक हो, एक सामान भी हम उसमें से नहीं छुएंगे।
2: कितने नेक ख्याल हैं बहन जी आपके।
0: हो भी क्यों ना भाई साहब, हमारी श्रीमती जी दहेज विरोधी महिला मोर्चा की अध्यक्षा जो हैं।
1: जी हमने दहेज लोभियों के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है, मैंने सोचा जब हमने इतना बड़ा अभियान छेड़ा है तो क्यों न शुरुआत अपने घर से ही किया जाए।
2: तो क्या बहन जी, आपने अपने बेटे के लिए अभी से घर खरीद रखा है।
1: अरे भाई साहब, आप भी कमाल करते हैं, बेटी की शादी आप कर रहे हैं, अपनी बेटी को आप खुश देखना चाहते हैं तो क्या एक फ्लैट खरीद कर नहीं दे सकते? भाई हमें नहीं चाहिए आपका फ्लैट, फ्लैट अपनी बेटी को दे दीजिएगा। भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है।
2: क्यों नहीं, जरूर दे सकते हैं जरूर।
1: भाई साहब, सब कुछ साफ साफ कह देती हूँ। हाँ

0: घर के साथ साथ गैस चूल्हा भी दीजिएगा, वरना आए दिन स्टोव फटने से घायल होने की खबर अखबारों में ज्यादा देखने को मिलती है। खैर आपको क्या बताएं, आप तो खुद ही समझदार हैं।
1: देखिए बहन जी, ये सब बातें तो होती ही रहेंगी, पहले आप थोड़ा ये।
0: अजी बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? अजी देखिए भाई साहब, हम साफ दिल वाले हैं, जो कहते हैं मुंह पे कहते हैं।
1: देखिए आप तो बुरा मान गए बहन जी, मेरा मतलब है हमारे होने वाले दामाद जी करते क्या हैं, हम उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं।
0: अच्छा जानिए जानिए, बिल्कुल जानिए, आपको पूरा हक है जानने का। बताओ जी, इन्हें कैसा दिखता है हमारा बेटा?
2: अजी पूछिए मत, पूरा का पूरा फिल्म हीरो।
1: अच्छा
0: अजी, वो चश्मे वाले बात तो बताइए, जिसपे लड़कियां उसपे मरती थी।
2: अरे हाँ, वो बात तो मैं बताना ही भूल गया। अरे वो क्या कहते हैं ना भाई साहब, कि वो बम्बैया हीरो,
1: हाँ हाँ,
2: उसकी देखा देखी माखन ने भी अपने खूबसूरत चेहरे पर चश्मा डाल लिया।
1: अच्छा,
2: बस क्या था साहब, उसके दोस्त कहने लगे, अरे वाह आज तो हमारा माखन पूरा फिल्मी हीरो लग रहा है। उसमें से एक ने कहा, भैया हीरो ये इसे कब मत उतारना, नहीं तो नजर लग जाएगी। फिर क्या था साहब, 24 घंटे सोते जागते ब्रश करते वो चश्मा पहना रहता है
1: भैया।
2: चार चार चश्मे टूट चुके हैं उसके, किसी के हैंडल तो किसी का कांच निकल गया, फिर भी उसका शौक देखिए भाई साहब, एक चश्मा हमेशा एडवांस में रखता है, पता नहीं कब कौन सा टूट जाए।
1: भाई साहब, लड़के को कहीं दृष्टि दोष तो नहीं है?
0: शिव शिव शिव शिव, दृष्टि दोष नहीं नहीं भाई साहब, ये तो उसका शौक है, मॉडर्न जमाने का है हमारा बेटा।
1: और क्या क्या शौक है आपके साहबजादे को?
2: अजी और कुछ नहीं, कुछ भी शौक नहीं करता, न चाय पानी बीड़ी सिगरेट, और क्या बताऊं कुछ भी नहीं लेता, सिर्फ थोड़ी सी तमाखू लेता है, वो भी कभी कभी।
1: भाई साहब, जब आपने इतना बता ही दिया है तो कृपा करके ये भी बता दीजिए कि आपके सुपुत्र जी करते क्या हैं? मेरा मतलब कुछ नौकरी वगैरह करते हैं या फिर यूं ही?
2: हाँ हाँ भाई साहब, हमारा बेटा नौकरी करता है, भगवान की दया से वो पीएम है।
1: क्या पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर?
2: अरे प्राइम मिनिस्टर नहीं भाई साहब, पोस्टमैन, पी फॉर पोस्ट एम फॉर मैन। आप भी चकरा गए ना, हर कोई चकरा जाता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, पीएम। और भाई साहब आप किस पोस्ट में हैं?
2: मैं PWM।
1: PWM?
2: हाँ, यानी शहर के थोक पान विक्रेता के यहाँ मैनेजर हूँ, यानी कि पी फॉर पान, डब्ल्यू फॉर वाला और एम फॉर मैनेजर, पान वाला मैनेजर।
1: वाह, अच्छा अच्छा, आपका बेटा PM और आप PWM, ऐसी जगह रिश्तेदारी तय होगी तो मैं तो धन्य ही हो जाऊंगा ना।
0: धन्य? अरे भाई साहब, गंगा नहा लेंगे आप?
1: गंगा नहाना नहीं है मुझे, भगवान की दया से हमारे यहाँ इंद्रावती में नहाने लायक पानी है। चलिए निकलिए यहाँ से, निकलिए आप लोग।
2: देखिए देखिए देखिए भाई साहब, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं।
1: बेइज्जती? अरे निकलते हैं या लाओ डंडे।
0: अरे तभी से बात कीजिए भाई साहब, हम हैं लड़के वाले।
1: अरे आप हैं लड़के वाले तो हम हैं पुलिस वाले।
2: पुलिस वाले?
1: अंदर करा दूंगा, ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि जिंदगी भर अपने पीएम की शादी नहीं करवा पाओगे।

0: अभी आप सुन रहे थे झलकी, हम हैं लड़के वाले। लेखक शैलेंद्र पांडे, प्रतिभागी कलाकार थे रतन व्यास, राजेश श्रीवास्तव और प्रवीणा पॉलुस। प्रस्तुति थी शहीद हुसैन की।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे

0: बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: 8700001-4242।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: श्रोताओं, 19 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड सैनिटरिंग डे। यह दिवस लोगों को जीवन की तेज रफ्तार और भागदौड़ से कुछ समय निकालकर आराम से चलने, प्रकृति का आनंद लेने और वर्तमान क्षण को महसूस करने की प्रेरणा देता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना कि जीवन में हमेशा भागदौड़ और तनाव में रहने के बजाय कभी कभी शांत मन से प्रकृति का आनंद लेते हुए आराम से टहलना भी आवश्यक है। यह दिन हमें मानसिक शांति, स्वास्थ्य और जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेने के लिए प्रेरणा देता है, तनाव और चिंता को कम करने में सहायता करता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर देता है, जीवन में संतुलन और सुकून का महत्व समझाता है। जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि रास्ते का आनंद लेने का भी नाम है। विश्व सैनिटरिंग दिवस हमें धीमे चलकर जीवन की सुंदरता को महसूस करने की प्रेरणा देता है।

श्रोताओं नमस्कार। जगदलपुर में अब वक्त है मधुरिमा का, तो पेश है मधुरिमा। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? किसी के लिए रातों को जागकर इंतजार किया है? उसकी एक मुस्कान पर

तेरा साथ है कितना प्यारा, जैसे जीवन में खिलता हो उजियारा। तेरी मुस्कान से महक उठती है राहें, तुझसे ही जुड़ी है मेरी हर चाहें।

क्या देखते हो सूरत हमारी, दिल की किताब भी पढ़कर देखो जरा। चेहरे की चमक तो वक्त के साथ ढल जाएगी, मोहब्बत की रोशनी मगर उम्र भर साथ निभाएगी।

ओ मेरी जान, तू मेरी धड़कनों की पहचान है। तेरे बिना यह दिल जैसे एक सुकून जहान है। तेरी मुस्कान से रोशन होती है मेरी राहें। तू ही मेरी खुशी, तू ही मेरी अरमान है।

जाते हो चले जाना, कोई गिला नहीं करेंगे, बस आखिरी सलाम देकर जाना। हम यादों में गुजारा करेंगे, मुलाकातें भले ही मुकम्मल ना हो सकी, पर तुम्हारी यादों को दिल में संजो कर रखा करेंगे।

मधुरी माँ के इन्हीं गीतों के साथ ही आज के नमस्कार जगदलपुर से मुझे यानी आपके रेडियो दोस्त सुखेंदु मलिक को दें इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: सब का प्यारा
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो नीरो। करो योग, रहो नीरो।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, टीम की तान, टीम की तान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
4: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
4: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और

0: फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
1: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पूरे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

0: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोग का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़क का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी। धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द हैं, जंग खत्म, हॉर्मोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र। धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसमें सुनिए छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रथम लेखक, निर्माता और निर्देशक श्री मनु नायक से दीपक हटवार की भेंट वार्ता।

0: से मिले कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, जब हम मनोरंजन के माध्यमों की बात करते हैं तो फिल्में हमारे जीवन से जुड़ा हुआ वो माध्यम है जिसने वर्षों से भारत के विभिन्न प्रांतों के लोगों का भरपूर मनोरंजन किया है। हिंदी सिनेमा से लेकर प्रांतीय सिनेमा तक अनेक फिल्में बनी हैं। श्वेत श्याम से लेकर रंगीन फिल्मों के इस दौर में हमारे फिल्म उद्योग से जुड़े अनेक कलाकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने फिल्म के लेखन, निर्देशन और निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। और जब हम छत्तीसगढ़ी सिनेमा की बात करते हैं तो सन 60 के दशक में हमारे छत्तीसगढ़ में भी सिनेमा का एक दौर शुरू हुआ था, छत्तीसगढ़ी सिनेमा का। और उस दौर में पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म बनी थी कही देवे संदेश, और आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश के लेखक, निर्माता और निर्देशक श्री मनु नायक जी को। नायक जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद इनवाइट करने के लिए।
0: नायक जी, आपके नाम को लेते ही समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ी की पहली फिल्म कही देवे संदेश की याद आती है।
1: जी,
0: आप चूंकि छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं तो सबसे पहले हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की रही।
1: रायपुर जिले का एक ग्राम है कुर्रा बंगोली, यहाँ से 30 किलोमीटर है, वहाँ मेरा जन्म हुआ और प्राइमरी स्कूल की शिक्षा मेरे उसी गांव से मिली। उसके बाद राष्ट्रीय विद्यालय रायपुर से हाई स्कूल का एजुकेशन।
0: उसके बाद आप ये फिल्म वाले क्षेत्र में कैसे आए, आपके मन में कौन सी बात आई?
1: मैं हमेशा देखता था कि हमारे गांव के लड़के जो हमारे साथ पढ़ रहे थे उनके गार्जियन मिलने आते थे गांव से, किसान, तो उनके साथ वार्तालाप करते थे, तो गांव वाला तो छत्तीसगढ़ी में बात करता था लेकिन उनका लड़का जो है हिंदी में बात करता था, तो मुझे बड़ा इंसल्टिंग लगता था कि अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करना। इसी तरह से छुआछूत के बारे में मेरा दोस्त था एक श्याम रतन करके, वो घर में आता है मिलने मेरे से और मेरे साथ बैठता था बाहर आंगन में, तो वो जब जाता था तो वहां मेरी माँ लिपवा देती थी गोबर से, तो इतने हैट्रेट था एक छुआछूत के बारे में जो मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि हमारे स्कूल में राष्ट्रीय विद्यालय स्कूल नामी राष्ट्रीय विद्यालय था, वहां सब देश के एक से एक नेता, बड़े बड़े नेता आके वहां भाषण देते थे, सब समानता की बात करते थे लेकिन हकीकत में वस्तु स्थिति अलग थी। ये सब चीजें मेरे अंदर में थी, तो शुरू से सोच लिया मैंने कि मैं फिल्म अगर बनाऊंगा, क्योंकि फिल्म में रुझान मेरा ऐसा हुआ, वार्षिक प्रोग्राम जो होता था स्कूल का उसमें रामानंद कनौजे करके प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट लिख के दिया।
0: कनौजे जी ने आपको सर्टिफिकेट लिख कर दिया, तो उसके बाद फिर ये जो पहली जो आपकी फिल्म थी कही देवे संदेश, इसकी कल्पना किस तरह से आपने की, और चूंकि इस फिल्म को आपने लिखा भी है तो इसके लेखन के वक्त कहानी कैसे सूझी आपको, क्या सोचा आपने कि किस कहानी पर फिल्म बनाई जाए?
1: मैं स्कूल के एजुकेशन के दिनों में रेलवे स्टेशन के पास नर्मदा कुंड है वहां रहता था, जो 2 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच सकते थे, तो रेलवे स्टेशन में व्हीलर का बुक स्टॉल था, वहां मुझे फ्री में सब पढ़ने को मिलता था। वहां देखा कि सिनेमा के मैगजीन बहुतेरे बिकते हैं, तो मैं भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगा और मेरी भी इच्छा भी जागृत होने लगी कि मैं भी एक सिनेमा बनाऊं, और अपने मन में ये बात रखी कि किसी को बोलूं हंसेगा ना।
0: तो आपके मन में सिनेमा बनाने की बात आई, तो इसके लिए कहीं से कुछ सीखा आपने या किसी फिल्म से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ कभी जुड़ने की कोशिश की ये फिल्म बनाने के पहले?
1: एक साहब थे, नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा है अभी, वो मुंबई आना जाना क्या करते थे, उनका तो काम दूसरा था लेकिन आते जाते थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई रायपुर में रेलवे स्टेशन में, एवरी टाइम आते जाते थे, तो मैं भी उधर स्कूल आवर्स के बाद रेलवे स्टेशन

0: में बिताता था मैं भी, तो उनसे जब दोस्ताना हो गई तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी मुंबई देखना है। तो उन्होंने बरोबर अपना एड्रेस दिया और बोलना आप जब चाहे आ जाओ, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ नहीं मंगवा तो बम्बई में ही रहता हूँ। तो MNT स्टूडियो था, उसके अंदर उसका क्वार्टर था। तो वहाँ गए तो देखा कि सिनेमा वाले ही हैं सब। मोहन स्टूडियो सामने था जहाँ हम लोग रुके थे बस। तो वहाँ देवदास की शूटिंग चल रही थी, तो उसी में देवदास के यूनिट का एक मेंबर मेरे पास आया, तेरे को हिंदी आती है ना अच्छी? तो मैं कहा आती तो है, अब अच्छी है कि नहीं ये नहीं पता है। फिर उन्होंने कहा कि ये डायलॉग जो है ये आर्टिस्ट को रटाना है। मैं कहा ठीक है। तो वो दुलारी बाई थी, उसको रटाना था, लेकिन वो मैं खुद पहले परेशान था कि इस माहौल में मैं फिट हूं कि नहीं हूं। फिर वो सफल नहीं हो पाई, डायलॉग में रिटेक हो गया। तो फिर मुझे दो चार गालियां दी और भगा दिया मुझे। तो इतने में क्या था कि आसिफ साहब का फिल्म मुगल आजम, उसका जो मटेरियल था सेटिंग का, सब एग्जीबिशन के लिए था। वहां मैं लगा हुआ था, वहां पर मुझे 1 महीने के लिए काम मिल गया। तो इस तरह सिनेमा लाइन के अंदर मैं घुस गया, समझ लीजिए।
1: तो इस तरह से आप सिनेमा लाइन में चले गए, और उसके बाद में फिर ये फिल्म कही देवे संदेश की कल्पना आपके दिमाग में आई। 1965 में ये फिल्म आपने बनाई थी,
0: जी
1: तो फिर वहां से फिर आप वापस रायपुर आए, छत्तीसगढ़ आए, और यहाँ आने के बाद फिर इस फिल्म की आपने प्लानिंग की,
0: यहाँ प्लानिंग नहीं की, प्लानिंग तो मुंबई में ही की।
1: वहीं की आपने?
0: हाँ,
1: अच्छा,
0: यहाँ पर तो लोग फिल्म का नाम बोलो तो आपको जूता मारने के लिए तैयार होते थे लोग।
1: उस समय इस तरह की मानसिकता लोगों में नहीं थी कि फिल्म से जुड़ सके। तो फिर कही देवे संदेश के लिए आपने जब स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू की, इसकी कास्टिंग की, उसके बारे में कुछ बताइए। कास्टिंग के लिए कलाकार कहाँ मिले आपको?
0: क्योंकि जहाँ मैं नौकरी कर रहा था, महेश कौल और मुखराम शर्मा के ऑफिस में, उस जमाने पर शीर्ष में उनका नाम था फिल्म इंडस्ट्री में। मैं उनका चहेता एम्प्लाई था। कौल साहब से मिलना है तो मेरे से पहले मिल के जाता था, तो कौल साहब मुलाकात करते थे। वहाँ फिर मुखराम शर्मा जी के कापी राइटर की तरफ भी काम करता था। स्क्रिप्ट लिखते थे वो, उनको फेयर करना, उसको टाइप करवाना, ये सब काम मिल गया मुझे। तो उससे मैं समझने लगा कि स्क्रिप्ट क्या चीज होती है। और चूंकि शूटिंग में होता था कंपनी की, तो शूटिंग में क्या चीज की जरूरत होती है, कौन कौन कितने इम्पोर्टेंट है, क्या है, वो सब। उसके बाद एडिटिंग होती थी, तो एडिटिंग में भी जाके देखा करता था कि ये लोग एडिट कैसे करते हैं, क्या है। इस तरह से नॉलेज जो है सिर्फ फिल्म मेकिंग का, और सबसे बड़ा उसमें बिजनेस का हाथ होता था। तो NCCP जो है, उस समय हमारे जनरल मैनेजर थे और वो फिल्म लाइन के एक्सपर्ट थे फिल्म मेकिंग में, बिजनेस में। तो उनसे मैंने सीखा बिजनेस कैसा होता है, सिनेमा का कैसे रिलीज करते हैं फिल्म, कैसे सेल होता है, ये सब नॉलेज मेरे अंदर में धीरे धीरे बलवती होती गई। और मैं ये सोचने लगा कि अब मैं फिल्म बना लूंगा। अब रही गई पैसे की बात, तो मैंने आगे देखा न पीछे देखा, गाना रिकॉर्ड कर लिया रफी साहब का।
1: अच्छा, कौन सा
0: हाँ,
1: गाना था वो?
0: झमकत नदिया बहनी लागे पर्वत मोर मितान हवे, मैं बेटा हवे धरती के, धरती मोर पर आन हवे।
1: ये गाना तो बड़ा सुंदर बन पड़ा था, तो
0: हाँ, बहुत पसंद आया था लोगों को।
1: श्रोताओं को ये गाना सुना भी दें?
0: हाँ बिल्कुल, सुना दीजिए।
1: बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं आपकी फिल्म कही देवे संदेश का ये
0: हाँ।
1: गीत।

0: क्या बात है नायक जी, आपने बहुत ही खूबसूरत गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में हमें सुनवाया और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। फिर ये गीत आपने रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद और कौन कौन से गीत रिकॉर्ड करवाए आपने?
1: तो उसके बाद पहली बात तो यह है कि मुझे मेरी कंपनी से नोटिस आ गया कि आप पागलपन कर रहे हो, पैसा कहाँ से ला के दोगे
0: जी,
1: कहीं से उधार लेके तुम गाना रिकॉर्ड किया होगे ऐसा वैसा। तो बोले कंपनी ने तय किया है कि जितना रिकॉर्डिंग का खर्चा है कंपनी देगी और तुम फिल्म मेकिंग छोड़ के कंपनी का काम करो, जो मुझे मंजूर नहीं था। तो फिर नौकरी मुझे छोड़नी पड़ी और भटकने लगा, समझो 58, 59, 60।
0: उस समय तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर था नायक साहब।
1: हाँ जी हाँ।
0: उसके बाद फिर आप भटकते भटकते कहाँ चले गए ये बताइए?
1: हाँ, भटकते भटकते घूम फिर के वहीं पहुंच जाता था जहाँ शुरू में जिनके वहाँ डेरा डाला था।
0: जी,
1: फिर उन्होंने कहा कि कोई नौकरी पकड़ लो, तुम्हारा खर्चा कम से कम चले। फिर मैंने नौकरी वापस पकड़ ली कंपनी में।
0: फिर आप वापस नौकरी में आ गए, फिर ये कही देवे संदेश का क्या हुआ फिर?
1: फिर मैं काम करता रहा।
0: अच्छा,
1: कंपनी को बताए बगैर
0: काम करते रहे?
1: हाँ, गाना लिखवाना, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ शूटिंग करना,
0: जी
1: ये ऑफिस आवर्स के बाद मैं करने लगा।
0: तो कई देवे संदेश के गाने तो आपने हनुमंत नायडू जी से लिखवाए थे ना?
1: जी हाँ जी हाँ। हनुमंत नायडू साहब बहुत योग्य
0: जी
1: कवि थे, उनसे भी हमारी जान पहचान कुछ ऐसे समय हुआ कि उनको भी कुछ जरूरत थी, लोग उनको साथ दे।
0: और इसके संगीतकार कौन थे?
1: मलय चक्रवर्ती करके थे।
0: मलय चक्रवर्ती जी के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, इनके बारे में हमारे श्रोता जानते नहीं है, कुछ बताइए कहाँ मिले ये आपको, कहाँ के थे?
1: मलय चक्रवर्ती साहब हमारी कंपनी के बाजू में दूसरा ऑफिस था
0: मुंबई में।
1: मुंबई में
0: जी,
1: वहाँ उनकी फिल्म कर रहे थे तो उनका रिहर्सल वगैरह गाने का चलता था, तो हम मैं सुनता था, सुनाई देता था बाहर। तो वो लगता था कि कोई बहुत ही सुलझा हुआ आदमी है जो गीत लिख रहा है। तो फिर मैंने उनको बुला लिया एक दिन, मैं छत्तीसगढ़ी में ऐसा बनाना चाहता हूँ अब, लेकिन मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, आप कुछ ज्यादा डिमांड वमांड करोगे तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो आप गाना रिकॉर्ड करवा लो पैसे की।

0: बात छोड़ दो, तो एक तरह से हामी हो गई उधर से।
1: और उन्होंने छत्तीसगढ़ी गीत लिखा है, तो वो मूलतः छत्तीसगढ़ के थे ना नायडू जी?
0: दुर्ग के थे।
1: दुर्ग के थे जी।
0: तो वो किसी से मेरा एड्रेस लेके मुंबई आए थे
1: जी।
0: फिर लाइफ लॉन्ग पार्टनर बन गए मेरे वो
1: जी।
0: उनसे जो भी लिखवाना होता था मैं फोन कर देता था और वो गीत का टेक्स्ट लेके आ जाते थे, फिर मलय चक्रवर्ती के पास पहुंच जाते थे और उनसे तुरंत के तुरंत ट्यून बना देते थे। वो उसमें मॉडिफिकेशन करना है वो कर लेते थे, लेकिन काम तुरंत करते थे।
1: आपकी फिल्म कहीं देवे संदेश में मोहम्मद रफी जी ने भी गीत गाए थे और उस समय तो मोहम्मद रफी जी बड़े लोकप्रिय गायकों में एक थे।
0: हाँ जी।
1: भारत के नामचीन गायकों में एक थे
0: जी।
1: तो उनको जब आपने इस फिल्म के बारे में बताया
0: हाँ।
1: कि छत्तीसगढ़ी फिल्म में उन्हें पहली बार गाना है तो रफी साहब का क्या रिएक्शन था?
0: रफी साहब रिहर्सल किए थे, एक दो रिहर्सल के बाद बोलने लगे कि ये गीत आप खुद क्यों नहीं रिकॉर्ड कर लेते, जगह से क्यों करवा रहे हो, छत्तीसगढ़ी में आप गाओ और हो जाएगा। तो मैंने बताया कि फिर रिकॉर्ड कौन खरीदेगा,
1: अच्छा
0: आपका नाम है तो काम आसान हो जाता है।
1: जी जी जी
0: कुछ बोला नहीं फिर उन्होंने, और उन्होंने बहुत ही कम दाम में गाना रिकॉर्ड किया हमारे साथ।
1: इसमें मोहम्मद रफी जी का एक और हिट गीत था तोर पैरी के झनर झनर।
0: हाँ जी हाँ।
1: उस गाने के बारे में कुछ बताइए। उस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जब रफी साहब आए तब उन्होंने किस तरह से लिरिक्स को देखा, समझा, आपसे कुछ समझने की भी कोशिश की होगी कि इन शब्दों का मतलब क्या है, आपने उनको बताया होगा?
0: हाँ, तो उसके बगैर तो होता ही नहीं ना।
1: जी, क्योंकि मोहम्मद रफी जी तो बड़े सहज सरल इंसान थे
0: हाँ जी।
1: और पंजाबी उनकी मूल भाषा थी, उसके बावजूद वो अन्य भाषाओं के गीत भी गा लेते थे समझ कर पूरी तरह से। तो छत्तीसगढ़ी को किस तरह से आपने समझाया उनको?
0: वो उनका क्या था, आप उनको टेप रिकॉर्डर में टेप करके दे दीजिए, वो घर में बैठ के सुनते थे।
1: अच्छा।
0: ऐसे गीतों को जहाँ उनको जरूरत है, भले एक बार सुन रहे हो घर में या दो बार या रिकॉर्डिंग में आने से पहले सुन रहे हो, लेकिन वो उनका रूटीन था।
1: अच्छा, रफी साहब ने आपसे पूछा होगा ना भाई इसमें हीरो कौन है, किसके ऊपर ये पिक्चराइज किया जाएगा, कुछ पूछा उन्होंने?
0: नहीं, ये सब ट्रेड में हमारा है नहीं ना, वो लोग अपना अपना काम पे।
1: तो जब ये गीत की रिकॉर्डिंग हो गई, रफी साहब से आपने दो गाने रिकॉर्ड करवाए थे ना?
0: हाँ।
1: कहीं देवे संदेश के लिए।
0: हाँ जी।
1: दो गाने थे। तो इन दोनों गानों की रिकॉर्डिंग के बाद में जब इसके गाने फिल्म में दिखाई देने लगे और उसके बाद इसकी ईपी भी निकली थी कहीं देवे संदेश की, ईपी भी थी इसकी।
0: हाँ
1: जी। तो ये गाने जब छत्तीसगढ़ में बजने लगे, यहाँ के लोगों ने जब सुना तो किस तरह का रिएक्शन था?
0: गाने के बारे में रिएक्शन तो सब अच्छा था
1: जी,
0: लेकिन लोगों की शिकायत ये थी कि ये छत्तीसगढ़ी गाने नहीं लगते करके।
1: अच्छा।
0: हाँ, ये गाने सुंदर हैं, ट्यून भी सुंदर है, लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं लगते, खाली आवाज छत्तीसगढ़ी हो नहीं, वो उसका कंटेंट भी छत्तीसगढ़ी लगना चाहिए।
1: और गायिका के तौर पर आपने किनको आमंत्रित किया था?
0: गायिका के तौर पर थी एक मीनू पुरुषोत्तम करके थी
1: जी,
0: जो बाद में अमेरिका चली गई, फिर आए नहीं लौट के वो।
1: उनसे कितने गाने गवाए थे आपने कहीं देवे?
0: उसने बिहनिया के उगत सूरज देवता एक ये रिकॉर्ड करवाया था और एक ददरिया था जो मेल सिंगर था महेंद्र कपूर।
1: अच्छा, महेंद्र कपूर जी ने भी गाया था इसमें?
0: हाँ जी।
1: अरे वाह।
0: हाँ, तो महेंद्र कपूर और मीनू पुरुषोत्तम
1: जी,
0: तो ददरिया रिकॉर्ड किया था इन दोनों का। उसमें यही था, दो दिन के दुनिया वो दो दिन के रूप, ढली जाए गोरी तो जवानी की धूप।
1: क्या बात।
0: हाँ, तो इस तरह से था उसमें, लेकिन अभी तो याद नहीं है।
1: तो ये ददरिया सुना जाए?
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो आइए सुनते हैं।

0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर ददरिया आपने सुनवाया। और श्रोताओं, आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश के लेखक, निर्माता और निर्देशक श्री मनु नायक। मनु नायक जी, कही देवे संदेश के गाने की रिकॉर्डिंग हो गई और उसके बाद इसकी शूटिंग भी पूरी हो गई, और इस तरह से इसकी जो शूटिंग थी उसके लिए आपने लोकेशंस का जो सिलेक्शन किया था वो किस तरह से था?
1: लोकेशन का हमने चयन किया था, वहां तो शूटिंग हुई नहीं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि जो लोग यहाँ कोऑपरेट करने के लिए तैयार थे वो यहाँ अवेलेबल ही नहीं थे। हम वापस यूनिट लेके यहाँ आए तो कोई हमारे को रिसीव करने वाला नहीं था।
0: और ये जो नायक नायिका और बाकी जो अभिनेता अभिनेत्रियां थी, इनका सिलेक्शन किस तरह से किया था आपने?
1: वो चूंकि बताया ना कि स्टूडियो में रंजीत स्टूडियो सेंटर प्लेस था उस जमाने में
0: जी।
1: इसमें हरियाणवी छोटी छोटी फिल्में जो है, गंगा मैया तो है पेरी चढ़ाई वो, इस तरह की फिल्में, नेपाली फिल्में, सब का उद्गम स्थान था रंजीत स्टूडियो। और वही हमारा ऑफिस था तो वहां पर ज्यादातर लोग परिचित हो जाते थे। और उसके बाद कौन आर्टिस्ट आया वो मुलाकात भी होती थी उन फिल्मों में जो काम कर रहे थे। तो उसमें कान मोहन था सिंधी का,
0: कान मोहन जी
1: वो हीरो था। अबाना करके सिंधी फिल्म थी उसमें हीरो था
0: जी,
1: साधना हीरोइन थी। उसी तरह से सब आर्टिस्ट को सिनेमा में से देख के सेलेक्ट किया था।
0: नायक साहब, आपकी ये फिल्म जब कंप्लीट हो गई तब इसके रिलीज के लिए, मार्केटिंग के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं आपने करवाई छत्तीसगढ़ के लिए?
1: हमने बड़ी कोशिश की लेकिन लोगों ने यहाँ कोऑपरेट ही नहीं किया। मुझे तो विलन समझते थे लोग, इन्होंने धर्म को बिगाड़ दिया है। तो ये ऐसे में यहाँ कहाँ बिजनेस हो सकता था। पिक्चर रिलीज किया और थोड़ा बहुत कलेक्शन भी आया लेकिन जिस तरह से रिस्पांस होना चाहिए वो था नहीं।
0: फिर 1965 में कही देवे संदेश के रिलीज के बाद फिर आपका अगला कदम क्या था?
1: अगला कदम इंतजार करना कि सबको पैसे उधार जो लिए हैं सबको छूटना।
0: अच्छा। तो इसमें कमाई आपको उतनी हुई थी कि नहीं कही देवे
1: संदेश? नहीं नहीं।
0: फिर कैसे, किस तरह से पेमेंट आपने सबका किया?
1: बिजनेस से किया।
0: अच्छा।
1: बिजनेस धीरे धीरे करके किया। गवर्नमेंट ने खरीदा था 72,000 एक साथ मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से, दूरदर्शन में दिखाया था। तो और भोपाल अनंत मराल शास्त्री करके थे।

0: करते हैं, तो उन्होंने खरीदी थी डिपार्टमेंट के लिए, फ्री में दिखाते हैं ना शो
1: जी,
0: उसके लिए एक पेटी खरीदी थी उन्होंने, कलकत्ता दूरदर्शन ने दिखाया था, उधर से पैसे आया बड़ी रकम, और बाकी बिजनेस से छोटा मोटा।
1: फिर कही देवे संदेश के बाद में आपका अगला सपना क्या था?
0: अगला सपना, मैंने स्क्रिप्ट बनाई थी पठौनी करके, फिल्म का नाम भी रखा था
1: छत्तीसगढ़ी में,
0: छत्तीसगढ़ी में
1: जी,
0: लेकिन कुछ न कुछ ऐसे ही अड़चन फिर आने लग गई। लोग आज बात करके जाते थे, दूसरे दिन मुकर जाते थे।
1: नायक साहब, चूंकि शुरू से ही आप हिंदी फिल्मों से जुड़े रहे हैं और हिंदी फिल्मों से जुड़े रहते हुए आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश का निर्माण किया, और उसके बाद फिर हिंदी फिल्मों का आपका जो सफर है वो जारी रहा, तो उसके बाद की जो हिंदी फिल्में रही हैं उनमें से कोई एक ऐसी फिल्म आप जिक्र करेंगे जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, जो आपको याद हो, कोई नाम बताना चाहेंगे आप?
0: जिंदा दिल,
1: उसमें ऋषि कपूर जी से आपकी जब मुलाकात हुई होगी तो उसके बारे में कुछ बताएं, कैसे लगे वो आपको?
0: ऋषि कपूर बहुत अच्छा थे, नायक अंकल करके बोला करते थे मुझे।
1: अच्छा,
0: हाँ, क्योंकि उनके पिताजी की फिल्म थी दीवाना,
1: जी
0: दीवाना हमारी कंपनी ने बनाया था, तो कौल साहब की, तो उस समय राज कपूर जी से भी मुलाकात शूटिंग में होती थी।
1: हाँ,
0: तो उस हिसाब से दिवाली मिठाई उठाई लेके लेना देना ये सब चलता था, तो उस छोटा था ऋषि कपूर, नायक अंकल बोला करता था मुझे।
1: अच्छा अच्छा, ये जिंदा दिल के पहले आपने दीवान कपूर जी की एक फिल्म की थी आज की धारा, आज की धारा के बारे में कुछ याद है आपको?
0: नहीं, याद नहीं आ रहा
1: नहीं है। और एक फिल्म थी बिन बाप का बेटा।
0: हाँ, वो बिन बाप का बेटा भी रह गई।
1: अच्छा, ये बाबा साहेब सारंग जी की ये फिल्म थी।
0: हाँ हाँ,
1: ये फिल्म बाद में फ्लोर पे नहीं आई क्या?
0: नहीं आई।
1: अच्छा, एक कस्तूरी फिल्म भी आपने की थी जिसको की नेशनल अवार्ड मिला हुआ था।
0: हाँ,
1: ये बिमल दत्त जी की फिल्म।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: इसके बारे में कुछ याद है आपको?
0: याद है,
1: बताइए। कस्तूरी में कौन थे?
0: कस्तूरी में आगा साहब थे
1: जी,
0: मिथुन चक्रवर्ती।
1: अच्छा, आपने एक सिंधी फिल्म भी की थी।
0: हाँ,
1: सिंधी में, वो फिल्म कैसी थी बताएंगे कुछ उसके बारे में?
0: सिंधी फिल्म बहुत अच्छी थी, मदन जुमानी करके थे।
1: अच्छा,
0: जो डायरेक्टर थे उसके, बहुत ही इंटरेस्टिंग करेक्टर थे, खुद उन्होंने रोल किया था, और सतराम रोहरा ने बनाई थी
1: जी,
0: जो हमारे अच्छे मित्र थे।
1: और एक जीते हैं शान से,
0: हाँ,
1: इस फिल्म में भी आपने अपना योगदान दिया था। पी सुब्बा राव जी की फिल्म थी जीते हैं शान से।
0: हाँ हाँ,
1: तो नायक साहब, इस तरह से हिंदी फिल्मों का भी आपका एक लंबा सफर रहा है
0: जी।
1: अपने परिवार के बारे में बताइए, आपके परिवार में अभी कौन कौन है?
0: मेरे परिवार में मेरी पत्नी तो रही नहीं, और मेरा दो पुत्र हैं, दोनों कामकाज में लगे हुए हैं, इंजीनियर हैं दोनों इलेक्ट्रॉनिक, और मेरे भाई का परिवार है।
1: तो अभी आप रहते कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ में हैं या फिर महाराष्ट्र में?
0: महाराष्ट्र में,
1: मुंबई में रहते हैं।
0: मुंबई में।
1: अच्छा,
0: और आप लड़के लड़के दोनों वहीं रहते हैं ना?
1: आपके साथ में ही है।
0: हाँ
1: जी, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके फिल्मों के दौर की जो सुनहरी यादें हैं उन यादों के साथ इस वक्त आपके जीवन का ये जो समय है उन यादों के संग बीत रहा है। और अभी आपकी उम्र कितनी होगी हमारे श्रोताओं के जानकारी के लिए बताएंगे आप?
0: 1937 का है।
1: 1937 का आपका जन्म है, तो इस तरह से आप 88 साल के आसपास के हैं।
0: हाँ जी
1: जी जी, तो मनु नायक जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप स्वस्थ रहें और अपने फिल्मों के योगदान के उस दौर में जिन फिल्मों का आपने निर्माण किया, निर्देशन किया, लिखा, और जिन फिल्मों के प्रोडक्शन कंट्रोलर के तौर पर आपने फिल्मों में अपना योगदान दिया, उनकी यादें सदैव आपके मानस पटल पर जिंदा रहें और आप यूं ही स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। आज इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय आपने हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इनसे मिलिए कि इस अंग से दीपक हटवार को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 9 बजे हैं, लिए सुनिए लोक साहित्य पत्रिका मोचू माटी, संपादन बलवीर सिंह कचका।

0: सपाय रेडिओ संतलो के सेवा जोहार। जसन कि अपन मन जानास काई भले काम के करते रहले ने धीरे धीरे आम के नंगत कर रुकलाय हुआ है। उसने कोनिच बोले बोली भाषा के बोलते रहले ची हुन बा चुकलाय सके। आमी खेंडिक बोले आमचो परिवार ने जितलो बोले लोग रहूं से हुन मन संगे आमचे बोली के गोड बात नहीं कर लो ने हुन धीरे धीरे भुतते जाए से पीलामन फिर उन बोली के समझुक लाए नहीं सकोत। फिर हुन पीलामन बाढ़ला जाले आमचो जन बोली भाषा के आए आगे नहीं उकलाए नहीं सकोत। हुन गोट की पीढ़ी ने हुन सरुन जाए से तो हुनी काजे आमी मोचो माटी कार्यक्रम ने बरन बरन बोली मंचो बोले ने आमचो बस्तर चो बोली मंचो। जसन के अपन मन जानास आमचो बस्तर ने भतरी बोले बोलते लोग आसोत, गोंडी बोले बोलते लोग आसोत, हलवी बोले बोलते लोग आसोत, धूरी बोले बोलते लोग आसोत, दोरली बोले बोलते लोग आसोत। मांतर जसन जसन आमी घर परिवार ने ये बोली मन के नी बोल लेने ये सपाय बोली मन भुतन जाए दे आरो ये तो पीढ़ी मन काजे असन आमचो बोले न काई चीना बाना रोक लाए नी सके। तो हुनी काजे आमी बरन बरन चो ये कार्यक्रम ने कविता पाठ कहानी पाठ नाहले कहीं गोट बात करून बाती सुना तो वाट करूं से। तो आजी ये कार्यक्रम ने सबले पहल सुना भत्री कविता पाठ सुनाए सोत चार्ल्स जान।
1: आजी मुई भत्री कविता जेके खेती किसानी बोलुआ सांग भी अची सुना सुना हो किसान भाई मन किसानी गोट के सुना ये गोट के सुनलास बल्ले धान के बाचा बस जुना सज्जुग गला कलजुग आसला मांतर आमी असनी चाचू बाप दादी मरलाय जुग पलटला आई ची रीति ने चलबू आचू। सज्जुग गला कलजुग आसला मांतर आमी असनी चाचू बाप दादी मरलाय जुग पलटला आई ची रीति ने चलबू आचू। नांगर पार हाई ची जुआड़ी नाड़ी ना छाड़ू एबले पूर्णा बाना नागर पार आई ची जुआड़ी नाड़ी ना छाड़ू एबले पूर्णा बाना नुआ गोट कोनी सांग लाए बल्ले ताकि करूँ ताना नाना। सुना सुना हो किसान भाई मन किसानी गोट के सुना ये गोट के सुनलास बल्ले धान के बाचा बस जुना। अंग्रेज बहादुर राज कर लाए ये देश ने खूबे बरस अंग्रेज बहादुर राज कर लाए ये देश ने खूबे बरस गांधी बाबा पंडित नेहरू और नेता मन देश के कर लाए आजाद गांधी बाबा पंडित नेहरू और नेता मन देश के कर लाए आजाद। गुलामी थान ले बाचलू मांतर ये बले ना हो आमी आजाद। सुना सुना हो किसानी भाई मन किसानी गोट के सुना ये गोट के सुनलास बल्ले धान के बाचा बस जुना। एबले आमर गांव मन ने खूबे खूबे आचुत अपड़ गवार ठान ठान ने स्कूल खोली पड़ा बल सी आचे अमर सरकार। एबले अमर गांव मन ने खूबे खूबे आचो तपड़ गवार ठान ठान ने स्कूल खोली पड़ा बल सी आचे अमर सरकार। पढ़ा लिखा ओलास बल्ले अंधविश्वास और मंद के छानवास पढ़ा लिखा ओलास बल्ले अंधविश्वास और मंद के छानवास। सरकार सांगवार किसानी गोट के जप जप राय समझवास। सुना सुना हो किसानी भाई मन किसानी गोट के सुना ये गोट के सुनलास बल्ले धान के बाचा बास जुना। अस्पताल खोलला अमर सरकार बीमार दुखले बाचा बकाजे स्कूल पढ़ा बोली बल सी आचे आम के आगे बढ़ाए बकाजे। अस्पताल खोलला अमर सरकार बीमार दुखले बाचा बकाजे स्कूल पढ़ा बोली बल सी आचे आम के आगे बढ़ाए बकाजे। नुआ नुआ गोट के सुनी लाभ गोट के दरबार आए नुआ नुआ गोट के सुनी लाभ गोट के दरबार आए खत बात निको दे बिना मरान के कमाए बार आए। सुना सुना हो किसान भाई मन किसानी गोट के सुना ये गोट के सुनलास।

0: ले धान के बाचे पास जूना। सितकार ने बेड़ा के करा जोताई, बतर ने करा मने भूना। किसानी गोट सांगबाई ग्राम सेवक मन ताके बले नगद सुना। सितकार ने बेड़ा के करा जोताई, बतर ने करा मने भूना। किसानी गोट सांगबाई ग्राम सेवक मन ताके बले नगद सुना। कतक भूई ने कतक कत देबार ये गोट के निको सुना। कतक भूई ने कतक कत देबार ये गोट के निको सुना। पाला रोपाई निंजानी कोड़ाई एके बले निको जाना। सुना सुना हो किसानी भाई मन किसानी गोट के सुना। ये गोट के सुनलास बल्ले दान के बाचा बस जुना। ट्रैक्टर यंत्र देसी आचे सरकार बेड़ा के उजराय बक आजे। डोजर बले आचे माटी कोड़ी समान बनाय बक आजे। ट्रैक्टर यंत्र देसी आचे सरकार बेड़ा के उजराय बक आजे। डोजर बले आचे माटी कोड़ी समान बनाय बक आजे। कर्जा बले देसी सरकार निको किसानी करबार आए। कर्जा बले देसी सरकार निको किसानी करबार आए। बाप दादिर पूर्णा गोट के धीरे धीरे छानते जीबार आए। सुना सुना हो किसान भाई मन किसानी गोट के सुना। ये गोट के सुनलास बल्ले धान के बाचाय बास जुना। गोटक बापर चारटा बेटा बेड़ा के कर लाए बाटा बाटा। बुआ रला दे निको रलू भाई ये बर कसन ने होयला घाटा। गोटक बापर चारटा बेटा बेड़ा के कर लाए बाटा बाटा। बुआ रला दे निको रलू भाई ये बर कसन ने होयला घाटा। पढ़ा लिखा तो ना होयलास बाबू किसानी गोट के कसन ने समझ बास। पढ़ा लिखा तो ना होयलास बाबू किसानी गोट के कसन ने समझ बास। एवे बले आई कुगाड़ा मसागत करा तेबे तो मैं गरीबी ले बाच बास। सुना सुना हो किसान भाई मन किसानी गोट के सुना। ये गोट के सुनलास बल्ले धान के बाचा बस जुना। भारत देश के कृषि प्रधान बली संसार लोक मन जान बाच। अमर बस्तर हरण बस्तर ये गोट के सबू मान बाच। भारत देश के कृषि प्रधान बोली संसार लोक मन जान बाचत। अमर बस्तर अरण बस्तर ये गोट के सबू मान बाचत। सरकार देसी निको बीज और खत ताके सब किसान मनाना। सरकार देसी निको बीज और खत ताके सबू किसान मनाना। खुबे धान मंडिया संगे पाए बस जोंदरा ये गोट के निको सुना। सुना सुना हो किसान भाई मन किसान गोट के सुना। ये गोट के सुनलास बल्ले धान के बचाए बस जुना। आमर पुरकार जीवनार मुराई खेती किसानी। आमर पुरकार जीवनार मुराई खेती किसानी। कसन होयला गुण उतरायली स्नोनी थमनार पानी। आमर पुरकार जीवनार मुराई खेती किसानी। कसन होयला गुण उतरायली स्नोनी थमनार पानी। बायले मनुष्य मिसी करी जाहा आहोरी करा निको नी जानी। बायले मनुष्य मिसी करी जाहा आहोरी करा निको नी जानी। महाप्रभुर नाव के धरी करा कमानी तेवे तो खाए बास बानी बानी। सुना सुना हो किसान भाई मन किसानी गोट के सुना। ये गोट के सुनलास बल्ले धान के बाचाए बास जुना। सब पाई सुनबा भाई बहन मन के जुहार।
1: तो सुनतरलास भत्री कविता पाठ सुनातरला चाल जान एदाय सुना गोंडी कहानी। और ये गोंडी कहानी के सुनाय सोत घड़वा राम।
2: पीटो पीटोल राम
3: हिंगोल राम
2: आयो बारा खेवाले गतो
3: हिंगोल राम
2: मुने दिया तोर सयन मंदुल राम
3: हिंगोले
2: लेर बारा खेवाले राम
3: हिंगोल राम
2: मुने तो मर्रा गुटा तुन ले।

अब दूसरा गाना है, सुना नूनी मन सुना बाबू मन, सुना नूनी मन सुना बाबू मन, स्कूल जहा

शांति चैत भावना गुर गुरु चुगोट के तुम धरा, शांति चैत भावना गुरु चुगोट के तुम धरा, देश का जिकरा तुम्हें शुभ कामना, देश का जिकरा।

के दूर करवा जाऊं दादा मन ज्ञान गुड़ी, साक्षरता अभियान चलनी। अज्ञान के दूर करवा जाऊं दादा मन ज्ञान गुड़ी, साक्षरता अभियान चलनी। साक्षरता अभियान चलनी, ज्ञान चोए दीप जलनी।

साक्षरता अभियान चलली, साक्षरता अभियान चलली, गेली अंधियारा बेर उदली, उठा दादा मन साक्षर बना, भारत सरकार तुमके बनली। गेली अंधियारा बेर उदली, उठा दादा मन साक्षर बना, भारत सरकार तुमके बनली।

हाँ धनेश्वर दास जो ये कविता पाठ के सुनलास तो देखा असनी आमी बोली मन के आमचो जीवना ने जब तक नी बार हूँ तब तक बाचुक लाई नहीं सके हुनी काजे हम के हमचो जोन पुरका बेराल चलतो ऐसे हुन बोली मन के बचा तो काजे आम के घर ने परिवार ने बोलुक लाए पड़े दे तेबे ये जोन बोली है बाचुक लाए सके दे कसन बल्ले ने ये बोली मंचो काई बल्ले ने लिख तो काजे अक्षर नी आए हुनी काजे आम के बोलने ने ची ये बोली बाचुक लाए सके दे तो सप्पाए के सेवा जोहार।

अभी आप सुन रहे थे लोक साहित्य पत्रिका मोचू माटी, संपादक थे बलबीर सिंह कच्छ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

0: सुनो ना,
1: हाँ
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं 4 जुलाई 2003 को रिलीज हुई फिल्म साया के गीत, और बताएंगे इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें। तो आइए सुनिए श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत।

साया फिल्म के निर्देशक हैं अनुराग बासु, पटकथा अमोल शेतके का। इस फिल्म के मधुर गीतों की रचना की है आनंद बख्शी ने और इन गीतों को संगीत से सजाया है MM करीम और अनु मलिक ने। तो आइए सुने के स्वर में ये गीत।

इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए जॉन अब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी, जोहरा सहगल, हर्ष छाया, राजेंद्र नाथ जुत्सी, विश्वजीत प्रधान और राणा जंग बहादुर। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और गीत, के और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में।

साया फिल्म के गीतों को गाया है उदित नारायण, सोनू निगम, अलका याग्निक, श्रेया घोषाल और के ने। तो आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में ये गीत।

0: एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे साया फिल्म के गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार एकांश हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ाई। नीट के परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की है। और संजय अग्रवाल छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। अब समाचार विस्तार से। किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन तक के लिए बढ़ा दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत लिया गया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रदेश के किसानों से बढ़ी हुई अवधि का लाभ उठाने और निकटतम सहकारी समिति में जाकर अपनी उपज बेचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे किसान बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकेंगे और उन्हें फसल का

उचित मूल्य मिलेगा। छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार की तैयारी की जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने सभी महाविद्यालयों को शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं और परिणाम समय पर जारी किए जाएंगे। छात्र छात्राओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कॉलेजों में हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। मंत्री ने विद्यार्थियों से समय पर प्रवेश लेने और नई शिक्षा नीति के अनुरूप पढ़ाई शुरू करने की अपील की है। नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन 20 और 21 जून को किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 10 ट्रेनों में 40 अतिरिक्त सामान्य कोच भी लगाए जाएंगे। इस बीच नीट यूजी के परीक्षा परिणाम और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। यह सुविधा मनोरोग विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। विद्यार्थी 18 जून से 2 जुलाई तक मोबाइल नंबर 9425502353 पर तनाव, चिंता, काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेषज्ञों से परामर्श ले सकेंगे। नई दिल्ली के द्वारका में स्थित छत्तीसगढ़ के ट्राइबल यूथ हॉस्टल के 13 अभ्यर्थियों ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में सफलता हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए इसे युवा शक्ति की सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 किए जाने का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। इस हॉस्टल में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, भोजन, पुस्तकालय और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन ने संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष बनाया है। चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री अग्रवाल को नियुक्ति पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि योग स्वस्थ और जागरूक समाज निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि श्री अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता को नई गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी आयुक्त ने निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के 3 अलग अलग मामलों में आबकारी उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग के आबकारी उपनिरीक्षक हरीश पटेल, भानुप्रतापपुर के ओम प्रकाश और अंबिकापुर के आबकारी उपनिरीक्षक अनिल गुप्ता को निलंबित किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी विदर्भ से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन तक के लिए बढ़ाई। नीट के परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की है और संजय अग्रवाल छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं, पेश है कार्यक्रम गुलशन। इसमें आज सुनिए कार्यक्रम मेरी पसंद यानी मेरे पसंद के गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म उपासना से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में सुनिए फिल्म लावा का गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

बड़े दिल वाला इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमा निगार मजरू और मौसीकार हैं आर डी बर्मन।

राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में आइए सुने फिल्म तुम्हारी कसम का गीत। आवाजें हैं मुकेश और आशा भोसले की, शब्द हैं आनंद बख्शी के।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म बरसात की एक रात का गीत, आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

गुलशन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी पसंद यानी मेरे पसंद के गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में सुनिए लोकनाथ वैष्णव और साथियों के गाए हल्बी गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटीनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिप सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटीनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: गुरुद्वारा कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं लोकनाथ वैष्णव और साथियों के गए हलबेलों की।
1: ने खोजा करी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 to 4 तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आम चो फोन नंबर आए 07782226। फोन इन किसान वाणी अपन मंचो सवाल अपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: आप सुन रहे हैं हल पे लोकगीत। गायक कलाकार है लोकनाथ वैष्णव और साथी।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दम में अभी आप सुन रहे थे लोकनाथ वैष्णव और साथियों के गाए हल्पे लोकगीत। मीडियम वेव 396.8 है, 2 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, और एफएम बैंड 100.1 MHz पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी सुन रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
0: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी जबलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां

0: 2-2-2-6-6-6 फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: हम आकाशवाणी छतरपुर से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक गाथाओं का कार्यक्रम रुस रुसा, आज इसमें हम आपको सुना रहे हैं।

ప్రభు హరి బోలు నాజా ఈ జూటా టోడే తో నా ధరె ఏ మహిళ ముడే తో నా ధరె జె తుమ జో నామ ధరె ప్రభు తుమ జో నామ ధరె ఈ ఆందా గడే తో ఆయే వే ए आंधा घड़े तो आए ये भेजे पुत्र जनम करली प्रभु पुत्र जनम करली एकाए सुंदर बाबी पीला एकाए सुंदर बाबी पीला जे नहा खोरा करे प्रभु नहा खोरा करे ईसुई नड करी तो नाना दिली ए सुई नड करी तो नहाना दिली जे बमली काटू न गेली प्रभु बमली काटू न गेली ये दे रानी तुम्ही आदि न रानी ये दे रानी तुम्ही आदि न रानी जे बाबू के धरा बोले प्रभु बाबू के धरा बोले ई हो तीन धरा ना

प्रभु।

ইয়া ইয়া বলে তুই আদিনা রানী ইবা

चलोगे आए इको दखने तो लोग ने मो देवे ई दख बोलिए तो लोग ने मो तो ये भेजे खांडा धानो ने मो पुरगु खांडा धानो ने मो ई खांडा धानो तो नीला ये भे ये खांडा धानो तो नीला ये भेजे खांडा खांडु न जावो पुरगु धानो खांडु न जावो ईचा बुरा मानो तो कांड तहे वे ईचा बुरा मानो तो कांड तहे वे जे पोयला गुरु न जाए पुरगु दस पोली गुरु न जाए ई उरलो बीती के सागना देवो ए उरलो बीती के सागना देवो तो दस पोली आनु न देवो पोयरु माचे पोली आनु न देवो ई राजा घरे तो आनु न देवो ए राजा घरे तो आनु न दीला जे कांडा धानो आए प्रभु कांडा धानो आए ये देरानी हमी आनु न दीलू ये देरानी हमी आनु न दीलू जे असने बोलू न बोलत प्रभु असने बोलू न बोलत चारो पांचो दिन ने हेवे ये चारो पांचो दिन ने ये भेजे काये विचार करत प्रभु काये अकल कर आया बोले तु आ दिन रानी ई बाबा बोले तु आदा राजा जे हम जो गोट सुना प्रभु हम जो बात माना ई नवा दिन ने सोची करू ए नौ दिन ने सोटी करू जे बाबीच बोलू न बोल प्रभु बाबीच बोलू न बोल ई बाबा बोले तु आंदा राजा ई बाबा बोले तु आंदा राजा जे मोचो बातो सुन प्रभु मोचो गोट सुन ई दिसरी घरे तु जावे बाबा ए कुंजार घरे तु जावे बाबा जे नाम पूछू न जासे बाबा नाम पूछू न जासे।

ईसा गा राजा तुम बोले वे, ईसा गा राजा तुम बोले ये भेजे पंजे यारा बोलू ना जाए, रघु पंजे यारा बोलू ना जाए। ई बाबू बोले तुई पंजे यारा पीला, ई बाबू बोले तुई पंजे यारा पीला, जे पाजी दो खुना जावे बाबू पाजी दो खुना जावे। ई तले सुना लो पंजे यारा पीला, एहू तले सुना लो पंजे यारा पीला, जे पाजी खूटो निकराए प्रभु पाजी निकराना जाए। ई उलटाना पुलटाना दोखे वे, ए उलटाना पुलटाना दोखे वे, भेजे पाजी दो खुना जाए प्रभु पाजी दो खुना जाए। ई मोचा नाए तो हासे माने, ए मोचा नाए तो हासे माने, जे पंजे यारा पीला तो वाय प्रभु पंजे यारा पीला तो वाय।

जाजे पंजे यारा सांगू ना जाजे प्रभु पंजे यारा सांगू ना जाजे। इकाए सुंदर नास बोली एकाए सुंदर नास बोली दे बाली गाँव रातो आए प्रभु बाली गाँव रातो आए। इतने बोलू न सागे बे इतने बोलू न सागे बे जे पूजरी पीला सागे प्रभु गुनिया पीला सागे। इंदा राजा तो सुने बे ए आंदा राजा तो सुने ये बे जे सुनु न जाले गेलो प्रभु मनने हरि कहलो। इ हरि कहो मुन गेलो ये बे ए हरि कहो मुन गेलो ये बे जे आंदा राजा तो आए प्रभु आंदा राजा तो आए। इ जाए से बाबू जे कुंजे यार पीला ए जाए से बाबू जे दिसरी पीला जे मोए जाए से बोले प्रभु मोए जाए से बोले। इ अपनो घरे तो इलो हे बे ए अपनो घरे तो इलो हे बे जे पानी दे हु न जावो प्रभु पाए धो हु न जाए। इ बाबा बोले तुई आंदा राजा ए बाबा बोले तुई आंदा राजा जे गोटो सांगू न जावे बाबा गोटो सांगू न जावे। इ काहे नावो तो सुबली बाबा ए काहे नावो तो सुबली बाबा जे सांगू न जावे।

ई दुआ

छोड़ा देहू न जाओ प्रभु छोड़ा देहू न जाओ ये भूत

ले तो सोटिया ये जे पारा च लोग के सांगु पुरगु गांव च लोग के सांगु इयो तने बोलू ना बोलत ए बे इयो तने बोलू ना बोलत ए बे जे घर च लोग तो आ पुरगु घर च लोग तो आ ई बाबा बोले तुई आंदा राजा ई बाबा बोले तुई आंदा राजा जे गांव ने जाऊं दे बोलो प्रभु पारा ने जाऊं दे बोलो ई सोटी सांगु को जाऊं दे बोलो ए सोटी सांगु को जाऊं दे बोलो तो सातो बेटा बोलो प्रभु सातो बेटा बोलो ई आंदा राजा तो सुने बे ए आंदा राजा तो सुने ये वे जे आंदा राजा तो आए प्रभु आंदा राजा तो आए ई पारा भीतरे तो गेला ए वे ए गांव भीतरे तो गेला ए वे जे सोटी सांगु न जास प्रभु सोटी सांगु न जास ई हरी हरी जे राम राम ए हरी हरी जे राम राम मैं राम बोलू न जाए प्रभु हरी बोलू न जाए।

0: आधा राजा। लोक गाथाओं के कार्यक्रम रुसरुसा में अभी आप सुन रहे थे ये लोक गाथा। गायिका थी सुबरीबाई। हम आपको बता दें कि इस लोक गाथा का चौथा भाग 21 जून रविवार को प्रसारित किया जाएगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11:30 हुए हैं।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदी फिल्म जगत की एक समर्पित गायिका, जिनके बुलंद खनकदार और अनूठी आवाज ने लाखों दिलों पर राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वर साम्राज्ञी शमशाद बेगम की। श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम में हम बात करते हैं फिल्म और संगीत जगत के महान विभूतियों के, जिन्होंने अपनी कला से भारतीय सिनेमा को समृद्ध बनाया है। फिल्म संगीत के स्वर्णिम इतिहास में कुछ आवाजें ऐसी हैं जो केवल गीत नहीं गाती बल्कि एक दौर की पहचान बन जाती हैं। जी हाँ, आज के हमारे कलाकार हैं महान गायिका शमशाद बेगम।

14 अप्रैल 1919 को लाहौर में जन्मे शमशाद बेगम ने अपने गायन की शुरुआत रेडियो से की थी। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाले बरबस ही उनकी ओर खींचे चले आते थे। संगीतकार गुलाम हैदर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फिल्मों में गाने का अवसर दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गीत की चंचलता और उनकी आवाज की खनक आज भी श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर देती है।

शमशाद बेगम के गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी स्वाभाविकता। उन्होंने कभी अपनी आवाज को किसी सांचे में ढालने की कोशिश नहीं की थी। उनकी गायकी में पंजाब के लोक संगीत की मिठास और भारतीय संस्कृति की आत्मा समाई हुई है। श्रोताओं, शमशाद बेगम की आवाज में जो ताजगी थी वो इस गीत को और भी खास बना देती है। फिल्म पतंगा का ये गीत आज भी पुराने लोकप्रिय गीतों में गिना जाता है। उनकी आवाज में दर्द भी है, शरारत भी और लोकगीतों का उल्लास भी। यही कारण है कि उन्होंने हर तरह के गीतों को सफलतापूर्वक निभाया।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक है कलाकार। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं महान गायिका शमशा बेगम पर केंद्रित कार्यक्रम। सुनो, एक समय ऐसा भी था जब फिल्म उद्योग में शमशाद बेगम सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले गायिकाओं में शामिल थी। 1940 और 1950 का दशक शमशाद बेगम के नाम रहा। उस दौर में जब फिल्म संगीत अपनी पहचान बना रहा था तो उनकी आवाज की सफलता की गारंटी मानी जाती थी। नौशाद, सी रामचंद, ओपी नैयर और एस टी बर्मन जैसे संगीतकार उनके गायकी के मुरीद थे।

शमशाद बेगम ने ऐसे समय में गायन की दुनिया में कदम रखा जब महिलाओं का मंच और संगीत की ओर आना आसान नहीं था। बचपन से उनकी आवाज में एक अलग आकर्षण था। वे उन पहले गायिकाओं में थे जिन्होंने फिल्मी गीतों को जन जन तक पहुंचाया।

श्रोताओं, शमशाद बेगम ने अपने लंबे संगीत सफर में लगभग 6,000 से अधिक गीत गाए। हिंदी के अलावा उन्होंने पंजाबी, उर्दू, बांग्ला, गुजराती, मराठी और अन्य भाषाओं में भी अपने आवाज का जादू बिखेरा। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। ये सम्मान भारतीय संगीत जगत में उनके अतुलनीय योगदान का प्रमाण है। वे केवल एक गायिका नहीं थी बल्कि भारतीय फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक सशक्त पहचान है। उनकी आवाज में जो खनक, ऊर्जा और अपनापन था, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। 23 अप्रैल 2013 को ये अमर स्वर हमेशा के लिए मौन हो गया। इस महान गायिका को नमन करते हुए सुनते हैं उनका एक यादगार गीत, क्योंकि कुछ आवाजें समय के साथ पुरानी नहीं होती, वे इतिहास बन जाती है। और शमशाद बेगम की आवाज भी ऐसे ही एक अमर विरासत है।

एक ही कलाकार। अभी आप सुन रहे थे हमारा ये दैनिक कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था गुजरे जमाने के महान गायिका शमशाद बेगम पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जा रहा है और नीट के परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नियत नीलानार योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 23 जिलों में 31 योजनाओं का संतृप्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग, विभागों के समन्वय और जवाबदेह व्यवस्था से लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परिवार तक शासन की योजनाएं पहुंचाने से ही विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा। नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा, दुर्ग, कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन 20 और 21 जून को किया जाएगा। इसके अलावा हरदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 10 ट्रेनों में 40 अतिरिक्त सामान्य कोच भी लगाए जाएंगे। इस बीच नीट यूजी के परीक्षा परिणाम और प्रवेश परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को देख

0: देखते हुए बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। यह सुविधा मनोरोग विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। विद्यार्थी 18 जून से 2 जुलाई तक मोबाइल नंबर 9425502353 पर तनाव, चिंता, काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेषज्ञों से परामर्श ले सकेंगे। किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन तक के लिए बढ़ा दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत लिया गया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रदेश के किसानों से बढ़ी हुई अवधि का लाभ उठाने और निकटतम सहकारी समिति में जाकर अपनी उपज बेचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे किसान बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकेंगे और उन्हें फसल का उचित मूल्य मिलेगा। छत्तीसगढ़ शासन ने संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री अग्रवाल को नियुक्ति पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ और जागरूक समाज निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि श्री अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता को नई गति मिलेगी। वन विभाग ने गुरुवार को भारतीय वन सेवा IFS के अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाओं का आदेश जारी किया है। इस फेरबदल के तहत मुख्य वन संरक्षक और वन संरक्षक स्तर के 7 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 17 जून को रावघाट रेल खंड पर नियंत्रित गति और सीमित भार के साथ तकनीकी ट्रायल शुरू किया गया। इस दौरान 58 रेक का उपयोग किया गया। करीब 95 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का निर्माण सेल भिलाई इस्पात संयंत्र और भारतीय रेलवे के सहयोग से किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार ट्रायल के बाद सुरक्षा स्वीकृति मिलने पर यात्री ट्रेन सेवा शुरू हो सकेगी। इससे बस्तर क्षेत्र में आवागमन, रोजगार और विकास के अवसर बढ़ेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जा रहा है और नीट के परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मेरी वेव 396.8 है, 2 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR में भी सुन रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए हल्की बोली में कार्यक्रम

0: सीन है ना, बीसी आना था और वीडियो के साथ के लोग में लगते रहना। आखिर में जेचु घरे ने टीवी आसे बंद ले ली तो राजा दशरथ सुनार बोल रखा है। और फिर ताकि न जाऊं फिर लोग मन सिनेमा दत्तो काजी का संघरी को तो ता दीदी लोग मन सिनेमा के इतरो मन कर सो ने कहा काजी। और सिनेमा फिल्म जो कहानी वचन कहा रहे से कि लोग मन जो मन के भेदे से सिनेमा जो गीत गोविंद ने
1: कंपनी की

0: गांव में नहीं रहते कि क्या, महका तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: तो बाबा दीदी, तुम्हें जान सासी, ये गोविंद सुन रहे हैं कहाँ सुंदर हरि प्यारे से, और ये गीत गोविंद ने जरूर कहा रहे से बाजा। हाँ बाबा दीदी, बाजा इतने सुंदर लागे से सुन ले, नहीं पसंद बाजा का था ऐसे बल्लों ने मुहरी बाजा, बांसी, ढोल, तबला, सब पर बाजा के तुम्हें जाना सी, और जब तक तो नहीं बाजा ने बाजे नहीं तब तक गीत आई गीत वहां नहीं लागे का सत्य है। आज जो कलाकार दिख रहे, आज मैं असल महान कलाकार जो कला जो ना जो गोट के आने से जो है भारत जो महान तबला वादक बल्लों ने तबला बजातो कलाकार उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन असल तबला बजाते वाला किन्हीं पहला बनना चुका है, और उन जो जब अंकिन तबला ऊपर तुरवाए नहीं तो सब लग रहा है कि बरसा बिरा जो बिजरी है। तो अगर देर नहीं करूं और उस्ताद जाकिर हुसैन जो कला सफर जो जिन्ना के विस्तार में जाना। तो बाबा दीदी, महाराष्ट्र राज्य मुंबई महानगरी में 9 मार्च बरख 1951 में जाकिर हुसैन जो जन्म हुई। बाबा पिता महान तबला वादक बल्लों ने जो नाम रहे उस्ताद अल्लाह रखा खान जो घर में जन्म कर ला। फिर बाबा पिता बनने खुदे बड़े तबला वादक और महान कलाकार रहा। बल्लों ने बाबा पिता जाकिर हुसैन के सिखाला हुन विरासत ने हुन की हुन कला में भी तबला बजाते कला। और फिर जब जाकिर हुसैन 3 चुराला ने दादा दीदी तो हुन विराले आप लोग बाबा ने तबला बजाते के कला के सीखते रहना। संगीत का जे जाकिर हुसैन जो इतरो मना रहे के लिए दिन रात में हुन बाजा बजाते खेलते रहो, दूसर पिला मन ने दूसर खेल न रहे खेलो मानकर जाकिर ने खाली तबला बजान बजान खेलते रहो। स्कूल में के बेट टेबल के बाजा बजाओ तो घर भीतर के बेट दवा के बाजा बजाओ, तबला तो हम जो कार्य जैसा खेलो ना रही। अब काय होली के 11 बेरा वो तो बड़े मंच में आप लोग कला जो प्रदर्शन जो मौका नहीं रही। चिंगड़ी के नानी ऐसा मेरे का पीला चेहरा में उजर और हाथ में जादू रहे, इतना सुंदर तबला बजावा हम मिला कि लोग बल्ला के ये लेकर गुटुक दिन इतिहास रचे थे और उसने गुलित थी खुद भी प्रसिद्धि कर लिया। जाकिर हुसैन भारतीय शास्त्रीय पारंपरिक संगीत जो जीना जो देश दुनिया ने भारत जो मान बढ़ाना, भारतीय संगीत संगनी पश्चिमी देश जो संगीत रुआनी हम जो संगम के जनता तक अमराला और सपा लोग ने ये संगीत के खुद मान बन कर ला। अमेरिका रॉक बैंड ग्रेटफुल डेड जो निकी हार्ट संगे मिशन भारती ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट पे काम कर लिया और खूब देश दुनिया ने नाम कमाया। दादा दीदी, जाकिर हुसैन जो जन प्रतिभा कला और जन कला का जी नया समर्पण आते नहीं हम जो कार्य हजारों पुरस्कार और मान सम्मान पाला। भारत सरकार बाटले बरख 1988 में पद्मश्री और बरख 2002 में पद्म भूषण सम्मान मिले। संगीत जो क्षेत्र में इतना योगदान दिला ने तो बना रही संगीत काजे तो बड़ा

Das ist ein Wort.

Appunto, sì.

काय सुंदर गीत गोविंद तुकडी दादा दीदी मंत्र मच्छ जातो सण्यावर कुली तो तुम्ही असनी आमचे कार्यक्रम के सुनते रहा और आमके असनी माया करते रहा और आले दिया हमके विदा तो जातो पूरे कार्यक्रम कला और कलाकार सुन तो सब पाया दादा दीदी के मैं मन की करें से जुहार।

कला और कलाकार। अभी आप हल्बी बोली में हमारा ये दैनिक कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं। लेकिन सुनिए, ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर द्वार।

जुहार जुहार, रेडियो कार्यक्रम घर द्वार सुन तो सपाय माय माता मन के सियानी दीदी भौजी के और सन जोहरिया बहन लोग के, मैं तुम जो बहन मन की करण से खुब्बे खुब्बे जुहार। बहन मन सपाय रांदा बाड़ा बूटा के निपटाउन भाती रेडियो लगे अमर लास ने। बहन मन मैं तुम जो काजे नुआ नुआ ज्ञान ध्यान चो रंगत गोट के धरो नाजी अमर लेस ने। दखा आमी आप लो रोजे दिनानी कितरो बूटा करन से ने, मेहनत मसागत करन से, कमानी धमानी करुण भाती आप लोग जीवना के जीवन से, और आम के भूता कर तो काजे काय लागे से बल ताकत कसन आय का है, और ये बल बप्पू आम के मेरे से साग भात और खातो जीनिस ले, बल काजे आमी नगद खाऊं से पीऊं से, और ये खातो जीनिस मन ये खाओ तो पीऊ तो काजे आम के काय ऐसे सुरता सुरता कर ले सुरता ऐसे रांडा घर, और रांधा घर के सुरता कर ले काय सुरता ही हुआ है, तपलो तपलो साग, तपलो तपलो दार भात, तपलो तपलो चाह।

विसरान मास मछली सुखसी अवकाश सुंदर दारबोगो। सुरताई लिखा है, हाँ मानतर बहन मन तुम्हें के भी ये विचार करला साहस कि ये रांधा घर तो चाहनी आमचो पेट भर तो ठान नो है, ये रांधा घर तो आमचो देह पाए के बल बपू दे तो ठान है। जसन माय और पीला चो नाता है, जसन नदी और पानी चो नाता है, उसने ची रांधा घर और बल बपू पोषण चो नाता है। बलवा की जसन प्रकार चो आने जिनिस खाऊं से नहीं, उसने ची आमचो मन बने से और आमचो देह पाए वाले उसने बने से। बहन मन तुम्हें जान शास्त्री मंडिया पेज आमचो काजे कितरो नंगा पाए, उनके प्यूले ताकत मेरे से ने, और फिर बरन बरन चो भाजी डाला जसन मेथी भाजी लाल भाजी मुनगा भाजी तेज भाजी खाले कितरो बल बपो मेरे से। और आमे काय बले साफ आमर रांधन से तुहुन थाने हरदी नून मिरी लगवा ची ने, तो हरदी तो गुणकारी आए ची हम जानू ची, और नून ले आम के मेरे से आयोडीन बल्लो ने आम के जेवल आमे भात साग में दारुल से हिंचो ले आम के बल बपू मेरे से। आ फिर सुरता कर ले तेतर आमा चुसन दान खा ले का सुंदर लागे सने चुटोंडे तो पानी फिटली, आ फिर संगे संगे जो ने माछ मछली ले आम के प्रोटीन मेरे से। बल्लो ने जितरो बले बल बपू आए नी सब पर आम के नी रांडा खोले ले मेरे से। आम तो जो ने रांधा खोली ये जो रांधा घर आई नी ये सेहत जो खजाना है बहन, और एक खजाना जो जो ज्ञान आई नी आम जो पुरखती समझाते ले चलते हैं से। आई संगो आए माँ के और माँ संगो आए फिर बेटे के, बल्लो ने गोटोक पीढ़ी ले दूसर पीढ़ी ये जो सेहत जो खजाना जो गोटोक रहस्य आए ये लोग जान सो। मानतर बहन मन आज काले नी उन पाकिट बीती खाजा चरबन उन सब पाए ज्ञान के नसाए से। पीला मन काय करवा पीला मन संसार तो सियान मन गलुस नी, भूख लागले तूर पे पाकिट के खोलवा और दाल लबर लबर खावा। इतो ले सुआत तो मेरे से मान तो और बल बपो तो नी मेरे और उप्रहा देर पाए न सुन जा से हुन लो। तो बहन मन जो सुआत जो गुण रांधा घर जो रांध लो खाजा न्या से नी हुन आन के नी पाकिट खाजा नी नी मेरे। तो मचो बहन मन तुम्हें आप लोग काजे आप लोग घर परिवार काजे आप लोग पीला जिला काजे जित्रो होए से नहीं उत्रो आगर घर जो रान लो साग भात के खा, आप लोग भात थारी के नहीं तिरंगा बना। उन तुम्हें सुनना साहस का है आंगनबाड़ी थाने बोलवा तो तिरंगा खाना खातो रहे। तिरंगा खाना बल्लम का है से हरा रंग जो साग होए से और पीला रंग जो बार और सफेद रंग जो भात एक खातो रहे, और जैसे मौसम रहे से नहीं बहन मन उसने साग और पाक फर के खातो रहा, जो मौसम में जो साग जो पाक फर रहे से उनके खा लेने देह न सुन जाए से। तो मुझे बहन मन हरिक ने रांधा और हरिक ने खाहा और तुम्हें नंगत रहा, एक कितरो सुंदर गोट की आने सुन लो मैं बहन मन। और सन रांधा जो गोट कर ले मैं खातो जिनिस मन जो गोट कर ले तो असनी गोटो खातो जिनिस बीते गीत हो ले खूबे नंगत लागती बहन मन। तो बहन मन तो ये राजेंद्र कश्यप और हम जो संगवारी मन जो गा लो ये काय सुंदर गीत आए आलिया गीत के सुने।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: सुप्रकिन बढ़िया राहत केंद्रात उंडाना सामान तलाय दरता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंदे जीएसटी लगे मायो इदेन संगे 33 जरूरी दवाई ना मोलावन कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चावन कम लगे माता जीवन बीमा तगवन इंदे जीएसटी छूट दरकिता अदेन के पॉलिसी पोइतनत इंदे सस्ता आंता सुदला कार गाड़ी और 350 सीसी का पोट्रो गाड़ी का पुर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजन 18%।

0: पत्ता इदेन मतलब इदकी इंजे गाड़ी पुट्रु गाड़ी असित के सस्ता दोरकीता।
1: तो बहिर मन आमचो घर द्वार कार्यक्रम भितरे मैं तुमचो काजे नगद नगद गोट मन के तू आन गेसे। तो बहिर मन जे भी आमी पिला बेरा आप लो आई दादी ले आप लो आया ले कहानी के सुनते रहूं तो कितरो हरी लागते रहे। नहीं कहानी के सुन ले कसम लाग हुआ है कि अबर आगे काल हो दे ये कसम होली हम जो सम आ हाता असम बोलूं आमी विचार करूं और कहने चो गोट सन सन आमी हम कहने के जीना और हम कहने के सुनन भाती आम के तुबे हरिक बल लागवा और केवे केवे मुरुस नहीं बल लागवा और केवे केवे आमी हम कहने के सुनन भाती ज्ञान बोले धर्मा। तो हमने कहा जाए मैं तुम जो कहा जाए कहने पाठ के धर्म मर ले से। तो ये कहने के आमी सुनवा और ये कहने के सांसोत जगन्नाथ बगले तो आलिया ये कहने पाठ के सुनो।
2: चतुर कोल्या गोटक राज ने बाग सुख शांति ले उता चो जीव जंतु मन संगे राज करते रुआ है। उन बाग रान ने सब प्रजाति चो जानवर जीव जंतु मन के ध्यान रखून अलग अलग विभाग ने पद देवन रुआ है। उन रान ने काई डर भय नहीं आए को गरीब नहीं आत कुशाली निर्भय उन जीव जंतु मन रान ने गुलाय बोलते रुआ। गोटक कोल्या दूसरा रान ले काई मीर तो के जीव तो का तो काजे बाप चो राने ये हुआ है। उन रान ने कोलिया खिंडिक दिन होगा है हुआ है और धीरे धीरे उन रान चो बाग राजा के संगवारी बन हुआ है। बाग और कोलिया धीरे धीरे अच्छा ले मित्र बन हुआ बाप कोलिया के खूब विश्वास कर हुआ है और मंत्री बन हुआ है। कोलिया बाग चो मंत्री बन उन मंत्रिमंडल में झगड़ा कर हुआ है। मंत्रिमंडल में झगड़ा वालों पाचे बाग आप जूना मंत्री मन के उन चो फौज ने निकराते जो है। बाग कोल्या के उता चो प्रधानमंत्री बन हुआ है। कोल्या प्रधानमंत्री बन उता चो मंत्री मन के भेदभाव पैदा कर हुआ है। बाग चो संगवारी मंत्री मन के कोल्या धीरे धीरे निकराते जो है। कोल्या आप लो चापलो से मंत्री मन के संगाते जो है। कोल्या खुद बाग राजा के मारोन राजा बन तो काजे वार सोचते रुआ है। कोल्या एक दिन आप लोग वाट ने बाग राजा के मार तो काजे राने बुला के लेने वाए। बाग राजा और कोल्या राने बोलते बोलते गोटक तितर चढ़ी के दरुआ है और कोल्या गोटक लिटी चढ़ी के दरुआ है। कोल्या आप लोग मन ने सोचो मुरिया ली बाग के कसन करुन तितर चढ़ी के कातो काजे टगें दे भी बोलते। कोल्या बाग के बोल ली ये सका तुम्हें उदलो बड़े बाग तितर चढ़ी के कहाँ ले पेट बरुआ है तीतर का तीतरी तीरा मैं लिट्टी चढ़ी के धर ले से लिट्टी चढ़ी लिट्टी पिटी बारह पुटी मांस और लिट्टी पिटी बारह गागर तेल हुआ। उनके सुन बाघ कुबे हरी कोली और कोल्या के लिट्टी चढ़ी के जट के मांग ली। कोल्या मन मन में हरी कौन लिट्टी चढ़ी के बाघ के दी ली और आपन तीतर चढ़ी के धर ली। कोल्या तीतर चढ़ी के धर बाघ लगे चंद बेड़ा कुरिया ली। ये सका बाग मके का पेट दुखे से बोलो गोन रोन जाए से दंड के रुक काले सोन देता बोलो। कोल्या रुक काले सोल औसन ओन बाग के किंडी काड़ होता के दकुन उताले जट के पोरा ली और कोल्या जोड़ी लगे जाओ तितर चढ़े के मन माने खाद ली। बाग कोल्या के गुला डग रहा है से बाग आप लोग मन ने बोले से किधर दाल लिट्टी चढ़ी बारह पुटी मांस और बारह गागरा तेल हुआ है भी बोलू। बाघ अस्कट और लिट्टी चढ़ी के कादली लिट्टी चढ़ी बाघ के दांत की बल नहीं लागली कुछ न गिरुन दिली। बाघ समझ ली कोलिया मके ठग ली मुनि का जो पना गाय बिड़ाते रहे पेड़ दुखे से बोलू गोल रोन जाते रहे। बाघ कोल्या के मन मन ने खूब रीस हो से रीच का जो दांत कटवन जाए से। कोल्या मिर्ले ने भी मर्त मारें दे बोलूं गुला डग रहा है राने डग रहा थे कोल्या गोटक नदी रेटे मिर्ले उदली था कोल्या हमा पान के चोमड़ी बनन बारू के जोर जोर से नापे से। बाग कोल्या के दूर ले दख ली और लुकते लुकते जावन बती कोल्या के चप ना धर ली। बाग कोल्या के रीस होन बुल बुल गए तू मके तितिर चढ़े के ठगुन कात बितास और लुकुन लुकुन कात बिता मैं तुके नहीं बचाए मर्त मारून टुकड़ा टुकड़ा करूं ये भी कायम दे।

0: आज गोट के निधर से उनके मृत्यु दान दीवा है और उन राम ने गरीब बुढ़वा सुख और चैन नहीं रहे। ये सब घटना के कुरवा चढ़ी सबके जानते रुगा कुरवा कोलिया के मार तो काजे उपाय करुक मुरे हुआ पे कुरवा जहरीला सांप कोलिया जो गरी आनंद चानन दीवा कोलिया के सांप चाप लेने उनसे मृत्यु हुआ मुर हुआ कोलिया जो मर लेने राम जो जीव जंतु में सब हरि कुआत और उन राम जो राजा हाथी के बना हुआ और उन राम ने आगे जो सं सब लोग जीव जंतु में सुख ने रोक ला मुरे हुआ उन्हें कहा जो आम जो गांव पारा ने बोले बाहरी लीलो बीता मन के आप लोग गांव पारा में जट की विश्वास नहीं करते रहे और उन गांव ने बोले भूसुक लाई नहीं देते रहे।
1: तो बहन ये काय सुंदर कहानी के सुन लूने ये चतुर कोलिया और ये कहानी ने तुम्हें का सिखला कि हमके दूसरे ऊपर में इतरो झटके विश्वास नहीं करते रहे। आप लोग जो ना सोच विचार के आप लोग ज्ञान के दत्तो रहे और अपन के होशियार रहते रहे नहारे फिर अस्ती कोलिया जैसे लोग मन आम के खराब दे ये तो कहानी होली बहन मन ये तो संगे संगे गीत गोविंद होले और हरिक लागते नहीं तो आलिया मेघनाथ पटनायक अब उनचो संगवारी मंचो राग में गा लो ये काय सुंदर गीत के हमें सुनो।

0: ये का रसिया गीत के सुन लो
1: देखा है
0: बहन तुम संग एक बहुत बात करते करते समय के भी घूम जावा है पता ही नहीं चले मानतर विदा घर तो समय तो ही नहीं बहन मन तुम्हें असली आम चो कार्यक्रम सुनते रहा और नंगत रहा और मके दिया विदा तो जाते पूरे कार्यक्रम घर द्वार सुन तो मचो सब पाए बहन के मैं मन की करें से जुहार।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर द्वार। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन का 1 बजा है। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
2: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना

0: का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेगा धातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802827 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाई नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कृषि समय के बेड़ा खड़ा चगोट।
2: गांवकारी खेतीहर दादा दीदी मन असन तो आजिकाली सपाय किसान मन साग भाजी आरु धान फसल चो कमानी आगर कर सोत मानतर ए बीच बतर ने आमी आप लो बाड़ी नहाले मरान भुई ने नंगत वाट धरुन भाती जोंद्रा फसल चो कमानी करुक सकूं। दादा दीदी मन आमी जोंद्रा के भोजन खाऊं से संगे संगे जोंद्रा ले बोबो रोटी पेज और कहक बानी बने से घरे पशु जनावर आसोजा ने जोंद्रा चो पाना छोई और बीज ले नंगत पशु चारा बोले बने से और एचो ले गोरस दे तो पशु मंचो गोरस बले बाढ़ू आए ऐचे काजे दादा दीदी मन जोंद्रा चो कमानी खूबे लाभ चो कमानी होय से कुकड़ा कुकड़ी काजे बले जोंद्रा नंगत चारा आए आजी मैं तुमके जोंद्रा चो नंगत कमानी करतो वाट के सांगे से असन तो आम चो देश ने 2.5 एकड़ में 20 कुंटल जोंद्रा चो उपजन हो मानतर उन्नत वाट धरुन भाती मांद रोप ले आमी 2.5 एकड़ ने 35 ले 40 कुंटल उपजन धरुक सकूं। ए चुकाजे कमई चो वाट के सुना सबले पहिल भूई असन तो जोंद्रा फसल चो कमानी सपाय बतर चो सपाय बरन चो भूई ने हो वाए मानतर बारू मिश्रा दुई माटिया भूई जोंद्रा काजे सबले नंगत रहे से संगे संगे बुनतो रोपतो वाट के बले जाना चमास बतर काजे लांडी ले धरुन भाती गोंचा जोन बल्लो ने जून महीना ले जुलाई महीना चो पहिल हफ्ता ने जोंद्रा के रोपुन देतो राय आरु शीतकार बेरा काजे होले अक्टूबर चो आखरी ले धरुन भाती नवंबर महीना ने जोंद्रा के रोपुन देतो राय झपके रोपतर होले बेर ले पाक तो किसम आरु बेर ले रोपतर होले झपके पाक तो किसम के धरतो राय आरु दादा दीदी मन नंगत उपजन धरतो काजे नंगत शुद्ध आरु खोजाकारी मंचो सांगलो बीज के उपयोग करतो राय नानी बीचा बीती किसम होले 18 ले 20 किलो बीज आरु संकर किसम होले 20 किलो बीज 2.5 एकड़ काजे नंगत पूरुआए नंगत लेहरा पानी के रोने नंगत उपजन मिरुआए शीतकार आरु चमास बेरा रोप तो काजे धाड़ी ले धाड़ी चो दूरिया 60 ले 75 सेंटीमीटर होतो राय संगे संगे दादा दीदी मन फसल काजे खत भात बन लगुआए तो जोंद्रा चो आगर उपजन धरतो काजे 2 बरख ने 1 हार 10 ले 12 टन नंगत कुहलो गोबर खत के नहाले कंपोस्ट खत के 2.5 एकड़ भूई ने मिसातो राय असनी कोड़का कुसलाक बल्ला गुआ।

0: तो कोड़ का होले भूई भसभसा हुआ है और भूई भीतर ले लेहरा चो यार जहार होलो ने बूटा चो जड़ ने नंगत बल भोपू और पानी बूटा के मीरुआ पहिल हार रोपलो 15 दिन ने पाछे दूसर हार 35 ले 40 दिन ने कोड़ का कुसला करतो रहे। आगर लाटा होले लाटा मरला तो ओखत छिचुन भाती लाटा गुचाउकलाय हुआ पाछे बूटा ने माटी चेगौन देतो रहे। संगे संगे दादा दीदी मन जोंदरा फसल ने कसन सिंचाई के ध्यान देतो रहे। एक गोट के बल सुना जोंदरा फसल का जे आगर पानी आरु कम पानी दोनों नुकसान करू है। चमास बेरा जोंदरा ने असन तो सिंचाई करुक नी लागे मांतर नंगत पानी नी मारले जोंदरा फसल ने 8 ले 10 हार सिंचाई लागू है। मांतर फूले तो बेरा बेड़ा ने ओल रतोर जरूरी है। नहाले जोंदरा ने नंगत बीचा बले नी भरे तो एक दकुन भाती समया समया ने आम के सिंचाई करतो रहे। असनी दादा दीदी मन कटई मिंडी बल ले करतो रहे। कसन बलो ने पहिल काटून दिलू जाले हुंचो बीचा आम के नंगत नी मिरे तो दाना काजे रोपलो फसल ने जोंदरा चो उपरे चो पाना सुखू रहो आरु बीचा नक ले चेपई नी होतो रहे। चेपाउन दकतो रहे खिंडिक उन चेपई होइस जाले 2 दिन और रहोता। बूटा चो खाले चो पाना सुखुन रहो आरु बूटा चो डांडी सुखुन भाती मोड़िया तो बेरा जोंदरा के टूटा तो रहे। संगे संगे दादा दीदी मन नंगत उपजन होली जाले हुनके नंगत थान ने बोले ठोआ संगा करतो रहे। तो जोंदरा के टूटाउन भाती नंगत घाम ने सुखातो रहे पाछे भीतरे संगा तो ठो तो बेरा नंगत सुखलो ठान ने संगातो रहे। जोंदरा के बीचा हिटा तो काजे बल्लो ने उचला तो काजे कल मशीन मंचो उपयोग करतो रहे। आजिकाली हाट बाजार ने कैक बरंचो कल मशीन मन इली से तो हुन हिसाब ने जोंदरा के उचला तो काजे बल्लो मशीन बनली से तो हुनचो उपयोग करुन भाती तुम्ही हुनचो बीचा के निखरौक सकास। तो दादा दीदी मन असन वाट धरुन भाती जोंदरा कमनी करलो ने किसान के खूब्बे लाभ मीरुआ।
1: अभी कृषि समय के बेड़ा खड़ा चौगोट कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी सुन रहे हैं। दोपहर के 1:10 और 45 सेकेंड हुए हैं।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल। अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक। तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
3: GST काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर GST की 4 दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% GST है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
1: और पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन।

श्रोता सुमन, सुनने वाले तमाम श्रोताओं को गायत्री आचार्य का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं मजरों के लिखे इस गीत के साथ। आर डी बर्मन का संगीत, स्वर लता मंगेश।

और मुकेश के हिट फिल्म का नाम है फिर कब मिलोगी, और इस गीत को सुनवाने का अनुरोध करते हुए हमें पत्र लिख भेजा है रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, संजय महोबिया, नंदिनी महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनो, डॉली, देवराज महोबिया और भैयो दादा। शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से हमारे ये श्रोता है वीएस महोबिया और कमला महोबिया। चंडीगढ़ के ये श्रोता है सतीश अनेजा, विमला अनेजा, चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर। आप सब हैं अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के श्रोता। आप हैं मध्य प्रदेश धाम मोहल्ला पन्ना से कौशल किशोर, संगीता हर्षित और वैभव मट्टू। गांव परसाटोला सिलामबागर चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोजनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारणी मसिया। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से है रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान। आप हैं चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू और रविंद्र सेन, यहीं से खुशी और रौनक सेन। विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, नीलमपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, रमापुरी और आरएसपुरी। आप सब हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आप सब हैं छत्रपति संभाजी नगर से। महासमुंद खट्टी से आप हैं सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, अवध पटेल, भीष्मदास और अवध पटेल। राजनगर मधुबनी बिहार के हमारे ये श्रोता हैं कुशेश्वर, कांति गुप्ता, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता। हमारे ये श्रोता हैं लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता और पंखुड़ी गुप्ता। दतरेंगी से मनोज कुमार साहू, सूरज कुमार साहू, सागर कुमार साहू। गांव नथना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसबीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बीबी गाव्या और बीबी सुच्चा पाठक। ये हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। घंटाघर चौक खंडवा से तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, बेबी शानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनिता श्रीवास। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतक बिरक और मीका बिरक। चंडीगढ़ मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। आप हैं कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज। ताजपुर मोरवा से भाईकारी, रायकारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। ढोली सकरा से हमारे ये श्रोता हैं जयंत कुमार बैरागी, उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैज नबीर शेख, शाकिर शेख, इस्लाम अबी शेख, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सानिया, शकील पठान, बिस्लमी लाबीर शेख, गदर शेख। आप सब हैं हिप्पर सोगा तालुका लातूर से। ये हैं यहीं से चांदनी अयूब सैयद, राजे अमन सैयद। हमारे ये श्रोता हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफसल मल्लिक और अमोल मानकर। चंद्रप्रकाश, चिराग सेन, संतोषी, नेहा सेन, भगवानी और गजेंद्र सेन। आप हैं भुरसुदा छत्तीसगढ़ से। मंतुराम यादव, चित्रेखा यादव, साहिल, शिवम, केशव, माधव, राकेश, पोषण, रितेश, नेत्राम, संतुराम यादव। ये हैं डोंडी लोहारा संबलपुर से गौतम उर्वशा, डामिन लक्की, अर्जुंदा बालो छत्तीसगढ़ से दिनेश यादव, साधना यादव। मंचुआ से अयांश रावटे, रिंकू रावटे। आप हैं कांकेर मर्दापोटी चारामा से नरसिंह थापा और वीर सिंह थापा। कुल्हारीकोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप, मोहनेश कश्यप और अनुराग कश्यप। हमारे ये श्रोता हैं नैनदास, शीला दीवान, ओम प्रकाश, रुक्मणी, प्रीति दीवान, सिद्धांत, शौर्य और सानवी। आप सब हैं कटघोरा फुलसर कोरबा छत्तीसगढ़ से। हतकेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव। बावली से कमलेश साहू, हरेंद्र साहू, सुशील बेलसपुरिया। ये हैं वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं ये गीत।

दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू, ग्राम नागरकोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के हमारे ये श्रोता हैं छग्गर राम साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम साहू, पूजा देवी साहू, लल्ला दुष्यंत साहू, प्रांजल और समीक्षा साहू। आप हैं बनबघेरा राजनांदगांव से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, कुमारी अंजलि सारवा, मुजब गहन बालू से चिंताराम साहू, उर्वशी साहू। ये हैं देवशंकर तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, अजय, तुषार, डॉली, बेबी और पूजा तामुरिया डोंडी लोहारा बालोद से। आप हैं ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। सत्येंद्र मंडावी, सरिता मंडावी, उमेश नाग, कृष्ण नेताम, रंजित मंडावी, आप सब हैं फरस गांव से। अंतागढ़ के हमारे ये श्रोता हैं सुभद्रा हुपेड़ी, स्वाति हुपेड़ी और चंद्रकला आचला। ये हैं फरसगांव जिला कोंडागांव के श्रोता फागेश्वर मंडावी, करिश्मा मंडावी, संजीत मरकाम, वीरेंद्र नेताम और विशाल नेताम। आप हैं ग्राम मोहपाल जिला कोंडागांव से मनीषा नेताम, मंगल साय नेताम, मनोज संध्या नेताम और मनोहर नेताम। ग्राम गारावंडी केशकाल से गणेश्वरी मरकाम, हुकुम मरकाम, जीवन मरकाम, संजय मरकाम और रुद्र मरकाम। सिंगारपुरी फरसगांव से हैं किशोर कुर्राम, सोन सिंह कुर्राम, इल्मा कुर्राम और राजेश्वरी मरकाम। ये हैं ग्राम कुएनार नैमेड़ जिला बीजापुर से मनीषा मंडावी, देविका मंडावी, करिश्मा मंडावी, पूजा सिंड्रा और सरोज कश्यप। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित

से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन, बागबहरा भद्रसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन और खुशबू सेन, ऊपरकोट बुलंद शहर से ये हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अबान अब्बासी, यवतमाल विदर्भ से संतोष खडसे और विनोद खडसे, गोरबा बिलाईगढ़ से देवलाल कर्ष, कामनी कर्ष और यश कर्ष, हमारे यश होता है गुमला झारखंड से एस एम जावेद, शगुप्ता अंजुम, जेल रोड रायगढ़ से भाई नरेंद्र कुमार तिवारी, ये हैं झारखंड से एस एम जावेद, मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, निधीश सुरोशे, परिधि सुरोशे और मायरा सुरेशे, आप सब हैं वासिम महाराष्ट्र से, गोलबाजार बक्सर से श्रद्धा नंदारी, अभय नंदारी, परमानंदारी, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, ये हैं लक्ष्मण सिंह कुराम, भावना, दीपक और डुग्गू कुराम, बड़े डोंगर कॉलोनी से, गर्रापार बांधा बाजार से गंगाराम साहू, सुलोचना साहू, मानवेंद्र साहू और राकेश साहू, भंडार सिंह जिला कोंडागांव से सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता, मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट, आप हैं पिपरिया जिला कबीरधाम से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू कुनिका मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा, सिंधरी बाड़मेर राजस्थान से कृष्ण कुमार डाबी, भूपत डाबी, राधा डाबी और विक्रमार्चना डाबी, बरकट बकाल से हमारे ये श्रोता है नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे, अकोला महाराष्ट्र से सदानंद मंदुरकर, सुशीला मंदुरकर, पारोंड विश्रामपुरी से शिवकुमारी मानिकपुरी, प्यारीदास मानिकपुरी, खिलेश मानिकपुरी और नमिता मानिकपुरी, ये हैं भाई मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा और गौरव शर्मा, सीमा शर्मा, भिलाई छत्तीसगढ़ से, सब्जी मंडी बुलढाणा से आप हैं शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन और मुज्जू बाबा, बिलासपुर से चंदूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, रज्जन साहू, सुशीला देवांगन और शशिकला शायर, गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से हमारे ये श्रोता है राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, सचिन शर्मा, प्रियंका शर्मा, रोहित शर्मा, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, ग्राम कोलासर तालुका नांदुरा से प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक बगाड़े और संकेत बगाड़े, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी ओम, मुंगेली से आप हैं उत्तरा दिवाकर, नितिन दिवाकर, वंशिका दिवाकर, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल और वान्या सिंगरौल, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जैतक बिरक और मिका बिरक, ग्राम बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति, दुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू, आप हैं पाहरा अहिवारा जिला दुर्ग पोषण बंछोर से चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर, ये हैं अलीकार डबवाली से बसंत सिंह, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी, लोरमी गोलबाजार खपरीकला से संतोष सोनी, खिलेश, सुनीता, पीहू, दीक्षा, नेहल, संजय, बबलू, पूजा और रामा, आप हैं मेघापारा लोरमी से मनोज कुमार साहू, धनंजय कृष्णा और गायत्री साहू, फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी, छज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया, रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे यशोता है मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसन रजा, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद असफाक और मोहम्मद अल्ताफ, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू, ये हैं सुनीता सोनवणे, खुशी सोनवणे, प्रियान सोनवणे, आशीष सोनवणे, पूनम सोनवणे, कृष्णा सोनवणे और शुभम सोनवणे, आप सब हैं कुंदानगर खरगोन मध्य प्रदेश के श्रोता, आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं सुरेश वाटकर का गाया ये नगमा, बोल संतोष आनंद के हैं, तर्स बने हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म का नाम है प्रेम रोग।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। खानदान ये है फिल्म का नाम। आवाज़े हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं रवि। और इस गीत की फरमाइश की है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, नैतिक मुकुल, दिव्यांश धैर्य और आराध्या, उत्तर बस्तर कांकेर भानुप्रतापुर से।

हिल्स रोड जलगांव से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले। भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से सुरेश कुमार केवट, शिशुपाल केवट, खुशी खुशबू, पायल केवट। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंदरजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जीएस रामगढ़िया। आप हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहुजा। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के हमारे ये श्रोता हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू साजदारानी और हिना कौसर। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी। अंबागढ़ चौकी राजनांद, आप हैं वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावेश, सन्नी हेतल, कृष्णा और जैमिन भावसार। राजकोट एयरपोर्ट कॉलोनी से जगदीश जोशी, मंजुला जोशी, हितेश, हिमा, रिद्धि, सिद्धि और पर्वत जोशी। पाकुड़ झारखंड से हमारे ये श्रोता हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीशु, ताशु और अरुण आनंद, सत्यमानंद। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बीबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। डबरापारा जिला धमतरी से कोमल सेन, तोषण कुमार सेन, पिंकी सेन और रीना सेन। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता जोशी और वैदेही जोशी। आप हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। सालार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, निजामुद्दीन और कैसरुद्दीन। आर्यनगर कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से हमारे ये श्रोता है अजय सिंह जंघेल, मुरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार और आयुषी नंदनी जंघेल। धमदीग्राम सुखरीकला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, अंशिका और अंजलि। कासम कॉलोनी सनावा से यूनुष खत्री, सफी खत्री, अर्देश खत्री, नूर मीणा, काशिफ मीणा। भानबेड़ा मंगवाल से आप हैं भारत राम पटोडी। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, नेहा मरावी। गांव चैंसला फलोदी राजस्थान से राजा राम जंवर विष्णुई, महिपाल, कानाराम चौहान। ये हैं भोकरी तालुका रावेर से अर्षद तड़वी, आरिश अरलसान और यूनिश तड़वी। ग्राम मोहत से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी और मनोहर ठाकुर। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। गांव सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा, प्रीति, दीपाली और देबेन। ये हैं वी पूनम नायडू, साजन के और मास्टर शिवानशु ऋषु धनुरा बस्तर से। वी चैतन्या, दुर्गेश कुमार, अक्षय कुमार, अभिषेक नायडू यहीं से। अगनपुर धर्मपुरा बस्तर से डी वनिता नायडू, डी कृष्णा नायडू, डी ईश्वर राव नायडू, डी रोजा मास्टर शिविक और डी सोमशेखर राव नायडू। देवपेट वाशिम से राजेश खंबायतकर, प्रेमा खंबायतकर, राजश्री भावसार, राजू भावसार और राजेश्वर। ये हैं गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमस खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। आप सब हैं वैष्णव कॉलोनी सनावत से। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। यहीं से जितेंद्र और धर्मेंद्र मालाकार। नांदेड़ महाराष्ट्र, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, नलेश्वर नगर नरवेल से विशाल नानकर। दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा यदु और लक्षिणा यदु। विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मैंक मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मुणत। आप सब हैं बोरखेड़ा पितरमल जिला उज्जैन से। दरियापुर बाभली महाराष्ट्र, गजाननेली नवदीप येले, श्री वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। आप हैं ताज

मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर रही और मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, डोंबिवली मुंबई से भावना यादव, अधीश यादव, स्मित गोरे और श्रेयांश गोरे, आदर्श नगर मलोड पंजाब से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरव शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन और सत्येंद्र जैन, तिरुपति नगर लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन, सुभाषवाड़ भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमीन यादव, गिरीश कर्ण यादव और ढावेस यादव, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत और शुभम सौरभ रावत। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं ये गीत।

अंश चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट, श्रीरामपुर भोकर से हरिभाऊ बिडवे, श्रवण और अनिता बिडवे। आप हैं माया कुमार, सुधीर नूतन, इन्होंने बहुत ही अस्पष्ट अक्षर में हमें लिख भेजा है ये पत्र, कृपया साफ साफ अक्षरों में हमें लिखा करें। विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता चौहान और अनिकेत चौहान, आप है वारणा साहापुर के श्रोता। डॉक्टर सूरज सुर्वे और नमिता प्रकाश सुर्वे यहीं से हैं। श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र के श्रोता हैं। रामचंद धोंडीबा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिकू इंगोले, रमाबाई सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभि, मंजूषा गौतम इंगोले, नामदेवराव शिंदे पाटिल और मास्टर विशाल शिंदे पाटिल, सुनील जबड़े, आप सब हैं हिंगोली महाराष्ट्र के श्रोता। अशोकनगर वसमत हिंगोली महाराष्ट्र से दीपालु राजू ठोके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित सोनू और मोनू ठोके। झुमरी तलैया से हमारे श्रोता हैं छकुले इंगोले, देवोंगले, छोटू दादा इंगोले। गणेशपेट पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत और सुवर्णा शिंदे, ये हैं डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश भूतेकर। जलगांव सोमनाथ जिला जालना से हैं कार्तिक भूतेकर, अश्विनी भूतेकर, ये हैं वैष्णवी जगदाले, हर्षुल सावंगी। औरंगाबाद से वैभव गौरव लोखंडे, मेघराज युवराज, रिधोरा देवी और रुद्र कोलकर। लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया, आप हैं इंदौर से। मामड़पाल दरभा से गणपत बघेल, मनीष बघेल और अनंत बघेल। बंगला मटिया बालो से शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्रंबिका, लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे। हमारे ये श्रोता हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश सहजवानी, हनी जिम्मी, अमिता दियाना और जियांश मटाई। मालेगांव से दत्ता घायल, सुनीताबाई घायल, सानिका घायल और गजानन घायल। मध्य प्रदेश इंदौर से वंदना मराठा, देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे। आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया जमशेदपुर से। हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर बेरडी से। आप हैं सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन, आशीष देवांगन, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन, कटियापारा, जूना, बिलासपुर के श्रोता। चांटी डी से गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी देवांगन, महेश्वरी देवांगन और मिल्की देवांगन, आप हैं बेबी मीनाक्षी और निधि देवांगन। सरेवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर। ये हैं डबवाली हरियाणा से सुनीता बोकालिया, संजय, अनिल, मीनू और जेके बोकालिया। महामायापारा ग्राम दरचूरा से फिरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। हमारे ये श्रोता हैं दरचूरा से ही ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। लेवी छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। जाफराबाद कालेगांव से आप हैं सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमारी संचित वायाल। मोताला से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख। रिसोड से आप हैं कुमारी सानवी देशमुख और सर्वद देशमुख। मोटका माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना कनिका और आदित्य मानस पटेल। सीतानगर दुर्ग से शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर। ये हैं प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, गौतम नगर जिला नांदेड़ से। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में हसीना मान जाएगी। फिल्म का ये नखमा अख्तर रूमानी का कलाम है और मौसीकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से। कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं, गीत रचना जावेद अख्तर की है और आर डी बर्मन का संगीत है। और इस गीत के लिए हमें अनुरोध किया है साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर। आप हैं रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। गीदम रोड जगदलपुर से टी राजू राव, सुनील राव, शिवानी राव, कृष्ण तुलसी राव, भाग्य लक्ष्मी राव, आनंद राव, मनीषा राव, श्रवण कुमार राव, नानू राव, साक्षी राव और राधिका राव। आप हैं मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय। दिल्ली से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। आप हैं नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति क्षीरसागर और संजय कुमार चौहान। हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सन्नी और कोमल यादव। आप हैं उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुलाल, शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक और सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। शिवाजीनगर वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंदिराबाई खोबरखेड़े और छकुली ताई खोबरखोड़े। खांडवी बुलढाणा से दीपाली राम धाड़े, स्वराज राम धाड़े और थिलोरी अमरावती से सुनैना पवन भोंडे। तीन मुहा खापरखेड़ा जिला रायसेन मध्य प्रदेश से तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू, आरती, ममता गोमती और रागिनी साहू। ये हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। भुरसोदा से भगवानी संतोषी सेन, चंद्रप्रकाश, नेहा सेन और चिराग सेन। हमारे ये श्रोता हैं महेश हजारे, मिताशु हजारे, आदित्य हजारे और कामज यूनु से। महाराष्ट्र के श्रोता हैं प्रमोद हजारे। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ठोमने, वैष्णवी ठोमने, चंचल ठोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सव्वासेरे। खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे और गायत्री धंजे। मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, अनिता मोटवानी, राजेश, मुकेश मोटवानी। नागपुर से अशोक कुमार, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश, कमल, शेतलाल, शेतपाल, भूमिका और सुशीला। ये हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुस्तबा खान, अफिया खान। अकरम हुसैन, प्रिंस बेगम, इशरत अकरम, रूबीना वसीम, बाबू आरिज वसीम, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू। आप सब हैं महसौल सीतामढ़ी बिहार के श्रोता। यहीं से हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, शाहिन नाज, नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख। जरूर जरूर महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाडुदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी, कानेरे, कार्तिक और युवराज। दंतेवाड़ा बचेली से बलराम सेन, इंदु सेन, पुष्पराज सेन, रितिका सेन और भूतेश्वर सेन। आप हैं रंभाजी नगर केडगांव से भाऊ साहेब नखथर, जयकुमार चंदन, अक्षय चंदन, रुचिता चंदन। बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल और प्रियांश वर्मा। आप हैं प्रमिलागंज जालोड़ जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। धरसीमा से छेदुलाल यादव, सीता यादव, अरुणा, अर्चना, अनुराधा और अल्पना यादव। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर वसंत भृगु, विनय ठाकुर। सोनाडीह से सुब्रत चौधरी और बेबी अनिशा। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं ये गीत।

0: to 76,561, while the Nifty dropped 228 points to 23,940 when reports last came in. In the broader market, on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index slipped 0.2%, while small-cap 100 index was trading 0.1% up a short while ago. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes successful five-day historic visit to France and Slovakia. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. President Draupadi Murmu says India on track to eliminate sickle cell disease well before 2047 target. Delhi High Court upholds centre's temporary curbs on Telegram ahead of NEET UG 2026 re-examination. India calls Indus Waters Treaty outdated at UN Human Rights Council, also slams Pakistan for sponsoring terrorism. And Mexico becomes first team to qualify for FIFA World Cup round of 32, defeating South Korea 1-0. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की पांच दिन की सफल यात्रा संपन्न श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया जिसमें भारत फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को

0: हाल के में न लें क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय

0: वो कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
1: इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। एसटीपीआई पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
3: Our position on Indus Water Treaty is well known.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता
1: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल

0: को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR में भी सुन रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
3: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
3: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
2: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
3: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
2: जी,
3: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
3: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
2: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
3: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
2: बिल्कुल।
3: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है, इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ

0: कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहां पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं, डल का मतलब ही झील होता है, इसीलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहाँ ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800440559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलीवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है।
2: मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की।
1: एक बार इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे, बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। आज का हमारा, जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने
1: और विलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
1: थोड़ा सा फंबल था,
2: कि कोई चीज
1: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए।

मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं न जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव

उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलीपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं। पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां

सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सबके बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े,

0: तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ओह, ये सपना था। पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम

एनसीईआरटी। अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। संध्या 5 बजे दूसरी सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 396.8 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे है सांध्यकालीन सभा के आरंभ में। लीजिए सुनिए इस सभा में और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए इस सभा के कार्यक्रमों का विवरण। आज शाम 5:10 पर रोजगार मेला 2026 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। शाम 5:05 पर गोडी बोली में होगा समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार। गेलबड़ी देवी और साथियों के स्वर में हलवी लोकगीत सुना जा सकेगा शाम 6:35 पर। बस्तर के स्वर सुनिएगा शाम 7 बजे और ग्रामीण कार्यक्रम आमचो गांव सुनिएगा शाम 7:21 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम घलर में रात 8 बजे आप सुन सकते हैं दैवती नाग और साथियों के गाय हल्बी गीत पीलामन काजे कोट। हल्बी बोली में ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 8 बजे। हल्बी बोली में कार्यक्रम नज्जर सुनिएगा रात 9:15 पर। इसके अंतर्गत होगी श्री मंधर रामनाग से बलबीर सिंह कच्छ की ली गई भेंटवार्ता। हल्बी खेल पत्रिका का प्रसारण होगा रात 9:30। इसमें आप सुनेंगे विजय कश्यप से ली गई भेंटवार्ता, भेंट करता होंगे बलबीर सिंह गज। और रात 10 बजे सुनिएगा हल्बी जगार गीत, गायक कलाकार होंगे सुंदरलाल और साथी। ये थी इस सभा के कार्यक्रमों की जानकारी। लीजिए अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल रात 9:30 चित्र भारती हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। सुबह 8:30 डॉक्टर की सलाह और सुबह 9:00 बातों बातों में, ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। हमारी प्रातःकालीन सभा में सुबह 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन सुनिएगा सुबह 6:20 पर। आलेख और स्वर होगा शिव सागर त्रिपाठी का। श्री रामचरितमानस का गायन सुनिएगा सुबह 6:25 पर। स्वर होगा श्रीकांत पारगांवकर का और संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। बेड़ा खाड़ा चगोट का प्रसारण करेंगे सुबह 6:35 पर और पुनः दिन में 1:05 पर। हुलहुली में सुबह 6:40 पर आप सुनेंगे भीमा देवपाड़, वादक कलाकार होंगे भारत और साथी। सुबह 7:05 पर नमस्कार जगदलपुर के अंतर्गत होंगे आकर्षण होंगे रूपक बस्तर की धरोहर, लेखक और प्रस्तुतकर्ता होंगे रजत सेन गुप्ता और होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। सुबह 9:15 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। सुबह 9:30 होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, इसमें हम लेकर आएंगे रंग फिल्म के नगमे आजीचो सगा। ये कार्यक्रम होगा सुबह 10:00, इसमें आप सुनेंगे श्री राजेंद्र राव से भरत कुमार गंगादित्य की ली गई भेंटवार्ता। सुबह 10:30 कार्यक्रम गुरुदुम में सुनिएगा छत्तीसगढ़ी लोकगीत, गायक कलाकार होंगे नवीन मरकाम और साथी। एक ही कलाकार होगा सुबह 11:00 जो केंद्रित होगा चरित्र अभिनेत्री सुषमा सेठ पर। गैर फिल्मी गीतों गजल का प्रोग्राम गुलदस्ता पेश करेंगे सुबह 11:30। दोपहर 12:00 सुनिएगा सुकालू राम पांडे और साथियों के गाय हल्बी जगार गीत। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन हम लेकर आएंगे दिन में 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारे मेहमान, इसमें अतिथि होंगे जिला पंचायत अधिकारी श्री प्रतीक जैन, इनसे भेंट करेंगी डॉक्टर मधु जैन। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। हमारी सांध्यकालीन सभा में कल शाम 5:05 पर देशभक्ति गीत आप सुनेंगे और शाम 5:10 पर कार्यक्रम होगा युववाणी। शाम 6:35 पर रामू बिसाई का हल्बी भजन प्रसारित करेंगे। शाम 7:00 होगा कार्यक्रम बस्तर के स्वर और प्रायोजित कार्यक्रम किसान बाड़ी सुनिएगा शाम 7:30। जोनी उजर लोक गीतों के इस कार्यक्रम में रात 8:00 सुनिएगा हल्बी लोकगीत, गायक कलाकार होंगे कार्तिक राम बघेल और साथी। पीलामन काजे गोट सुनिएगा रात 8:30 प्रस्तुति होगी तनुश्री मोहंती की। आमचो रान आमचो जीवना ये कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर, इसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता, रूपचंद नाग से बातचीत करेंगे बलबीर सिंह गज। और रात 10:00 होगा लोकवाद्य धुनों का कार्यक्रम पाड़, इसमें सुनिएगा माता पाड़ और रणा कासन पाड़, वादक कलाकार होंगे धर्मू और साथी। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी जगदलपुर है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए गोंडी बोली में सुनिए समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार।
1: केंजनोड़ी समसामयिक माटाकिन संगार कार्यक्रम तसंगे नन्ना अबलेश कुमार केंजनोड़ी नेटद कार्यक्रम केंद्र सरकार ताकेट अत्ता 12 वर्षाते स्वास्थ्य सेवा किन पेड़सिकितले कोशिश बुता किन केंद्रित मिंदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न दकरकते केंद्र सरकार अत्ता 12 वर्ष लोपते देशेम तग्गा स्वास्थ्य सेवा किन नकाय पेड़सिकियन बुता कित तोड़ू बेहतर स्वास्थ्य नलता स्वास्थ्य व्यवस्था किन आर्थिक विकास और मानव संसाधन सशक्तिकरण किन आधार माने मास और सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र ते नकाय नला भूता की अमता राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और

0: सतत विकास लक्ष्य किन हिसाब ते स्वास्थ्य सेवा किन नक नला कियल है गुणवत्ता बना कियल है ध्यान तदमिंदे इदे बुताते आयुष्मान आरोग्य मंदिर किन माध्यम ते प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा किन नक पड़ सिकित तोड़ इंजे देश में तगा लाखों मुल्त लोकिन दगेरेन स्वास्थ्य सुविधा दुर्कमता स्वास्थ्य सेवा किन दुर्स कियल है मूड स्तर ते स्वास्थ्य प्रणाली विकसित की तदमिंदे इदेनगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज किन तमाक जोड़ा की तोड़ अगान ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा ता माध्यम ते जुई मंदान क्षेत्र नगा नागरिक लोर किन विशेषज्ञ डॉक्टरीर संगे परामर्श दुर्कमता सुगर बीमारी बीपी और कैंसर लकटा बीमार किन नियमित जांचा कीस प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तक हिस्सा बना कि तदमिंदे संगेन फिट इंडिया आंदोलन योग और जन जागरूकता अभियान ता संगे स्वस्थ जीवन शैली किन बढ़ावा इम तोर स्वास्थ्य क्षेत्र तो गुणवत्ता इल राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक किन लागू कि तदमिंदे नक्काय संख्याते स्वास्थ्य संस्थान किन गुणवत्ता तत् प्रमाणन प्रदान की तदवेंड मिंदे अदेनगा मरीज लोर किन नल सुविधा यले स्वास्थ्य सेवा दुर्कमता सरकार कोविड-19 महामारी ते दुर्कता अनुभव हिसाब ते सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा किन मजबूत की तदमिंदे आपात स्थिति ते निपटे मायले प्रयोगशाला नेटवर्क किन अनुसंधान क्षमता किन फिरसिकियले विशेष बल यम तोर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हिसाब ते पात्र कुटुंब तोर किंग वर्षामेंट ते ओन दाम एइंग लाख रुपये तक स्वास्थ्य सुरक्षा एवी किया नदवेन आयमता इदेन संगेन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ता माध्यम ते स्वास्थ्य सेवा किन डिजिटलीकरण कियनत बुता न कह पड़ समता और करोड़ों नागरिक लोर किन डिजिटल स्वास्थ्य पहचान बना कि तदवेंड मिंदे विशेषज्ञ लोर माने मत आयम तोर की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा किन पेड़सी कियनत डिजिटल तकनीक ता उपयोग स्वास्थ्य बीमा कवरेज और सामुदायिक भागीदारी ता माध्यम ते भारत उन दुर्स मजबूत समावेशी भविष्य तलय तैयार स्वास्थ्य प्रणाली ता अर्थे नक्काय मुन्ने पेड़साम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर की अत्तद भारा वर्षा ते देशेम तक स्वास्थ्य सेवा किन नल्ला कियान लय नरगे बढ़िया डाका तेह तौर सोशल मीडिया ता दोन पोस्ट तक और के तौर की आयुष्मान भारत वाटते कम ते कम गरीब लोर किन जरूरत मंद लोर किन इलाज सुविधा दौर कमता अगान जन औषधि केंद्र तक सस्ता दवाई वेंड दौर कमता प्रधानमंत्री के तौर की स्टेंट और इद बोटमेंड तक प्रत्यारोपण तक कीमत कम मतंक मरीज लोर किन लाभामायम ता संगेन मेडिकल कॉलेज और सीट न संख्या पेड़ सिकितंग डॉक्टर बने मायनत मौका वेंड पेड़सामता और के तौर की सरकार स्वस्थ भारत का निर्माण किया लाए इंजे न कह बूता किया मता और बूता की सोरेन मंता अगान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के तकी सोबे तोरत स्वास्थ्य ता जिम्मेदारी सामुदायिक मंच किन दुर्ष किया नाद मिंदे इद सोच समझे मास मना कित्ता दोन विकेंद्रीकरण ढांचा मिंदे इद योजना कृत हिसाब ते निगरानी और जवाबदेही स्थानीय मूलत कैदे सौंपा कित्तद मिंदे अद के तकी वास्तविक स्वास्थ्य सुरक्षा ता अर्थ मिंदे नेंट तक खतरा तोन संगे संगे वायन नार तक खतरा तलेवेंट तैयार किया ना मिंदे
1: अभी आप सुन रहे थे गोंडी बोली में समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार ये आकाशवाणी जगदलपुर है 5:10 होने को है अब अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं
2: योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो आइए विज्ञान भवन चले
3: नमस्कार विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
4: या द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड ऑलरेडी इज इन विज्ञान भवन एंड इज इन अ सेपरेट हॉल वेयर इज हैविंग अ टॉक अ डिस्कशन विद द बेनिफिशियरीज हु आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड टुडे फ्रॉम दिस this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here in, say, in a short while, he'll be entering the plenary hall, wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses. And of course, they are flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they are numbering about, about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs. And it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
3: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
4: एंड वी गॉट अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रीति व्हेन वी गॉट अ जॉब, नाउ यू सी एवरीथिंग इज डिजिटल, सो इंडिया इज आल्सो गॉन अहेड विद द वर्ल्ड बिकॉज़ एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड नाउ। एंड today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters, and that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs, and the total budget is for this is about 99,446 crores.
3: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
4: या दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस, व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार। व्हाट अ एनकरेजमेंट टू द पीपल हु आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस। एंड देन द transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all, that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through for getting the number. And 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
3: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डाले तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है, और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में. और हाँ बोलो इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं. पहले ही हो

0: ओके, और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है. तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हो. और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना. और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे. ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
1: पीपल विल फील सिक्योर. ओके, द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प अस आउट, सो वी शुड नॉट फील दैट ओके आई एम नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग, बट let the, this prime minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? Rozgar ya karobar, साथ है भारत सरकार.
0: जी. और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे. और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, आसानी से सब पहुंच सके. और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है. जी.
1: Yeah, and you know, this program operates under a dual incentive structure, split into two distinctive parts. The first part is support for the first-time employees, jinko pehli baar naukri mili
0: hai.
1: This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage, capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer, DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
0: बिल्कुल, सभी को फायदा है. बिल्कुल फायदा है. और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं. और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी. और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
1: See, and then one more thing. See, the Ministry of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal. That is a National Career Service India to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
0: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा, बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा। कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुंच गए हैं। तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं, और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का। इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। चार श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान, और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति। विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
1: And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this one, the one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025, it started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. But in manufacturing sectors, heavy industries, where it is extendable up to a period of 4 years. Benefits applicable up to a period of 4 years.
0: 4 saal.
1: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members. And then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
0: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं, और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये,
1: एटमॉस्फेयर इज रियली फैंटास्टिक, इज रियली इलेक्ट्रिक, यू नो, बिकॉज़ सी एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स द एंट्रेंस to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
0: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है। और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो।
1: यस, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द यूथ, यू नो, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पिलर्स, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू होल्ड दिस नेशन, सो ही इज पुटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन देम, एंड ही सीज दैट ऑल आर एम्प्लॉयड, ऑल गेट एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ देम आर लेफ्ट विदाउट अ जॉब, बिकॉज यू नो हाउ मच फ्रस्ट्रेशन इट लीड्स टू व्हेन अ पर्सन डजंट हैव अ जॉब, सो दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन दिस एंड इज ब्रिंगिंग आउट दीज स्कीम्स, एंड देन I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
0: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं ना? लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ। ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ है।
1: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now, and already 15 lakh people have already got their employment letter, their job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
0: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे। योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि 2 किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सैलरी 1,00,000 रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है। और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, और 20,000 से 1,00,000 तक है तो सैलरी तो

0: jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, they take in a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
1: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा ये बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
0: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights and he has achieved it almost. He's taken India to great heights and right now and of course internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
1: चार श्रम संहिताएं लागू मजदूरी संहिता 2019 सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता 2020 29 श्रम कानूनों का एकीकरण सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम पारदर्शी कुशल और डिजिटल प्रणाली और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी
0: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन यू नो द मनी विल गो टू 15 लाख पीपल इनटू देयर अकाउंट्स एंड दे विल बी गेटिंग द लेटर्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस प्रीति इनफैक्ट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस यू नो जस्ट एट द प्रेस ऑफ अ बटन 15 लाख people, beneficiaries, get the employment letter. India has also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, almost 700 people are seated over here, right up to the top.
1: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है
0: इट्स फुल नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी पीपल आर दे ऑल सी दे आर ऑल जॉब सीकर्स एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल दे विल बी गेटिंग द जॉब्स दे आर ऑल कीपिंग द फोन्स रेडी ऑन द टेबल सो एज सून एज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसेस द बटन इट विल कम टू द फोन दैट दे हैव गॉट द लेटर
1: An amount will be transferred.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो नहीं yeah. आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है ये कह सकते हैं
0: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees, while larger firms, 50 or more baseline workers, must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employees, For employers, companies must visit the official

0: Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और उनके साथ उनको स्कॉर्ट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे
0: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके ही इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन दिस जॉब टू मी सो एंड आई एम टेलिंग इट्स रियली गोइंग टू चेंज द लाइव्स ऑफ दीस पीपल ऑल दीस बेनिफिशियरीज हु आर सिटिंग ओवर हियर इन द प्लेनरी हॉल ऑफ विज्ञान भवन एंड दे विल बी ड्रीमिंग यू नो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू कम अप And I think they are all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be... There'll be a filming of the... Short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button. The magic button.
1: magic button.
0: yeah, that is the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means... He wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top. And his dreams, you know, of making India a strong economic power. And he's on the way, he's on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी होता है अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।
0: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he will be flanked by the Union Minister, and on the left, by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the board. On the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
1: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए.
0: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through, and because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, they are financially independent, and very soon our Prime Minister will be coming in, and people are getting ready, all are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
1: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है, जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा. और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वन टू वन बात करना, ये एक प्राउड मोमेंट होता है, नहीं?
0: That's true. And you know, I attended one of these days, you know, when the Prime Minister spoke to the students all over the country. Through the live telecast, you know, and you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry, if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job, you've got something, you've got a future. Every person has a plan, a talent. God has given a talent in you, and He will see that it you come up in your life. So he said that if low marks will not, it's not an end to anything. So you know, here, that's how he encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with of hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
1: आपने जिक्र किया बच्चों का, तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा.
0: yes,
1: तालकटोरा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे. और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनकी एक किताब आती है जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में. और बच्चों को लगता था परीक्षा आ रही, इसे देना तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं, है ना. तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उसे जुड़ जाते हैं. और आज भी युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं, तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ से.
0: Yes, and one more thing, you know, when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, you know, and even the children, they feel so comfortable, the young people also feel comfortable, for not only young, you know, old people, whomsoever he talks with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable. So even, during this Independence Day celebrations, you know, he goes among the children, goes and in mingles with them, and what a beautiful atmosphere, you know. So all these things, he has got all these qualities, you know, to mingle with people and he listens to your problems. That is the greatest thing with our Prime Minister. He listens to your problems and he tries to solve them.
1: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है.
0: yes.
1: फिर तो राह रुकेगी नहीं, आप जहाँ जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी.
0: yeah. है ना. And see, who expected that 3.5 crore people are going to get jobs in India? Right? The implementation has already started. 15 lakh have already got it. Today it will be confirmed for them through the press of that button by the Prime Minister. And then over the year, means over a period of time, 3.5 crore people in India will be employed. They'll be having the job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And Ministry of Labour, you know, they have always, the Labour and Employment, they have always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they have generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meager amount, some get very meager amount, some get a good job, but it helps them. At least they don't starve. They get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
1: जब हम परीक्षा देखकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रू तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी. और जब आपकी नौकरियां बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया. नहीं
0: yes.
1: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूंगी, रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार.
0: So in fact the person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here, and there's one person he's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and is saying, and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know. And it's really very interesting, you know. And just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it will be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा.
0: Yes.
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी. बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है, ज्यादा नहीं. और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा. और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो. नहीं,
0: yeah, I think everything has stopped. They are all in attention, and I think the Prime Minister is arriving with the other dignitaries. He'll be taking his seat on the dais, and once he comes in, the program will begin. He'll be felicitated with a bouquet by one of the beneficiaries. That will be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived, he has entered, and is entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
3: एक बार
2: जोरदार तालियां हो जाए. देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए.
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का.
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें.
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
3: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का सादर स्वागत एवं अभिनंदन.
0: The Prime Minister has arrived. He's taken his seat on the dais.
3: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
0: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
1: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया.
2: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री सिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें. एक बार जोरदार तालियां.
1: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने.
2: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है, और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है. यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है.
3: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
0: And now the welcome
2: remarks. जोरदार तालियां हो जाएं।
0: श्री मनसुख मांडविया, the minister for

0: Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
1: Pradhan Mantri, Viksit Bharat Rozgar Yojana ke antargat Prosahan Rashi Vitran karne ke avsar par hamare beech mein upasthit adarniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, meri sahyogi mantri adarniya Shobha Karandlaje ji, video conference se vibhinn rajyon se jude adarniya rajyapal mahoday, adarniya mukhyamantri mahoday, kendriya mantrigan, rajya ke shram mantrigan aur sabhi labharthi bhaiyo aur behno, adarniya pradhan mantri ji, aapke netritv mein desh badal raha hai, desh aage bad raha hai aur naya bharat ka nirman ho raha hai. नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है. और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था, और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था. लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है. आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी. उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा. पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी. दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा. वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है. देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है. महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है. फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है. जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज को वर्ष में 1 बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है. 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए. सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का यह नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है. माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था. लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है. केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आजादी के पहले बनी है और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है. ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे, और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है। और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया, और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करे तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
2: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
0: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
4: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
6: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
7: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
0: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana, and that was a short film. And now, very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously, and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters, and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button, and you can see the people cheering.
8: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
3: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15,00,000 लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
0: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
3: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
2: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
3: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
2: डाइस पर
5: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग

अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर, और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है, और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है, और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है, और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता था ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को
बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है। और इस योजना से वो द्वार भी खुला है और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना। और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है। और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि इतना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है।
हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक, अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में

ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है, लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप, और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है, और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच
सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है। हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं। और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को

0: और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी, शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और विकसित भारत 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है, और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कहा

0: आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रयू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
1: अभी रोजगार मेला 2026 का आंखों देखा हाल हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी जगदलपुर है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए गेलबड़ी और साथियों के स्वर में ये हल्बी लोकगीत।
5: बांसी बजाए से दखनी बांसी बजा...

0: आप सुन रहे थे गेलबनी देवी और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। ये आकाशवाणी जगदलपुर है।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। ₹1,000 से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।

0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 हो रही को है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: TLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है।

0: मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान से सुशासन का लाभ हर परिवार तक पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ाई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया। रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की और मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के भीतर मानसून के प्रवेश की संभावना जताई। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि नियद निल्लानार योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 23 जिलों में 31 योजनाओं का संतृप्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग, विभागों के समन्वय और जवाबदेह व्यवस्था से लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परिवार तक शासन की योजनाएं पहुंचने से ही विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत सामाजिक सुरक्षा, आवास और रोजगार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, कौशल विकास तथा बुनियादी नागरिक सेवाओं को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान का क्रियान्वयन 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में ग्रामवार आधारभूत सर्वेक्षण और डेटा मानचित्रण किया जाएगा। पीडीएस डेटाबेस और विभागीय आंकड़ों के आधार पर संभावित परिवारों की पहचान कर योजनावार बेसलाइन तैयार की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में ग्राम, क्लस्टर और विकासखंड स्तर पर विशेष संतृप्तिकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा तथा आवश्यक दस्तावेजों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तीसरे और अंतिम चरण में सतत निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से योजनाओं की प्रगति का आकलन किया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को भी लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अवधि 15 दिन बढ़ा दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत लिया गया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रदेश के किसानों से बढ़ी हुई अवधि का लाभ उठाने और निकटतम सहकारी समिति में जाकर अपनी उपज बेचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे किसान बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकेंगे और उन्हें फसल का मूल्य मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योजनाओं के प्रचार प्रसार और पंजीयन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने मुंगेली में वरिष्ठ नागरिकों से सौजन्य भेंट की। इस दौरान श्री साहू ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी दी तथा उनसे संवाद किया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी पंजीकरण और जन कल्याण शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारी पहुंचकर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। राज्य सरकार ने संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री अग्रवाल को नियुक्ति पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ और जागरूक समाज निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि श्री अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता को नई गति मिलेगी। इस बीच नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित उनके निवास में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान योग के संवर्धन तथा प्रदेश में योग संबंधी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 7827980287 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर ले। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन 20 और 21 जून को किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 10 ट्रेनों में 40 अतिरिक्त सामान्य कोच भी लगाए जाएंगे। इधर नीट UG के परीक्षा परिणाम और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। यह सुविधा मनोरोग विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। विद्यार्थी 18 जून से 2 जुलाई तक मोबाइल नंबर 9425502353 पर तनाव, चिंता, काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेषज्ञों से परामर्श ले सकेंगे। महाराष्ट्र के विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित उनके निवास में मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था, किसानों के हित में संचालित योजनाओं, कृषि क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रित रहेगा। इसके तहत रायपुर के योग प्रशिक्षक अमित तिवारी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 20 जून को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध रेत परिवहन करते हुए 10 हाईवा को जब्त किया है। उधर बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी के नेतृत्व में खनिज विभाग और पुलिस की टीम ने मिंगाचल नदी में बीती देर रात छापा मारकर रेत उत्खनन कर रहे JCB, पोकलैंड मशीन और 4 वाहनों को पकड़ा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी विदर्भ से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। उधर रायगढ़ जिले के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र के चिरई पानी में कल रात दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बीती शाम आए तेज आंधी तूफान और बारिश के दौरान 2 उद्योगों के बीच बनी एक दीवार अचानक गिर गई, जिससे पास ही झोपड़ी बनाकर रह रहे कुछ मजदूर उसकी चपेट में आ गए। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए 22 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 3 जुलाई तक चलेगी। चयनित बच्चों को राज्य के निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से हज यात्रा के लिए सऊदी अरब गए 122 हज यात्रियों का पहला जत्था नागपुर पहुंच गया है। नई दिल्ली में स्थित छत्तीसगढ़ के ट्राइबल यूथ हॉस्टल के 13 अभ्यर्थियों ने UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। और बालोद पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 स्कॉर्पियो, 1 टैंकर, मोबाइल फोन, खाली गैलन और 40,000 रूपये नकद बरामद किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान से सुशासन का लाभ हर परिवार तक पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ाई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया। रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों के भीतर मानसून के प्रदेश में पहुंचने की संभावना जताई। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: न सनसनी न सनसनी न सनसनी न उत्तेजना न उत्तेजना न शोर दिन रात न शोर दिन रात न शोर न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम मिटकी राम राम.
1: हा राम राम बोनकु राम राम
0: अमरली स्ने
1: हा अमरले काय
0: आले तुझे मन रगर रक्त संगा आम्ही एवे दोन तो भेटघाट होलो ने
1: हा
0: दादा दीदी मग भेट करू पुरे से
1: हा.
0: तो एची संगे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुनतो सब पाए गांव करी दादा दीदी सियान सजन और संग जोरिया संगवारी मन के मैं बोनकु
1: और मैं मिटकी
0: हमी दोनों करू से
1: राम राम. तो बोनकु
0: भाई
1: सियान सजन मन के तो हम भेट घाट होलो जुआर कर लू ने मानतर पिला मन के कसन भूल को खोवाए. तो रेडियो कटा कटा बसलो रेडियो सुनतो सब पाए नानी नानी पिला मन के बल हमी दोनों चो बाटले खूब्बे खूब्बे मैं और चुमा बल्ले ने जसन की बोंड को हमी रोज दिना आमचे दादा दीदी मन का जे समिया होले अमरु आउने. तो जसन की आजी बले आमी समिया होले अमरलु से. तो जसन की हमी रोजे जे ज्ञान ध्यान चो गोट के धरु नमरु आउने तो असने आजी लगे आमचे मुंडरा ने बल कई गोट मने आसे आले फेरे के बले मुर करू
0: मुर करू. तो हाउ मिटकी आमी जो रोजे आए नहीं अब ध्यान ध्यान जो गोट मन धरुन अमरों से ने हाउ. तो दादा दीदी मैं बोले बसत भी आज मिटकी और बोन को तो दोनों अमरला से काई नाम का नगर धर अमरला से बोलतो ने हाँ. बोले ने आम चो जो गांव करी दादा दीदी मन चो काम धाम बोले तो खेती कमानी आए
1: हाउ सत्य आए
0: हाउ खेती कमानी संगे उमन खूबे ढन काम बुता मन बोले कर सोत
1: हाउ जसन की काय बल तोड़ो से खेती बाड़ी तो कर सोत मात्र काय की रान बन बला से ने गांव गांव बाटे
0: हाउ.
1: और इन रान बन ने बल हम के कएक कमानी चो आत्मन बल मिरे से ने
0: हाउ. बल्ले ने रान ने आम चो जोन गांव करी दादा दीदी मन चो खूबे जो जिनिस मने नहीं रान ले मिरे से
1: हाँ.
0: बल्ले ने जसन आम महु बोलू से ने
1: हाउ.
0: उन महु बल्ले एक समया ने सीजन ने मिरे से
1: हाउ.
0: और उन समया सीजन ने उन महु के बिनुन बाती बिकुन बाती आप लो आमदनी धरसोत. और आमचो जो मऊ बोलूस नहीं आमचो जो समाज ने आए आमचो गांव करी दादा दीदी मन जो रीति रिवाज आए उनता बोले नगद काम ऐसे ने
1: हाँ. और असने जैसे मऊ होली ने असने हाँ. आया तेंदुपत्ता
0: तेंदुपत्ता
1: हाँ. एबल कुट का समय हिसाब में एबल हो ऐसे ने
0: हाँ.
1: और एक एबल का है कि आमचो दादा दीदी मन रुडाए सोत और रुडाउन भाते बिकुन भाते खाए सोत ने
0: हाँ.
1: उन चोले बोले मन के खाए से खूब फायदा हो ऐसे
0: हाँ. और ये जो तेंदुपत्ता बोल सोत नहीं मिटकी ये जो आमचो छत्तीसगढ़ शासन बाटले नहीं एक अच्छा दाम ले खरीदे सोत जो नाम चो दादा दीदी लगले. और तू सुन ली सी ये जो तेंदु पता के नहीं आम चो बस्तर ने हरा सोना बोले बलुआत
1: हाँ. ये तो आय ची माता राउर गुड़क तेतर बल बल तो बीती हो ऐसे ने
0: हाँ. बोले ने आम चो तेतर बल ने तो अब समझ कसन मूल ले आम चो टोन ने एकदम टिरका लागे से ने
1: हाँ. सत्य आज जसन की तेतर बल ले के काय हो ऐसे एक टूटन भाती बीके सोद बल है ने
0: हाँ.
1: और बीके सोद बल और संगे संगे जसन की हम चे साग डारने बल ले हमी लगाऊं से बले
0: हाँ. मिटकी बोले जो तेतर है नहीं आम चो जो गांव करी दादा दीदी मन चो साग सब्जी होली जितलो बल बनान खास होत नहीं उन साग सब्जी ने तेतर लगा लेने जो तेतर चो का तो तेतर चो जो स्वाद ने है नहीं जो साग सब्जी चो जो जहर टाइप चो बोल रहे नहीं उनके गुचान दे से
1: हाँ.
0: और संगे संगे जो गांव का दादा दीदी मनात नहीं
1: हाँ?
0: उन तेतर के अच्छा काज कर उन सुखन बाती संगा रह साल भर उन तेतर के आप लोग साग पान ने चटनी असन होली आचार असन होली असन बनान बोले मन संगा सोत
1: हाँ?
0: और संगे संगे तेतर के समय अनुसार उमन बिकसोत बोले जो तेतर ले उमन का अच्छा नगद आमदनी मिरे से
1: हाँ. तो बोंड को
0: हाँ.
1: तो ए तो रेली ज्ञान ध्यान चो गोट मन ने
0: हाँ.
1: असने आमचे मुंडा ने नंगत गोट मन बले आसे
0: हाँ.
1: आले एक गोट के बल आमचे दादा दीदी मन लगे अमराव.
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता.
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस.
4: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस उपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे. एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स उपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेंतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे. एचई संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल हो दे. बिजली ले चलतो बीती गाड़ी उपरे 5% कर लागे दे ए मन ने काही बदलाव निहोली से बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी और तीन चक्का बीती गाड़ी उपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वेंट सरल बना की तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता HS कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सी तोड़ इत बुताते इव सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयनात उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पर्रो मुन्नीटा लेकेन 8% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो

0: इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मुंड चक्काना गाड़ी एइं प्रतिशत जीएसटी मौला तेने दोर किता अदेन के और सोबेर कम टैक्स ता गाड़ी बने मास मंता
1: हाँ मिटकी
2: हाँ
1: एक काय सुंदर गोट आम चो ये जहाला रली ने
2: हाँ
1: और असन नगद गोट होली आम चो जहाला होली असन गोट मन के सुनन बाती आम के नगद लगवे और दादा दीदी में बोल सुनन बाती मन बोले नगद लागे से ने
2: हाँ तो
1: मैं बोलते रहे मिटकी
2: हाँ
1: ये नगद गोट मन तो होली ने
2: हाँ
1: तो आम चो लगड़ो कहानी आसे और एक कहानी के सांग सोच सुनील कुमार निसार
2: आले फिर ये कहानी के बले सुनो ने
1: हाँ दादा दीदी मुझे सुनाओ
2: आले फिर सुनो कहानी के
3: मोर कहानी नाव है गोटक बुआ धनपुर नावर गोटक गांव ने सुंदर गज नावर गोटक सौकार रहते रहला एतार लगे बीड़ा खाड़ा गाय बुइल छेली मेंढी सोना चांदी कोमिया धोमिया खल खली जाते रहला और ये खूबे सद्धर्मी रहला एक तीन टा धांगड़ा बेटा मन धनी बनी आवरी मनी रेत आवरी इकर आयार नाव गुरबारी रहे धनी सोबुले बगे रहे धनी गुरबारी पेटर पीला नो आए एके एतार पीला बेरा कोले धरी रेलाए मांतर सुंदर गज धनी के अपनार पोयला बेटा का मानबार आवरी ताके तार मन कर बाटा घेनी देवार एक समय असन आयला जेबे धनपुरर सोबू बड़े बड़े लोक धंधा पानी करबा काचे सतसपुर शहर जाय के मुराई लाए ई दका दकी गोटोक दिने धनी तार बुआ लगे जाई के लिए बोलला बुआ मोके मोर अतक धन बाटा दी देसना मुई सतसपुर जाई करी धंधा करुआई धनी रे गोट के सुनी करी सुंदरगज हाका बाका री गला आवरी बोलला बेटा तू ये बे शुरुआचिस ना ये धंधा पानी आवरी मोजपुरर ए रीति विधि के ना जानिस बोले होता तोरले धूर हामी रह के ना सकू बेटा तोरले धूर हामी रह के ना सकू ये सुनी धनी रिसा हुई जबाक दी बोलला मोर बाटा देवा साल देसना दिल देश नोल नाई मुई तो जाऊच चाई ये सोबू बोली ये एवले बोले ना जानते रहला कि हाय इतार भेटर पीला इतार खून इतार लोह नो है गुरबारी ए गोट सुनी आपनार मुनुष के बोलसी आचे बाटा ना देस तुई ताकि हामी तार सत के सांगी दू मात्र सुंदर गज बोलला नाही केबे नाही मुई जीव रहते रहते ए होय के ना सके एतार पाचे सुंदर गज धनीर भागर सोबू जोमक बिकी करी हातार बाटार रुपिया पैसा के मोंडरा ने बांधी धनी के दी देला दूसर दिन धनी बेर ना उत्ते उत्ते मार बनायला लाड़ू आवर मौस भात आवरी मोटर के रुपया धरी सहरे उठी गला एतार गलार पाचे सुंदर गज अपना के बाकरा ने ढापी करी खूबे बिलकी बिलकी कानला आवरी कतक दिन तक अरन के बोले छाड़ी देला हाय बाटे धनी सतसपुर सर जसन खेटला हाय तार संगी मन के भेटला एतार मोड़ा रुपया के दकी करी दूसर पीला मन बोले एतार मीत मोहित हो ये सोबू गांव ले आनला पैसा के उड़ाई करी ठाटा हो जाए रलाए सरे रहते रहते सरर पोवन धीरे धीरे धनीर भीतरे ओल के मुरायला धनी के एतार मीत मोहित पुसाय पोकायला धनी एबोर नशा पानी बोले घर के मुरायला नाट पाट आवरी एस ने पैसा के बुआते गला एतार संगी मोन बोले तार रुपया के जुरी पकायला आया बुआ आवरी भाई बंद घर द्वार सोबू सुरता के धनी भूल किया का गला अंति खर्चा करते करते गोटोक दिने तार सोबू रुपया पैसा सरी गला असन समय बोले आयला गोटोक दिने हाथार पिंदला फाटी टूटी आवरी हाथार पिंदला मुदी के बोले बिकला एतार सरला पाचे ये सरे पेटर अरन काचे भीख बोले मांगला जोन घरे ये रहते रेला हाय घर ले बोले एक निकराय देलाय पाचे काय कर सीता गोटक अंधार राती लाज पोड़ी करी सर के छावी भालू पोदर गोटक गांव ने उठी आयला कतक दिन होई गला एतार पेटे अरन नाई भूख ले तार ओंट की बोले सुकी जाय सियाचे मांगी खाया होई बुलते बुलते गोटक दिने एक गांव सोकार ताके तार घर धोरे ही काम देला आवरी बोलला तुई हाईटा खाई बीस जो ने गाय बुइल मन खाए गोटक दिने जेबे धनी गाय बुल चराई के झारी नीड़ेला तेबे गोटक पोकना ने बसिए सोचला मोर बुआ घरे तो कतक कोमिया मुनाचोत ती के भेट पेट भरते भात मिलसी आवरी एता ने मुई बोरिया आसन खाइबी आची नाई नाई मुई घरे जीबी आवरी बुआ के बोलबी बुआ मोके ओबर बेटा नाई कोमिया आसन सोगाना मोके कोमिया आसन सोगा ए बोली हाय घरे लेवटला हिंडते हिंडते कतक दिनर पाचे गांव खिनिक धूर ने रेला तिकर तेतर टोटा ने खेटला एके दगी के टोटा ए खेलवा पीला टोकी मन बोया बोया बोली पढ़ाए के मुराई लाए बोलले हाय तार सीना आसन बाल आवरी फाटला टूटला फाटीले बिल्कुल बोया उल्टी जाए लेला ये सुनी करी गांवल खूबे लोग कौन आई बोली के टोटाए के लाए आवरी डांग मारिए के भागाईबार उहाट कर लाए तेबे एतार पाचे सुंदर गज आयला आवरी अपनार बेटा के लगे जाई दखला आवरी चिताएला आवरी बेटा बोली लटपटाए देला आवरी बोलसी आचे बेटा ए काय होई गला ना ए काय थोमना बुनाई लिया सना बेटा तू आजी बोले मोर हाइच बेटा आस तेबे धनी बोलला बुआ तोर असन कोनी बुआ ना होत ना बुआ मुई मोर सोबू धन के बुआली ना बुआ बुआ तोर मुई बेटा ओबर ना रेली ना मुई तोर घर कोनी रेटे कोनाए लुकी करी असन रेबी ना ए पस्ताप के सुनी सुंदर गज झोरो झोरो बोएवा आंसू संगे बोलला बेटा असन ना बोल तू मोर भागास एतार पाचे धनी के घर सोबू लोक तार आंसू पूछी पोकायलाए आवरी नुआ फाटी टूटी पिंदाएलाए सुंदर गजर गोटोक बुआर आपनार बेटा काचे असन मया के दकी करी गांवर सोबू लोक हाका बाका रही गलाए
1: मिटकी
2: हाँ बंडकु
1: एक काय सुंदर कहानी रली ने
2: हाँ
1: असन कहानी सुनन बादी तो और तू के काय कसन लागे से
2: एक काय सुंदर कहानी रहने असने का है कि ज्ञान ध्यान से गोर संगे कहानी कुहना बर रोले अच्छा लगवा ने
1: हाँ।
2: और एक कहानी के सांगते रला सुनील कुमार निसार तो बोंड को मैं बलते रले ये ज्ञान ध्यान से गोट कहानी तो होली ने
1: हाँ।
2: मांतर गोट गीत बल सुन ले फिर अच्छा होती
1: हाँ। तो बेर नहीं करू ये गीत के सुनो पद गीत कुरिया मंच नाव के सांगो हाँ।
2: आले फिर सुनू फिर ये गीत के

0: हाँ तो बोन को
1: हाउ
0: काय रशिया गीत के हमी सुनते रहो एबे ने
1: हाउ
0: एमे गीत कुरिया मन के चीतालीस कसान
1: चीताले का है ये काय सुंदर गीत के गात रहो मोरिस सिंह और उमंचो संगवारी मन।
0: हाँ तो बोन को ये ज्ञान ध्यान च गोट कहनी गीत गोविंद तो हमी हम चो दादा दीदी मन लगा मरालू ने
1: हाउ
0: तो असने हम चो जातो समिया बले होए से
1: हाउ मिटके
0: आले मैं मुंडरा गड्ढा के सकलें दे फिर तू विदा धर।
1: हाउ तो एची संगे बस्तर के शोर कार्यक्रम सुनतोर सब पाए गांव कारी दादा दीदी सियान सजन और संग जोर या संगवारी मन के मैं बोनकू
0: और मैं मिटकी
1: हम दोनों करूं से राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए ग्रामीण कार्यक्रम आम चुगाओं।

0: हाँ जुहार बोंडकू जुहार।
1: हाँ जुहार मिटकी जुहार।
0: अमरलिस ने
1: हाओ
0: तो ए ची संगे संगे आमचो गांव कार्यक्रम सुनतो सपाय गांवकारी दादा दीदी सियान सजन और संग जोहरिया संगवारी मन के मैं मिटकी
1: मैं बोंडकू
0: आमी दोनों करूं से
1: जुहार।
0: जुहार।
1: तो मिटकी
0: हाँ
1: तो रेडी कटा बसला भी नानी नानी पीला मन ने
0: हाँ
1: और जो नानी बड़े हो जोन पीला मन बोले आप जोन रेडियो सुन सो उन के आम चो दोनों बाट ले खूबे खूबे मया और चुमा।
0: हाओ सत्य बल्ली से मन के फिर कसन बुल को खुआए ता ने
1: हाँ
0: तो बोंड को
1: होए
0: ती जसन की एबे जक्सिस एक आए हो से पानी बरसा खिंडिक खिंडिक मारे से ने
1: हाँ
0: बरसा बल्ली अमरली।
1: अमर लिमिट की
0: हाँ
1: और
0: आउरे हम चो दादा दीदी मन का है कि बे आप लोग बेड़ा खाड़ा चो कमानी बल शुरू कर ला से ने।
1: हाँ बोले समय बोले ये होली ये समय ने हम चो जो गांव करी दादा दीदी मनात धान बुनाई होली बेड़ा खड़ा के जतना तोर होली और धान पल्हा पका तोर होली इस समय ने कर सोत ने।
0: हाँ ये समय आने तो कर सोची ने मातर काय हो से कि ये समय आने आम चो खातो काजी बल्ले सागदार नया नया निकरे से ने
1: हाँ
0: जसन की ये बकाया कि पानी मार ली से जे खिंडिक खिंडिक काय तो ले फिर बोड़ा ने
1: हाँ हाँ
0: बोड़ा बल्ले फिर बास्ता बल हो से
1: बास्ताबल हो ऐसे
0: ने कि एक आया बल्ले हम चो जो बस्तर हो से ए चो काया कि एकदम जांत सागमन हो से ने एक साल भर काया कि एवन का ठाकुर रसत।
1: हाँ बोले ने जोन बस बरसात शुरू होले ने जोन एक असन फल लाए आया सब्जी आए जोन आम के मिरे से ने जंगल
0: हाँ
1: पहाड़ जोन धान ले बोले बोले ने जखन दादा दीदी मन काम बुता कर सोत तो मन के खातो और पीतो काजे बोले आम के साग सब्जी लागे से ने।
0: हाँ
1: और ये साग सब्जी आम के जंगल होली पहाड़ होली नदी नाला कहाँ कहाँ ले आम के मिरे से ने।
0: हाँ एबे दक बाजार ने दख लेने हाट बाजार ने दख ले का बोड़ा मन नया नया
1: बोड़ा
0: निकरे से ने
1: हाँ
0: उन मन के दख ले बोड़ा मन के दख ले का लालच लागुन जाए से ने के
1: लाले
0: बे
1: से
0: खाऊं दे महा लागे से।
1: बोले ने बोड़ा असन सब्जी आए कि हम नहीं गेनुक भावले बोले उनचो लालच नहीं गेनुक लागे से ने।
0: हाँ और काय हो छे के साग मन के बल काय रांध ले ने घर चो नानी ले धरुन बड़े लोग बल मन कर सोता और अच्छा नगद खा सोत ने।
1: हाँ बोल लेन मीट की जो ने जो बड़ा बोल सित नहीं इस स्वाद बोल तो एक बार खाद लेने घन घन खाऊ भाई से।
0: हाँ सत्य बल्ली जसन की हम चो बस्तर ने कहा है कि असन असन बहुत खूबे सारा साग भाजी मना से जन बाहरे नी मिरे ने
1: नहीं मेरे
0: ए तुझु चाहे कहा है कि हम चो चीये जन बस्तर है ये था इच्छी मिरुआ ने
1: हाँ
0: जसन की आमड़ बल सोच जने
1: हाँ
0: ए फिर कहाँ चो दूसर लोग बाहर चो लोग रांधुक जान सोता हम चो ये था इच्छी इच्छी लोग तो कहा सुंदर रान सोत ने।
1: हाँ और दक्षित आमर संगे संगे पेज जोन
0: हाँ
1: मड़िया पेज हो जी जोंदरा पेज होली ने चाउर
0: हाँ
1: चो पेज होली ए आमर संगे होन जाले ने मिटकी काय सुंदर लागुन जाए से ने।
0: हाँ
1: और ए जोन आमचो जोन गांव करी जोन दादा दीदी मनात इस चीज मन संगे संगे उमन चो जोन खान पान बोले ने चाउर होए से रोटी होए से ने। और
0: हाँ
1: संगे संगे तो दक्षिण हाड़ बाजार ने बोले चाउर चो उमन मस्त पिसुन बाती बोबो बनाए सो दाल के पिसुन बोबो बनाए सो बेसन ले भजिया बन बनाए सो
0: हाँ
1: और चाउर के और का तो के कुन शक्कर के मिलान बाती टिकुर बल बल सोत हुन बल बनाए
0: हाँ
1: सोत ने
0: टिकुर बल होए से ये गुड़ ले होले ये गुड़ बबो मन ने
1: गुड़ बबो होए
0: मानता
1: से।
0: जसन की हामी तो एथा ही चाहूं ने
1: हाँ
0: हाम के बीती मन तो भाई से मातर जसन की कहाई ले लोग बाहर ले बुलुक बलाय सोतने हुन मन बले के का रसिया मन कर सोतने।
1: हाँ मिटकी बोले ने ए चीज मन जो आम जो बस्तर ले मिले से बाकी जगह मन ने नी मिले से।
0: और ये कहा है कि स्वाद काजी बल अच्छा है और हम जो देह पाए काजी बल खूबे नंगत
1: खूबे
0: आए ने
1: नंगत आए
0: असन नहीं कि तुचा स्वाद काजे नले दख्तो काजे हम जो
1: हाँ
0: देह पाए काजी बल खूबे लाभ आए ये बीती मन ने।
1: हाँ और ये चीज मन बोले ने आम चो जोन गांव करी दादा दीदी मन छोली ए मन चो खातो काज बोल होए से भोजन चो रूप ने।
0: हाँ
1: और ए मन के बिकुन बाती दुई पैसा आप लो आमदनी बल धर सोत
0: हाँ
1: धोन जोन ले ए मन चो घर परिवार चो जोन खान पान होली पिला लिखा पिला झिला के पढ़ाई लिखाई काज बोले ए मन के थोड़े सहायता मिरे से
0: हाँ तो बोंड को
1: होए।
0: मैं ए दादा दीदी मन लग तो एक गोट मन के अमरालू ने
1: हाँ
0: मानतर का है कि आम चलक नंगत गोट मन बले आसे
1: हाँ
0: बल तो ने जहाला मन
1: जहाला मना से ना
0: आले एक बले आमचो दादा दीदी मन लगे अमराव।
1: अल अमराव।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल

0: और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम कीस, इंजे 18% कीस इत्ता। टैक्स तगा कमी कित्ता, आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमिद मिंदे। इलेकेन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके उनलेकटाद बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़। ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% GST लगे माता। इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
4: हाँ तो बोंड को
5: हाँ मिटके
4: हाँ तो ये जहला मन के तो आमी सुन लू ने
5: हाँ
4: तो जसन की मैं बोलते ना जसन के आज दिन हिसाब ने है शुक्रवार ने
5: हाँ
4: तो असने आमी कहीं ना कहीं आम तो दादा दीदी मन का जे धरु न मरवाऊ ने
5: हाँ
4: तो असने आज ही आम आन लू से भेंट वार्ता
5: हाँ हम लगे भेंट वार्ता से और ये जो एमन जो नाम है हेमलता करंगा जोन एक आमचो गांवकारी दादा जिन लगेलो एक लोक कलाकार जोन आमचो अच्छा नगद नगद गोट के और जोन आप लोग बोले ने कुछ अच्छा नगद गोट के आम के सांग दे अरे मन संग भेंट कर तो बलबीर सिंह कच और बेर नहीं करूँ ये भेंट वार्ता के आम बोल सुनो और दादा दीदी बोले सुनाओ
4: आले फिर सुनो ये भेंट वार्ता के
6: गुटुक फिर कलाकारिन नोनी गायिका संग गोट बात करे से तो सब ले आगे तुचो नाव और तुचो गांव और तुचो जिला चुनाव संग
7: मुझे नाव हेमलता करंगा मैं ग्राम बेनूर जिला नारायणपुर चो आए।
6: अच्छा तू हेमलता दक बल्लेने तू बल्लेने गाव तो कलाकार आस तो गोड बात तो करूँ मंत्र सबले पहल तू चो कोनी बोला अच्छा गाँव लो गीत का लेकिन सुनाऊ दे
7: मुझे अभी अभी एक ठन गाना यूट्यूब मिली से मैं हुनी गाना के गाय से
6: आले
7: करिया करिया जिनसे तुचो झुलपा हा चुंदी रे करिया करिया जिनसे तुचो झुलपा हा चुंदी रे नारायणपुर ले आनंद से काय सोनहा रंग चुमुंदी रे नारायणपुर ले आनंद से काय सोनहा।

0: होके उठा भेजला। तो मैं उठाए मैं संगीत जो पढ़ाई करने से।
1: अच्छा, बोले ने संगीत जो पढ़ाई बोले कित साल उतार रिलीज जाले खैरागढ़।
0: हाँ,
1: जो संगीत विश्वविद्यालय ने आए।
0: मैं तो उठा संगीत विश्वविद्यालय में 3 साल रहले मैं, मुझे बीए होली से।
1: अच्छा, बीए होली से।
0: हाँ,
1: तो बीए संगे गोटक तो जो ये संगीत जो विषय बोल लो।
0: हाँ।
1: अच्छा, तो ये संगीत ने बोलू वे का चीज जो पढ़ाई हुए से।
0: इथा मैं तो गायन में जाऊ रहे उठा।
1: अच्छा,
0: और असनी गायन जो साथ साथ मुझो हिंदी साहित्य संस्कृत साहित्य ये मन में पढ़ाई होली से।
1: अच्छा, हाँ, गायन बल्ले ने कहा कि शास्त्रीय संगीत ने।
0: हाँ,
1: अच्छा, तो बल्ले ने शास्त्रीय संगीत इस आपने दक 3 साल चो चो कोर्स रली बोलोगे।
0: हाँ,
1: बीए संगे।
0: हाँ,
1: अच्छा, तो ये ता तो कई राग मन बल्ले सिखाए सो तो थी।
0: हाँ,
1: अच्छा, राग मन रहे से।
0: हाँ,
1: अच्छा, तो कोनी बोले राग शो कहीं गीत की तुझ मन ने अल सुनाऊं दस।
0: हाँ, मैं राग यमन चो एक बंदिश छोटा ख्याल बलुआ थुनके गाय से।
1: अच्छा।

0: हां तो हेमलता द कितलो अच्छा काय सुंदर गावलीस में फिर तुझ पढ़ाई चो गोट गोटे में भी कि जैसन की तुम चो जोन पढ़ाई 3 साल कर ले बलसी और संगीत चो पढ़ाई का है कि लिखित संगीत संगीत तो का है कि जोन प्रैक्टिकल जैके प्रयोगात्मक बोलूं से हमें तो ये तो खूब जरूरी लागे से है
1: हाँ
0: कि नहीं
1: हाँ
0: तो बोले ने एचओ का जे तुम के कितलो टाइम उता कॉलेज ने मेरे जाले प्रैक्टिस कर तो काजे
1: प्रैक्टिस कर तो काजे तो टाइम मेरे
0: मेरे
1: हाँ
0: अच्छा बल्ले
1: हम
0: दिन ने कित घंटा करास प्रैक्टिस वगैरह
1: हाँ हुनी बिहान उठुन भाती हम जो प्रैक्टिस होए जल्दी उठुन
0: अच्छा
1: थाले फिर शाम के क्लास होन फिर शाम के जाऊन फिर हम चो रियाज होए।
0: हसन
1: हाँ
0: अच्छा तो बल्ले रियाज का है वाद्य संगे उता करा जाले
1: हम चो रियाज ना तानपुरा सा होए।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तानपुरा अच्छा तो जैसन की हेमलता बोले ने संगीत ने जोन बल राग आए उनचे गोटुक बोले समिया होए से अलग अलग समिया ने अलग अलग राग चो जोन प्रैक्टिस करते रहे से रियाज करते रहे से तो बोले ने असन बोले तुम्हें कहीं प्रैक्टिस वगैरह करा समय अनुसार
1: हाँ असन तो
0: बोले ने टाइम नहीं मिलते रहे होती ने
1: हाँ हाँ
0: द कौन कौन कौन का है कि 12 बजे बोले आए नहीं तो आधा रात के बोले आए नहीं तो बिया नहीं आए नहीं तो शाम के आए है कि नहीं
1: हाँ
0: राग हिसाब ने बोले ना अलग अलग उन समय मैंने प्रैक्टिस करता रहे से
1: हाँ
0: तो असन कहीं मौका मिल रही नहीं
1: नहीं असन तो हम ही कभी असन रियाज नहीं कर लू।
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ
1: असन बिहान बेरा अनिशान बेरा
0: अच्छा तो ये भी जैसन कि संगीत विश्वविद्यालय ले पढ़ाई छाण लोर बोले कितलो दिन होली जाले
1: मुझे तो 18 तक।
0: 18 तक रेली
1: हाँ
0: सुता
1: हाँ
0: अच्छा बोले ने
1: 16 17 18
0: हाँ मतलब भी 3 साल हो ऐसे बोलू भी
1: हाँ
0: हाँ तो बोले ने भी मतलब प्रैक्टिस कर सी इसके नहीं
1: हाँ प्रैक्टिस करे से ना।
0: अच्छा प्रैक्टिस कर
1: हाँ
0: सी
1: हुनी अलंकार
0: हाँ
1: सरगम
0: अच्छा
1: यही मन कैस प्रैक्टिस करते रहे से।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो ये भी जसन की कई कसन बोले ने संगीत सीख लेने बोले उन मन चो मन हो ऐसे कि मतलब वो खुद चो गाना बोले ने कहीं एल्बम वगैरह निकराऊं दे कहीं असन तुझे बोले होली से कहीं
1: हाँ
0: अच्छा
1: होली से ना
0: अच्छा काय
1: असन असन तो मोचो लिख लो गाना चो तो एबे तक एल्बम नहीं बना लो से। सर आए
0: हाँ
1: हुन गाना लिख लो से
0: अच्छा
1: तो हुन चो सन मैं गाना गाँव ले से।
0: अच्छा
1: हाँ हुन एल्बम निकल ली से
0: हाँ
1: और बहुत सारा एल्बम मतलब गाना रिकॉर्ड होली से लेकिन हुन रिलीज नहीं होली से
0: नहीं
1: एबे।
0: होली से
1: हाँ
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो कोनी बल एल्बम चो फेर गोटो काल गीत सुना
1: ते

0: अच्छा, ये छत्तीसगढ़ी गीता है बोले।
1: हाँ
0: हाँ, तो जब तक बोले कौन कौन बोली बोली भाषा ने तो ये गीत गावली सीस।
1: मैं तो असन मौके तो हल्बी गोंडी छत्तीसगढ़ी हिंदी
0: हाँ,
1: ये इत्रो इत्रो भाषा मौके ऐसे
0: अच्छा।
1: तो मोचो गाना रिकॉर्डिंग भी हल्बी गोंडी
0: हाँ,
1: और फिर छत्तीसगढ़ी ने होली से।
0: अच्छा। तो जैसन की बजा तो हिसाब ने बल्ले ने कहीं और बल वाद्य यंत्र बजाओ के ले जाने
1: उसन तो मैं काई बजाओ के नहीं जाने
0: नहीं जाने।
1: सिर्फ गाना ही गाते हो।
0: अच्छा, गाना ही गवास।
1: हाँ
0: हाँ, तो दक बल्ले ने 3 साल चुती पढ़ाई बल कर ली, सारे बेबल एल्बम वगैरह बल निकलाइसिस। बल्ले ने आगे तो जो भविष्य ने बल्ले काय इस संगीत जो क्षेत्र ने सोच ली सी चाले।
1: मैं तो सोचने से संगीत टीचर बनू आए असन
0: अच्छा
1: असन
0: अच्छा संगीत टीचर बल्ले बन तोर मन आसे बोले उन्हें।
1: मन आसे
0: हाँ
1: और मैं असने गाते रहे से मतलब गाते रहे से
0: हाँ
1: तो मुके एक मतलब बड़े कलाकार बोले बन तो
0: बन
1: रहे।
0: तोरा से। अच्छा
1: हाँ
0: हाँ हाँ
1: असन सोचने से मैं
0: अच्छा, तो ये चुकाज कहीं प्रयास वगैरह कर से कर।
1: हाँ प्रयास तो करें से
0: हाँ
1: ये भी असने छोटे मोटे असने टीम मन में असने जाए से
0: अच्छा
1: असने गाओ
0: हाँ
1: तो काजे
0: हाँ
1: और खुद भले गाना लिख तो जो कोशिश करें से।
0: अच्छा हाँ। तो दक हेमलता तीतलो अच्छा बोले कितले बोली भाषा चो जन गीत जसन की गोंडी बल बल्लिस। तो मैं बलतर ले की तो चो गोंडी गीत बल गोटो सुनाऊं दिले ने अच्छा रहती
1: हाँ
0: हाल।
1: ये मैं जो गोंडी गाना सुनाए से उन तो हम जो लिख लो नु आए
0: हाँ हाँ
1: बाकी बाहर जो गाना है
0: हाँ हाँ
1: तेवली
0: ठीक
1: उनके मैं गाऊन।

0: घटू दे।
1: तो हम लयता द कितलो अच्छा ती कौन बाती सुनालीसिस। जसन की शास्त्री संगीत सीखलेन बोलने ने कहा है कि बोले ने कोनी च बोले जो गाना है चाहे गोंडी हो हल्बी हो भत्री हो नहीं तो हिंदी हो तो असन सीख लो लोग का है कि ऊंचो राग के बोले मतलब अच्छा जानू हाथ तो तु का असन ही जसन की कोनी लोकगीत आसे ऊंचो कहीं असन सरगम ने नोटिसन ओगरा बोले बनाओ सकसे
0: तो मैं कभी कोशिश तो नहीं कर ले से
1: अच्छा
0: बना तो
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ।
1: जैसन की कोनी बोले कहीं हल भी गीत गाँव से
0: हाँ।
1: ले जा गीत गाँव से तो हुन कौन राग ने आसे तो असन नोटेशन वगैरह के भी कोशिश नहीं कर ली से बना तो
0: हाँ, आसन बना तो कोशिश नहीं
1: असन अच्छा हाँ हाँ तो बल्ले ने जैसन की तुझे संग गुड बात कर तो के बल्ले ने पीला बेरा ले तुम चो घर ले बोलू भी कहा कि ये जो संगीत चो शिक्षा मेरे लिए तेबे काय की तू इतलो आगे बढ़ लेस बोलू आई के नहीं तो ये चुकाजे बोले तुचो माए बाप चो बोले खूबे सहयोग रेली बे आई के नहीं
0: मुझे
1: हाँ उन मंचो मार्गदर्शन हिसाब ने तु आगे जाऊन बाती पढ़ लेस आई के नहीं तो दक हेमलता जाते जाते तुचो मन ने और को नहीं अच्छा भी थी हल भी गीत सुना देस।

0: तू हेमलता दख तू इतलो अच्छा गाउन बाती सुनालीस, हिंदी बले गोंडी बले हलबी बले, आरु तुचो जोन संगीत शिक्षा बले ने कसन मिरली, आरु संगीत शिक्षा कहाँ ग्रहण कर ली से सब गोट के सांगलीस, कितलो अच्छा लागली आमचो रेडियो सुन तू भाई बहन मन बले सुनला, जरूर तुचो सन जोन कोनी संगीत शिक्षा सीखुक जाए से पढ़ुक चाहे से तो उन मन बले असनी आगे बढ़ दे आले, खूबे खूबे जुआर।
1: अच्छा हाँ, तो बोन को
2: हाँ मिटकी, हाँ
1: ये काय सुंदर, ये आमचो लोक कलाकार रला नी, ये मन रला हेमलता करंगा।
2: करंगा बल्ले ने एमन पढ़ाई संगे संगे गीत होली संगीत होली कितलो अच्छा कर सोत ने।
1: हाँ, ये मन जसन की हुताले खैरागढ़ ले ने संगीत विश्वविद्यालय ले पढ़ुन भाती, ये मन काय सुंदर संगीत के जानला सीखला, अरे बे इच हुंचे ले मन च पहचान बल होई से ने।
2: हाँ, और आमचो जोन गांव ने जोन पीला झीला मन मलास होत ने, उमन भले असन बलने ने असन चीज मने रुचि धर सो, संगीत होली गीत गोविंद होली, तो आमचो जोन रेडियो सुन सो दादा दीदी मन उसन लोग मन के बोले आप तुम्ही थोड़े फुरे आना और उमन के थोड़े सांगा कि ये चीज कर लेने ए हुआ है, तो उमन भले असन जगह पहुंचुक सक देने।
1: हाँ, काया कि ये सब ले काया कि जान लो ने और ये सुन जोन सीखे सोत, नहीं ले आप लोग जोन रुचि धर सोत, ये मन काया कि ये मन काज बल अच्छा है, जोन हुनर बल तो बीती हो इसे ने,
2: हाँ
1: अरे चलो काय गड़ो पहचान बले मिरुआ है, और काय कि ये चलो बल हमें आगे बढ़ू लाए सकू ने।
2: हाँ बल्ले ने एमन के थोड़े बाट दकात लोग होत रहा से जो बाट दकाले ने एमन आप लोग उन मंजिल लगे पहुंच दे, और आजकल असन गीत गोविंद ने बोले संगे संगे करुण बाती आप लोग दुई पैसा आमदनी बोले कमाक शख्स होते वे समय ने।
1: हाँ
2: तो मैं बोलते रहे मिटकी ये
1: हाँ
2: नंगत गोट मन के हम दादा दीदी मन लगे अमरालू ने,
1: हाँ
2: तो मैं बोलते रहे दादा दीदी बन बोल सद बे ये नंगट गोट मन तो सांगला तो गीत गोविंद बोल सुना था बोंड कर मिट की असन बोलू मैं बोल टाकला से बे।
1: हाँ आले फिर गोटो के गीता से हम चो मुंडरा ने
2: हाँ
1: आले एके सुनो और गीत कुरिया मन के पाचे चितावा।
2: चीतावा।

0: हा मिटकी
1: हा
0: एक काय सुंदर गीत रिलीज ने
1: हाव
0: एक गीत के कोण गात होती लिस
1: हाव और एक गीत के गावते रला कार्तिक राम बघेल अरुण मंच संगवारी मा संगवारी मन माय बोंड को
0: हा
1: तो एक गीत के तो आमी सुनलो ने
0: हाव
1: असने आम चो लगे और गोटक गीत बले आसे ने
0: हाव
1: आल गोटक आउ गोटक गीत के बले सुनतु और हम चो दादा दीदी मन के बल सुना ले नंगत रहती बलते रहे मैं
0: बोले नाम से दादा दीदी मुझे दिन भर भूता बहना करुण भाती सब बेर बस के मत रड़ी कोड़ा बस लासे और मैं बोले कितली गीत बोले सुनुक भाव लेने मैं बोले सुनुक भाई से और हम बोले हम तो मोरान तो गीत आसे ने
1: हाँ
0: ये गीत के सुनाऊ पाचे गीत कुरिया मंच नाव के सांगवा
1: आले फिर सुनू ये गीत के बोले।

0: मिटकी
1: हाँ
0: हाँ एक का है सुंदर गीत रही ने
1: हाँ
0: और ये जो समय चो अनुसार एक गीत बोले बढ़िया लागली ने
1: हाँ
0: और तू चीतल इसका है
1: हाँ ये मन एक गीत के गाव तेरे ला गेल मनी देवी अरुण मन जो संगवारी मन ने
0: संगवारी मन मिटकी
1: हाँ
0: ये असन गीत मन के सुनन बाज तो मन नहीं भरे ने
1: हाँ
0: और मैं दखे तू मन रा के टमन से
1: हाँ
0: तो मैं लगे से मन रा और गीत गोविंद संगाली सिस का इनो
1: हाँ का है कि गीत सुनते रहले सुनुक ची भाई से ने
0: हाँ तो मैं बोलते रहले बेर नहीं करूँ एक गीत के सुनो और दादा दीदी मुगल सुनाऊ पांचवी गीत कुरिया मन के हमें जीतावा
1: आले फिर सुनू गोटक और गीत के।

0: हाँ तो बोन को
1: हाँ मिटके
0: काय रशिया गीत रहने
1: हाँ
0: और ये गीत के गाउरला दिलीप कुमार पांडे और मंचो
1: संगवारी मन इतलो अच्छा गीत रही ने और अमित जो रेडियो सुन सु दादा दीदी मन का जी गीत होली गोविंद होली और नंगत नंगत गोट ध्यान ध्यान चो गोट मोल धरुन अमरुन से ने
0: हाँ
1: और बल दक समय दक ले नाम चो समय वाले होय से मिटकी
0: हाँ
1: तो
0: फिर काय बलतन हो से कि समय नीले समय जाऊ बल लागे से ने
1: हाँ तो मैं बलते रहे अब समय तो होली आम जातोर तो मैं मनरा गोटक मैं सकले से तुई विदा मांग
0: हाँ तो जातो पूरे आमचो गांव कार्यक्रम सुन तो सपाय गांव कारी दादा दीदी सियान सजन और संजोरिया संगवारी मन के मैं मिटकी
1: मैं बोन को
0: आमी दोनों करूं से जुहार।

अभी ग्रामीण कार्यक्रम अब जुगाओ प्रसारित किया जा रहा था। ये आकाशवाणी जगदलपुर है, रात के 8 बजे है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम घलर। इसमें आज सुनिए दैवती नाग और साथियों के गाए हल्बी लोक गीत। इसमें सुनिए ये पहला हल्बी खेल गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: लोक गीतों के कार्यक्रम घलर भी आज आप सुन रहे हैं दैवती नाग और साथियों के गाए हल्बी खेल गीत। इन्हीं का गाया लीजिए, अब सुनिए ये अगला गीत।

నగురి నేకము వాచు భజనులనా.

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: लीजिए अब घलर कार्यक्रम के अंत में सुनिए ये हल्की खेल गीत। स्वर है दैवती नाग और साथियों का।

बोली बोलो भी काके तो कई देशों में मौके कारे ये देखा रोसो गिया दे लारो दोसो ये देखा

0: अस इत करस आखी मारी देले आस
1: सड़क सड़क
0: जाए फोट फोटी उदली पड़ी लगी टिकारे इत करस दुखिया दे लारस इत कर।

लोकगीतों के कार्यक्रम घलर में अभी आपने सुने दैवती नाग और साथियों के गाए हल्बी खेल गीत। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। रात के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बिलावल का जयकोट। प्रस्तुति है भरत कुमार गंगादित्य की।

पीला मन काजी गोल्ड, ये कार्यक्रम सुन तो जम्माय पीला मन के मचो बाटले खुबे खुबे मया आवुर लाड। पीला मन ये कार्यक्रम ने आमी तुमके रोजे दिना नंगत नंगत गोठ मन के आमचो देश चो वीर मन चो कहनी के आमचो देश चो महापुरुष मन चो कहनी मन के सांगू से हुसनी। आज मैं तुमके आमचो देश चो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चो जीवना चो गोट के सांगे दे। पीला मन APJ अब्दुल कलाम चो पूरा नाव रहे अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। हुन आमचो देश चो 11वां नंबर चो निर्वाचित राष्ट्रपति रला। हुन मन के मिसाइल मैन बले बलतोर होई से। अब्दुल कलाम खूबे जाना माना नावकारी खोजाकारी और अभियंता बल्ले इंजीनियर बल्ले रला। हुनमन आम के सिखाला से कि जीवना ने कसनी बल्ले परिस्थिति रहो, जेबे तुमी आप लो सपना के पूरा कर तो मन ने पक्की कर सास हुनके पूरा करुकचे सकास। अब्दुल कलाम चो विचार ले आजी बल्ले जुवान पीढ़ी के पाठ मीरे से। अब्दुल कलाम मोर हिसाब ने गोटो खोजाकारी रला। खोजाकारी वैज्ञानिक होन भाती हुन विज्ञान चो व्यवस्थापक हिसाब ने 40 बरख महा आमचो देश चो DRDO और इसरो थाने काम करला। DRDO बल्लो ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और इसरो बल्लो ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अब्दुल कलाम आमचो देश का जे बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी चो बारती चो काम के खूबे ध्यान दिला। यही काजे मन के मिसाइल मैन बले बलतोर होई से। APJ अब्दुल कलाम चो जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ने धनुषकोडी गांव ने रामेश्वरम तमिलनाडु ने हो रहे। हुन मध्यम वर्ग मुस्लिम परिवार ने जन्म धरु रला। ये मंचो बाबा जैनुलाब्दीन गरीब माने रला। हुन हुतरो पढ़ा लिखा बले नी रला। ये मंचो बाबा आपलो डोंगा के मछरी धरतो लोग मन के किराया ने देते रला। अब्दुल कलाम मन 5 भाई।

और 5 बहन रला। यमन चो कुटुंब परिवार खूबे बड़े रहे। अब्दुल कलाम जेबे 5 बरख चो रला तेबे हुनमन के रामेश्वरम चो पंचायत चो प्राथमिक विद्यालय ने भर्ती करतो होली। हुनचो स्कूल ने पढ़ा तो गुरुजी या दुराई सालोमन हुनके बलू रहे कि जीवना ने नंगत सफलता पाओ तो काजे मन ने खूबे साध होतोर, खूबे अगर विश्वास होतोर और संगे संगे मन चो आशा वाले होतोर खूबे जरूरी आए। मन चो साध, विश्वास और आशा ये 3 ठन सकतात, ये तीनों के समझुन भाती मन ने बसा तो राय तेबे सब पाए काम होन जाए दे। 5वीं कक्षा ने पढ़तो बेरा हुनमन चो गुरुजी हुनमन के चढ़ई मन चो उड़तो वाट के समझाते रहे। पीला मन चो नी समझतो के गुरुजी हुनमन के समुंचो रेटे नीलो और हुता उड़तो चढ़ई मन के दखाउन भाती हुनमन के नंगत हिसाब ले समझालो। यही चढ़ई मन के दखून पीला बेरा कलाम आप लोग मने विचार करला कि ए तो समयाने विमान विज्ञान चो पढ़ाई करवाए बलते। कलाम के गणित पढ़ा तो बीता गुरुजी बड़े बिहाने 4 बजे गणित पढ़ाए। यही काजे बिहाने 4 बजे कलाम के गणित पढ़ू जाऊक पढ़ते रहे। अब्दुल कलाम आप लोग पढ़ाई के सर लगा कर तो काजे मोर ने समाचार पेपर बांटतो काम बले करला। कलाम सन 1950 ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ले अंतरिक्ष विज्ञान विषय ने स्नातक चो उपाधि धरला। स्नातक होलो पाछे हुन हावरक्राफ्ट परियोजना ने काम करतो काजे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने भर्ती होला। 1962 ने हुन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इला और कएक ठान उपग्रह प्रक्षेपण परियोजना मन ने काम करला। परियोजना निर्देशक हिसाब ने हुन भारत चो पहिल स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के बनातो काम के करुण दखाला। जेके जुलाई 1982 ने रोहिणी उपग्रह हिसाब ने अंतरिक्ष ने पठातोर होली। अब्दुल कलाम अग्नि और पृथ्वी महाप्रक्षेपास्त्र मन के स्वदेशी हिसाब ले बनाला। अब्दुल कलाम के सन 1992 जुलाई महीना ले धरुन सन 1999 दिसंबर महीना तक रक्षा मंत्री चो विज्ञान सलाहकार, सुरक्षा शोध और विकास विभाग चो सचिव बनाला। हुनमन रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली के आग्नेयास्त्र बनातो काम ने उपयोग करला। हुन पोखरण ने दूसर हार परमाणु परीक्षण परमाणु ऊर्जा संगे मिसाउन करला। हुन भारत चो बाढ़ती के सन 2020 तक विज्ञान हिसाब ने खूबे काम करून खूबे पूरे अमरातोर काम के करला। हुनमन के 18 जुलाई सन 2002 के भारत देश चो राष्ट्रपति बनातोर होली। उदल दाए भारत चो प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी रला। एवं चो राष्ट्रपति चो कार्यकाल 25 जुलाई 2007 के सरली। अब्दुल कलाम नियम कानून हिसाब ने खूबे पक्का रला। हुन शाकाहारी बल्ले मांस मछली नहीं खाते रला। एवं खुदे आप लो जीवना के लिखला से हुन पुस्तक चो नाव आए विंग्स ऑफ फायर। एवं कोटुक दूसर पुस्तक बल्ले लिखला से हुन पुस्तक चो नाव आए गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ। अब्दुल कलाम तमिल भाषा ने कविता मन बले लिखते रला। अब्दुल कलाम भारत के अंतरिक्ष विज्ञान हिसाब ने खूबे भारतीय ने नेतोर वाट ने चलते रला। हुन यही सफाई नंगत गोट के आप लोग पुस्तक इंडिया 2020 ने लिखला से। कलाम कर्नाटक भक्ति संगीत रोजे दिना सुनोत। हुन मन के 40 ठान ले आगर विश्वविद्यालय और संस्थान मन ले डॉक्टरेट चो मानद उपाधि मिरू रली। हुनमन चो मान काजे हुनमन के भारत सरकार बाटले पद्मभूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न पुरस्कार ले सम्मानित करतोर होली। तो पिलामन आम के बले असन महापुरुष मन ले नगद बाटने कसन हिंडतो राय ये गोट के सीखतो राय आले सुनो अदाई ये गीत।

आमचो देशचो खोजाकारी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चो गोट के सांगले। फिर दूसरा दिन असनी नंगत गोट मन के धरुन भाती यो खोय दे आलिया दायमो के दिया बिदा जातो पूरे सुन तो सपाय पीला मन के मचो बाटले खुबे खुबे मया और लाड़।

अभी आप सुन रहे थे पीला मंच काजीकोट, प्रस्तुति थी भरत कुमार गंगादित्य की। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम

0: का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
0: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के

0: हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: This is the country. यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
3: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to cease fire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
7: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
6: The Prime Minister also said that during his recent visit to France and Slovakia, he felt the world is gradually recognizing the potential of India's youth. Mr. Modi said, the PM Viksit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry.
7: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
8: Speaking on the occasion, Union Minister for Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandaviya said that the Modi government has implemented the 4 important labour codes for the welfare and interest of the workers. Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. The project is being developed by Bharat Coal Gasification and Chemicals Limited, a joint venture of Bharat Heavy Electricals Limited and Coal India Limited. It will produce 2,000 tons per day of ammonium nitrate using indigenously developed coal gasification technology. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and a mega health camp at the subdivisional hospital in Rai Rangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. She also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining affected villages in Kusumi block, the Brahma Kumari's Matru Shakti Bhavan, a special circuit house, and the newly operational Rai Rangpur Police District. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandurkar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is a primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights including Article 21, right to life and liberty. The apex court called for a regulatory body to effectuate the fundamental right to walk on demarcated footpaths. It said such regulator will maintain institutional integrity by taking independent and objective decisions without governmental or industrial control. The declaration by the top court came in an unfortunate motor accident compensation case where a father lost his 5-year-old son while taking him to school. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has slammed Pakistan at the United Nations as it accused Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. India called Pakistan a Frankenstein state that gets shocked when its own monster bites back. The remarks were made by Anupama Singh, First Secretary at India's permanent mission to the United Nations yesterday after Pakistan and the Organization of Islamic Cooperation raised the issue of Jammu and Kashmir during the interactive dialogue on the UN High Commissioner's annual report.
9: This is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorist state policy. And yet, Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.
8: Mr. Singh said India categorically rejects the baseless and malicious allegations made by Pakistan. She said Jammu and Kashmir was, is and will always remain integral and inalienable part of India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that passport delivery has now become completely democratized as it is swift, secured and decentralized. Addressing the annual Regional Passport Officers Conference in New Delhi, Dr. Jaishankar said that the passport service is accessible to remotest corner of the nation. He said Indian passport is treated with respect and with confidence internationally.
10: As our foreign policy establishes India as a Vishwa Bandhu, the Indian passport is treated with respect and with confidence internationally. Our responsibility is to ensure that the process of obtaining this document remains a matter of right, not as a struggle.
11: Peace talks between the US and Iran were called off today after intense fighting between Israel and Hezbollah in southern Lebanon, killing 21 people. Iranian officials did not travel as planned to Switzerland, insisting that the fighting in Lebanon must stop before the talks can take place. U.S. Vice President J.D. Vance also postponed his trip. Israel and Hezbollah later agreed to a ceasefire. A senior U.S. official said negotiators for the U.S. and Qatar worked out the deal with the help from Iran. A report from our correspondent.
12: The ceasefire is being seen as an important step towards easing tensions across West Asia. The truce was secured after urgent efforts by United States, Qatar and Iran, following a sharp rise in fighting between Israel and Hezbollah that raised fear of a wider conflict. The ceasefire also supports ongoing diplomatic efforts between Washington and Tehran aimed at reducing regional tensions and ensuring smooth flow of trade through shipping routes. However, major challenges remain. Israeli forces continue to hold position in parts of southern Lebanon, while Hezbollah has insisted that Israel must fully withdraw. More talks are expected to be in the coming days if the ceasefire holds. But the situation remains fragile and any fresh confrontation could quickly undermine the latest peace efforts. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
11: Back home, India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Modi in the last 12 years. Akashvani News brings you a special feature, 12 Saal, Vishwas ke, Vikas ke, Jan Kalyan ke. Today, we focus on the steps taken by the government to transform the Northeast. A report.
13: When it comes to nation building, leaving the Northeast neglected is impossible in New India. This region was once identified only by violence, blockades and neglect. But Prime Minister Narendra Modi's government changed this. Over the past 12 years, the Prime Minister himself has visited the Northeast more than 83 times. Connectivity of remote and hilly regions with the national mainstream has increased in this period. This has resulted in increased tourism and created greater local income opportunities. Over 47,270 crore rupees have been spent under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and more than 46,290 kilometers of rural roads have been constructed. 8 new greenfield airports have been developed over the past 12 years. There were 9 such airports in 2014 and the number has now increased to 17. Under the Uran scheme, 90 routes and 12 airports and heliports have been operationalized. Over 4,170 kilometers of railway lines were electrified in the northeastern region. 100% railway electrification has been achieved in Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Tripura and Mizoram. For the first time since independence, the first freight train reached Manipur in 2022 and the first freight train reached Meghalaya in 2023. The first train reached Mizoram in 2025. Talking to Akashvani News, Principal of Itanagar's Dera Natung Government College, Dr. M.Q. Khan said that air connectivity has improved in Arunachal Pradesh.
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी.
14: Before 2014, there was no air connectivity. But now, air connectivity has been established and people are able to reach Delhi from Itanagar in 2.5 to 3 hours. Road connectivity, which was previously inadequate or limited to single lane roads, has now been upgraded to 4-lane highways.
1: अभी 4-laning हो गई है.
13: Meanwhile, a total of 6,600 crore rupees has been allocated under PM Divine scheme, accelerating the development of the Northeast. Talking to Akashvani News, a Guwahati local said that road and air connectivity have improved in the region.
2: Modi government ka ye 10 saal bahut acha se paar hua hai.
15: The 10 years of Modi government have passed very well and the condition of roads has improved significantly. Now we can travel long distances much more quickly and connectivity to villages has also improved. Therefore, we are very happy.
13: Today, under Prime Minister Narendra Modi's leadership, Ashtalakshmi, the 8 states of the Northeast, are writing a new story of development. Suparna Saikya, Akashvani News, Delhi.
11: The
16: The National Testing Agency, NTA, today said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for the upcoming Sunday. In a statement, the NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.7 lakh.

0: 9 lakh candidates. On to sports. In badminton, India's Ashmita Chaliha stormed into the women's singles semi-finals in the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game victory over South Korea's Kim Min-sun, 21-16, 21-18 in the quarterfinals. She will next face South Korea's Park Hae-yeon in the semi-finals tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to ceasefire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Hae-yeon in women's singles semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:15 होने को है। अब छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे हैं।
2: 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू करे जाही। एकर तहत सरकार के जन कल्याणकारी योजना के फायदा हरेक पात्र हितग्राही तक पहुंचाए के लक्ष्य रखे गए है। केंद्र सरकार है किसनहा मनला राहत देत रबी विपणन बछर 2026-27 बर चना मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी के बेरा 15 दिन बढ़ा दे है। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अवैया 3-4 दिन के अंदर मानसून के आय के संभावना है। अब समाचार विस्तार ले। प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू करे जाही। ए अभियान के तहत सरकार के जन कल्याणकारी योजना मन के फायदा हरेक पात्र हितग्राही तक पहुंचाए के लक्ष्य रखे गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है बताइन कि नियन निल्लारार योजना के सफलता ला आगो बढ़ात रायपुर बिलासपुर दुर्ग और सरगुजा संभाग के 23 जिला में 31 योजना मन के संतृप्तिकरण सुनिश्चित करे जाही। उमन किहिन कि तकनीक आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग विभाग के समन्वय और जवाबदेह व्यवस्था ले लोगन मन ला बेहतर सेवा उपलब्ध कराए जाही। मुख्यमंत्री है किहिन कि हरेक परिवार तक शासन की योजना पहुंचे ले ही विकसित छत्तीसगढ़ के सपना साकार होही। उमन बताइन कि ए अभियान के तहत सामाजिक सुरक्षा आवास और रोजगार खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य शिक्षा महिला सशक्तिकरण कृषि कौशल विकास और बुनियादी नागरिक सेवा ल शामिल करेगे है। मुख्यमंत्री है बताइन कि अभियान के क्रियान्वयन 3 चरण में करे जाही। पहली चरण में ग्रामवार आधारभूत सर्वेक्षण और डेटा मानचित्रण करे जाही। पीडीएस डेटाबेस और विभागीय आंकड़ा के आधार में संभावित परिवार मन के पहचान करके ए योजना पर बेसलाइन तैयार करे जाही। उन्हें दूसरिया चरण में ग्राम क्लस्टर और विकासखंड स्तर में विशेष संतृप्तिकरण शिविर रखे जाही। इस शिविर के माध्यम ले पात्र हितग्राही मल्ला योजना ले जोड़े जाही और जरूरी दस्तावेज और सेवा के उपलब्धता सुनिश्चित करे जाही। तीसरैया और आखिरी चरण में सतत निगरानी समीक्षा और मूल्यांकन के प्रक्रिया के माध्यम ले योजना मन के प्रगति के आकलन करे जाही। संग्रह जरूरत के अनुसार सुधार के कदम घलो उठाए जाही। केंद्र सरकार है किसान मनला राहत देत रबी विपणन बछर 2026-27 बर चना मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी के अवधि 15 दिन बढ़ा दे है। ये निर्णय प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत ले गए है। कृषि मंत्री रामविचार नेतामहा प्रदेश के किसान मनला बाढ़े बेरा के फायदा उठाए और पास के सहकारी समिति में जाके अपन उपज बेचे के अपील करीन है। ओमन किहिन कि एकर ले किसान बाजार के उतार चढ़ाव ले बांची और ओमनला फसल के उचित दाम मिलही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के तारकेश्वर ले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पी

0: किसान योजना के 23वां किस्त जारी करही। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ह बताइस कि देश भर में 94 करोड़ ले ज्यादा किसान मन के बैंक खाता में सीधा 18,880 करोड़ रूपया ले ज्यादा के राशि अंतरित करे जाही। एक किस्त ले 2,18,00,000 ले ज्यादा महिला किसान मन ल घलो फायदा मिलही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 बछर पूरा होए के मौका में प्रदेश भाजपा कोती ले विशेष जनसंपर्क अभियान चलाए जाथे। इही कड़ी में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू हा मुंगेली में वरिष्ठ नागरिक मन ले सौजन्य भेंट करीन। ए दौरान श्री साहू हा केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजना, विकास कार्य और आने आने उपलब्धि के जानकारी दीन और ओमन ले गोटबात करीन। उन्हें गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पेंड्रा में छायाचित्र प्रदर्शनी और पंजीकरण शिविर के आयोजन करेगी। इति रायपुर जिला के आरंग में रखे गए शिविर में कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत सिंह साहंभा केंद्र और राज्य सरकार के योजना मन के जानकारी दिन। सुनैया मल्ला बता दन के प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इधर ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऊपर केंद्रित रही। एक तहत रायपुर के योग प्रशिक्षक अमित तिवारी ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 20 जून के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहले एफएम और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार को थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA इतवार के हवैया राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG के पुनर्परीक्षा में शामिल हवैया उम्मीदवार मन पर एक दिन आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू करे है। NTA स्पष्ट करे है कि जम्मू आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उखर सत्यापित नंबर 7827980287 के माध्यम ले भेजे जाही। एजेंसी है उम्मीदवार मनला सलाह दे है कि NTA भेजे गए कोनो भी संदेश ऊपर भरोसा करे के पहली नीला सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाव के जांच कर लेवे। यही बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है नीट परीक्षा में शामिल होवैया परीक्षार्थी मन के सुविधा पर विशेष रेल सेवा के व्यवस्था करे है। रेलवे को तिले कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के संचालन के 20 और 21 जून के करे जाही। इखर अलावा हसदेव एक्सप्रेस के अस्थायी विस्तार दुर्ग तक करेगे है। यात्री मन के अतिरिक्त भीड़ देखत 10 ठीन ट्रेन में 40 अतिरिक्त सामान्य कोच घलो लगाए जाही। इति नीट UG के परीक्षा परिणाम और प्रदेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी मन में बढ़त मानसिक तनाव ल देखत बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा शुरू करे है। ये सुविधा मनोरोग विभाग डहाल ले उपलब्ध कराए गए है। विद्यार्थी 18 जून ले 2 जुलाई तक मोबाइल नंबर 9425502353 में तनाव, चिंता, काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया ले जुड़े समस्या पर विशेषज्ञ मन ले सलाह ले सकी। राज्य सरकार है संजय अग्रवाल ला छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त करे है। चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग डहा ले इस संबंध में आदेश जारी कर दे गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है श्री अग्रवाल ला नियुक्ति में बधाई दिन है। उमन कहिन कि योग स्वस्थ और जागरूक समाज निर्माण के महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री है भरोसा जताइन कि श्री अग्रवाल के अगुवाई में प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता ला नवा गति मिली। इस बीच नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल है आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले रायपुर स्थित उखर निवास में सौजन्य भेंट करी। इस दौरान योग के संवर्धन और प्रदेश में योग संबंधी गतिविधि ल और ज्यादा प्रभावी बनाए ले जुड़े विषय मन ऊपर चर्चा हुई। प्रदेश में रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण ऊपर सरलक कार्रवाई करे जाते। यही कड़ी में आज बलौदाबाजार भाटापारा जिला में राजस्व और पुलिस के संयुक्त टीम है अवैध रेत परिवहन करत 10 टीन हाईवाला जब्ती करे है। सिमगा SDM बताइन कि सिमगागरा जांच अभियान चलाए जात रही।

0: इसी दौरान गाड़ी मनला रोक के परिवहन पास संबंधी दस्तावेज मांगेगी, लेकिन 10 वाहन के चालक मन को तीले दस्तावेज नहीं दिखाएगी, जेखर बाद टीम ह पंचनामा तैयार करके आगू के कार्रवाई करिस। उती बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी के अगुवाई में खनिज विभाग और पुलिस के टीम ह मिंगाचल नदिया में पाछू देर रतिया छापा मार के रेत उत्खनन करत जेसीबी पोकलेन मशीन और 4 वाहन ला पकड़िस। अब पेश है मौसम के हाल। प्रदेश में अवैया 3-4 दिन के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून के आए के संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी विदर्भ ले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु तक एक ठिन द्रोणिका बने हुए है। एकर असर ले अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश में कुछ एक जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा होए के संभावना है। उन्हें एक दो जगह में गरज चमक के संग गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। कांग्रेस राज्य सरकार ले बिजली के दर में करेगे बढ़ोतरी ला तुरते वापस लेके और उपभोक्ता मन ला राहत दे के मांग करी से। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव मुंगेली में रखे गए पत्रकार वार्ता में आरोप लगाईं कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में सरलग 5वां घाव बिजली के दर में बढ़ोतरी करेगे है, जेखर से घरेलू व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ता मनु पर अतिरिक्त आर्थिक बोझा पढ़ी। आखिर में प्रमुख समाचार एक घो फेर। प्रदेश में सुग्घर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू करे जाही। एक तहत सरकार के जन कल्याणकारी योजना के फायदा हरेक पात्र हितग्राही तक पहुंचाए के लक्ष्य रखे गए है। केंद्र सरकार है किसनहा मनला राहत देत रबी विपणन बछर 2026-27 बर चना मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी के बेरा 15 दिन बढ़ा दे है। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अवैया 3-4 दिन के अंदर मानसून के आय की संभावना है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इन्हीं से रावत है। जय जोहार।
1: ये
2: मीडियम में 396.8 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हल्बी खेल पत्रिका, इसमें सुनिए डज बॉल खिलाड़ी विजय कश्यप से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है बलबीर सिंह गज, तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।

0: रेडियो सुन तो भाई बहन मन सपाए के सेवा जुहार जसन की अपन मन सुनसास की आमचू खेल पत्रिका कार्यक्रम ने कई कसन खिलाड़ी मन संगे आमी गोट बात करूं से कि खेल ने बलकाय की कई कसन आमचू नौजवान लेका लेकी प्रतिभावान लेका लेकी मन बल्ले ने आमचू जोन बोलुबे गांव ने आए ब्लॉक संभाग राज्य स्तर कई लोग असन देश स्तर ने बल खेल सोत और खेल तो अपन में जाना है कि बल्ले ने आमचू देह पाए के स्वस्थ मजबूत भरसक बना तो काजे खूबे जरूरी है ऐसे और जोन अच्छा खिलाड़ी मन बल्ले ने कहा है कि खेल ने जोन ध्यान दे सोत पढ़ाई संग संगे बल्ले हनमन जोन खेल प्रतिभा ने आगे हनमन कैरियर बल बनवाती आमचू बल्ले ने प्रदेश देश सुनाम कमाए सोत तो असने ची आज मैं गुटक बाबू संग गोड बात करें से सब ले आगे तुझे नाव आरु गांव छ नाव सांग।
1: हाँ मोचो नाव है विजय कश्यप, मैं बेड़ा उमर गांव छ है।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो बेड़ा उमर गांव बल्ले कौन बकाउंड की बस्तर ब्लॉक है?
1: बकाउंड ब्लॉक में हुआ है।
0: बकाउंड ब्लॉक। अच्छा विजय कश्यप ये सांग जसन की बल्ले तुचो जो खेल प्रतिभा है बल्ले काय खेलने यहाँ से?
1: मैं खेलू रहे ढास बाल खेलू रहे।
0: राजपाल
1: जी उन जिला स्तरीय छो रे आमी मतलब ये मुझो स्कूल लाई घाट लौंगा रे जोन मैं उताले पढ़ते पढ़ते उतारने ट्रेनिंग करूँ उन बाद ये बस मतलब जिला स्तरीय खेलने जाऊ रहे मैं।
0: अच्छा कहाँ कहाँ जाऊ रही?
1: मैं सबले पहले जाऊ रहे तिल्ला नेवरा रायपुर ले आ गया से उन उतरे जाऊ रहे उन जाऊ रहे मैं 2018 में।
0: अच्छा
1: ग्यारहवीं पढ़ते बेरा।
0: हाँ
1: फिर उनके बाद सेकंड जाऊ रहे हैं जांजगीर चापा में उन 12th पढ़ते बेरा जाऊ रहे हैं 12वीं पढ़ते बेरा उन मतलब 2019 ने जाऊ रहे हैं उन।
0: अच्छा हाँ हाँ तो अच्छा ये डाज बाल बल्लेन का है कि हम चो गाँव चो जो काजिया है बोलो भी एक नवा खेल हो ऐसे तो हाँ। ये चो बारे में किनिक सांगूंगा कि खेल कसन हो ऐसे?
1: ये थोड़े नया ही खेल है। ये तो मतलब ये नहीं ये खबड़ी ग्राउंड में ये जो ग्राउंड रुआ है लाइनमन खींच रुआ और पाट कुत्ती होता है नेट डालू रुआ जाल डालू रुआ।
0: अच्छा
1: उन बाल संग नहीं उनके उन पार्ट दोनों पार्ट छः छः खिलाड़ी रुआ।
0: अच्छा
1: हाँ तो उन तान ले दो टन बाल रुआ है उन दोनों बाल ने ये पार्ट मतलब मान लो डेबरी पात या बुजनी पाट हुआ थे उसन रुआ है तो दोनों पार्ट ले मान लो एक बुजनी पाट चो लोग जसन खेल सोत मान लो तो नहीं।

0: উন বাটলে দুইটান বলকে উন্মান পকাওয়া তুন
1: পকাও
0: বাটে
1: আচ্ছা
0: আর উন বল নাই উন যাউন উন বাট চলে কা মনকে মানলো প্লেয়ার খিলাড়ি মনকে উনকে লগলি বলে তো এবার চলো কে এক পয়েন্ট মেরসে সে
1: আচ্ছা
0: ফের উনি উনি আসান ফের উন বাটলে পান উসনিচ পকাওয়া মানলো উন বাট চো পকালাই বলে উন বাট চো নি লগলি বলে বল লেকা মনকে জন প্লেয়ার মনকে আর নি লাগলি বললে বল নাই উন পয়েন্ট নি মিলে উনকে
1: আচ্ছা আচ্ছা
0: উন বল লাগল নি পয়েন্ট মিল
1: পার্ট
0: গায়
1: মেরে সে
0: হ্যাঁ
1: আচ্ছা বললে নে দুনো পার্ট নে ছে ছে খিলাড়ি রয়ে সে
0: হ্যাঁ দুনো
1: আচ্ছা
0: পার্ট ছে ছে খিলাড়ি
1: দুই
0: রয়েছে
1: দুই দুইটান বাল পকা আছে
0: হ্যাঁ দুই দুইটান বল
1: আচ্ছা তো যেসন কি বাল পকালা বললেন কায় কি জোন বাট পকা আছে তুন বাট জোন খিলাড়ি মনাত বললেন এবাটুন বাট গুজ তো কোশিশ করছে সত্যি
0: হ্যাঁ বস তোর কোশিশ করতে রায় কায়
1: হ্যাঁ হ্যাঁ
0: উন দানে
1: আচ্ছা
0: উন বালকে চিয়া নি পড়তে রায়
1: আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ তো বলে নে আসন যে কে বাল লাগলি তো উনকে আসন বাহারি আউট নয়
0: নাই হুন বাল লাগলি বলে উনকে বার করসত কায় করবার হাও
1: আচ্ছা
0: অন পয়েন্ট পন মিলো উনকে বার পন করবার উন তানে যখন
1: আচ্ছা
0: কবডি খেলুয়া নাই উসনি চিউলি বলে উন বার হুয়া নাই
1: হ্যাঁ
0: উসনি উন তান পন বল চিউলি বলে উন বার হতে রায়
1: আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ তো বলে নে ছেয়ে ছি খিলাড়ি রয়ে সব
0: হ্যাঁ চাই খিলাড়ি আর পিছে বাল দর্ত কাজে দুইজন এক্সট্রা প্লেয়ার
1: এক্সট্রা প্লেয়ার রয়েছে
0: হ্যাঁ
1: আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ এসব কাজ যেসন কি গ্রাউন্ড আয় বলবে
0: হ্যাঁ
1: এসনে চারো খুট এসন
0: হ্যাঁ
1: কায়তো রয়েছে
0: হ্যাঁ চার খুট রয়েছে উতায় যেসন এ আম যেন কবডি খেলোয়া নেই সেম উসনি রয়েছে বিচ মে একটা লাইন রয়েছে আর ফের মতলব দুনো পার্ট ফের পাসিং লাইন মান রয়েছে
1: আচ্ছা
0: উন লাইন চো বারে পান টচ ওলি বললে উন ফের পয়েন্ট মিরু আগে
1: আগে যাবে হ্যাঁ
0: আগে চবি তাকে আগে টিম লোক কে
1: আচ্ছা
0: মতলব এ লাইন কে পন নাই বচুন চলতে রায় আর বল কে পনে
1: আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ তো বিজয় খিনে কেছো মতলব আর খিনে নিয়ম কে সাঙ্গুন দা কেছো কসন কসন নিয়ম আছে কসন
0: মতলব এ চো নিয়ম নাই উন বল কে ধরুন পকাতে রায় ঠিক আছে তো আর উন বস বল কে বসতে রায়
1: আচ্ছা
0: উতায় আর লাইন কে টচ নি হতে রায়
1: হ্যাঁ
0: দুনো পার্ট চো
1: হ্যাঁ হ্যাঁ
0: যেসন টচ উলু বলে উন পয়েন্ট মিলে দে উন পার্ট চো লোক কে
1: আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ বলে না বাল সঙ্গে টচ জি আয় বই কি
0: হাও
1: এ খেলতো বিতি
0: হাও টচ ইজ খেলতো
1: আচ্ছা
0: বিতে
1: এসব বাল কসন হয়েছে অলগ কিসম চো হয়েছে যে ফুটবল আসন হয়েছে কি দুসরা
0: ইয়ে চো বাল ফুটবল লে ছোটে রুয়ায় উন ভলিবল যেসন রুয়ায় উন চল পন পের ছোটে ই রুয়ায় উন
1: আচ্ছা
0: হাও উন মাত মে আচ্ছা পকড়ু কি হুয়ায় ধরু কি হুয়ায়
1: হুম
0: তো উনকে ধরুন মারত রায়
1: আচ্ছা
0: হাও
1: আচ্ছা সিধা মতলব দুই জন ধরুন বাতি বলে কাকি বল
0: কোনিক
1: মারত
0: চো
1: রায়
0: মারত রায় 1 লাখ মারত রায় ইয়াদ ফির কোনিক চো মারত রায়
1: আচ্ছা
0: উন মানলো দুনো বল আউর আউর আদমি কে লাগলি বললে পন উন বাটলে 2 পয়েন্ট মিল রায় দানে
1: আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আর মতলব দুনো বল দুই জন কে লাগলেন 2 পয়েন্ট
0: হ্যাঁ 2 পয়েন্ট মিল রায় তাই
1: আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ তো আর ইয়ে বল সাং যেসন কি এসু কাই খেল তোর কাই সময় বল নির্ধারিত রয়েছে সেন
0: হ্যাঁ এতে সময় পান রুয়ায় এতে যেসন এটা নেই 15 মিনিট চো ইয়াদ ফির 20 মিনিট চো করাত রুয়া ফের 15 মিনিট হলি বললে ফের টিম চেঞ্জ করতে রায় মতলব এক পার্ট লে দুসরা পার্ট যাতে
1: দুসরা
0: রায়
1: পার্ট যাত্রা হ্যাঁ যেসন
0: হ্যাঁ
1: কবডি তান চেঞ্জ করছে
0: চেঞ্জ কর যখন কবডি তান চেঞ্জ করবার উসনি
1: হ্যাঁ
0: আয় ফের আর দুসরা পারি মে মতলব এক বার তো 15 মিনিট চো করবার ফের উঞ্চ বাদ 5 মিনিট চো রুয়া
1: আচ্ছা
0: হ্যাঁ
1: একবার 15 একবার 5
0: হ্যাঁ
1: মানে 20 মিনিট চো খেল রয়েছে
0: হ্যাঁ
1: আচ্ছা
0: আর যখন টাই হলি বললে যখন দুনো বাট চো পারি মতলব পয়েন্ট বরাবর হলি বলে নম্বর
1: হ্যাঁ হ্যাঁ
0: তো উদল দায় ফের আউর করবাদ মানলো উদল দায় 2 মিনিট চো করবাদ ইয়াদ 3 মিনিট চো উসন করবাদ
1: আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ বলে বরাবর হলে হুঞ্চ বল খেলা তো
0: হাও
1: আসে বলে নে
0: হাও
1: হ্যাঁ হ্যাঁ বলে নে এটা স্কুল নে বলে কসন কাই শিখা তো লোক কাই আসন টি পিটি
0: এ
1: ওগরা লাগে
0: স্কুল নে আমচো একজন স্যার রে উনচো নাম রে আলী স্যার বলতে রু আমি
1: হ্যাঁ হ্যাঁ
0: হাওর একজন আউর স্যার রে উনচো নাম ভুলে গেলে মায় উন আমকে মতলব স্কুল চো কোচ স্যার রে মতলব
1: আচ্ছা
0: যখন আজকাল স্কুল মন নে স্যার মন রুয়া
1: রয়ে সর হুম
0: তো উসনি উন শিখাত রে আমকে
1: আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ তো ইয়ে ইয়ে তো জাদা বস্তর নে বলে নে জাদা স্কুল মন নে নিয়ে আসেন লাগে
0: ইয়ে বস্তর নে উতরো নি খেলো তে খেল কে
1: হ্যাঁ হ্যাঁ
0: तो उतरो मतलब ये नहीं जिला स्तरीय है तो और स्कूली तान ले खेल हुआ इनके उतरो मतलब गांव वार्ड चोले का लेके उतरो नहीं जानो थे के ये खेल के ये बाहरी मतलब बाहर खेल हुआ ज्यादातर फिर पने हम जो छत्तीसगढ़ ने नहीं एक ही खेला सोत हम जो जहन जोन वाइज बस्तर कांकेर धमतरी होली रायपुर होली सन तो हम स्कूल बाटले जाऊ रू तो उसने खेला हुआ देखे
1: अच्छा हाँ हाँ जुगे ज्यादा स्कूल मन ने प्रचार प्रसार खेल चो नहीं होली
0: हाँ जुगे नहीं होली से स्कूल मन
1: तो ये चो बोल कहीं जैसे खेल तो वेरा जैसे प्रतियोगिता वगैरह में तुम जाए सास तो कहीं अलग किस्म चो फिर तो ड्रेस वगैरह बोल रहे से
0: ये चो मतलब ड्रेस आम के जैसे जाऊ रू तो बस्तर बाटले जाऊ रू तो आम के बस्तर जोन चो ड्रेस मिलू रहे और नीचे छोटे भी तीन छड्डा देव रहो और टी शर्ट देव रहो
1: अच्छा
0: खेल तो कहे
1: अच्छा नहीं जैसन कि अपन खाए तो अपन कबड्डी नहीं तो ये क्रिकेट वगैरह ने बोले जैसन कि
0: हेलमेट
1: मांडी ने काय काय ने हेलमेट काय लगा तो भीतर
0: नहीं
1: असन बोलना उसे
0: नहीं नहीं रहे
1: नहीं रहे
0: नहीं रहे
1: अच्छा
0: आप लान मर्जी ने जो आजकल मिले से नहीं हाथ नहीं लगा तो भी तीन जो पिंदरुआत नहीं उन अपना मल ने किन लगा लगा हुआ अच्छा। और अदरवाइज बाकी लोग नहीं लगा
1: नहीं लगा
0: हाँ
1: अच्छा हाँ बोले ने जैसन की तुम चो जो टीम ने आए बोलुबे कोनी तान जैसन की बाहरी नेत्र लेने एक ही टीम तो जाए से
0: हाँ
1: एक ही टीम ना
0: हाँ
1: तो होता मतलब कितलो सदस्य बाहरी जाता रहे से
0: जसन मतलब आम चो टीम ने जसन जाते रहो बाहर है जसन
1: बस्तर हाँ। एक टीम का कितलो खिलाड़ी जाए सब
0: उनतान ले फिर मतलब छह प्लेयर हुन फिर दो एक्स्ट्रा उन बाल कजे बाल दर्द कजे और एक जन प्लेयर और एक्स्ट्रा जरूर होता है
1: अच्छा
0: मान लो कोनी के पाए वाए ने चोट वोट लगली बल्ले उन जगह दूसरा खेल तो कजे
1: अच्छा बल्ले ने छह दो आठ दो नौ
0: हाँ
1: हाँ कम से कम नौ खिलाड़ी रह पड़े से
0: हाँ
1: अच्छा हाँ तो बोले ने एक बोले सीख तो काजे बोले ने काय चीज चो नियम चो पालन करो पड़े से ना
0: एक सीख तो काजे होनी ग्राउंड और पीछे तो नेट तो लग चुरु है हुन जाल और हुन थोड़े बॉल चो पकड़ तोर धर तोर और उस मार तोर उनके जैसे उन बाट चो लोग के शूट कर तोर उन्हीं थोड़े स्पीड कर रुक पड़वाए नियम और उन्हीं लाइन मन के दकुन थोड़े छल पड़वाए कबड्डी में उसने
1: अच्छा तो जसन की तुम तो चन कोच मन रहे सो बोले भी
0: हाँ
1: ज्यादा करुण मतलब ये खेल के पूरा खेल के मान लो जीत तो हिसाब ने खेला तो काजे बोले तुम के ट्रेनिंग पूरा दे सोचे बोलना
0: हाँ
1: काय काय सिखाए सो थे ताने
0: इतना हम के उन्हीं जीत तो काजे तो उन ट्रेनिंग दे उचा फिर जसन और दूसरा टाइम थोड़े एक्सरसाइज हम ये लोग चो बॉडी काजे थोड़े फिटनेस करता और उन करवा तो फिर और सन बल्ले तो बाग दौड़ तो चलते ही रहा है उन प्लेयर मन जो
1: हाँ अच्छा और कहीं जैसे नियम वगैरह कहीं है
0: चो नियम तो होनी खेल तो नियम है बाकी तो उन ज्यादा नियम नु है
1: अच्छा हाँ नहीं ये और जैसन की देह पाए के कहीं असन क्षति असन कहीं डर जैसन कबड्डी वगैरह ने
0: नहीं नहीं उस तो नु है तो क्षति पहुंच तो नु है जो छोट वोट नहीं लगे उतरो
1: नहीं लगे
0: बस उन भाली च लगे है
1: हाँ बाकी कहीं डर नहीं है
0: बाकी कहीं डर नहीं है
1: अच्छा तो जैसन की तुम दो तीन जगह चो नाम सांगलिस खेलो जाओ रू बोलते
0: हाँ
1: तो बोले नौता खेल तो बोले तुम चुकाए पोजिशन रोली हारा जीता हिसाब ने कसन
0: हम चो फर्स्ट यू रू का दोनों ताने
1: अच्छा दोनों तान फर्स्ट इला
0: हाँ बस्तर जोन का जे दोनों तान फर्स्ट यू रू तिलदा ने और फर्स्ट यू रू जांजगीर चापा पन उता पन फर्स्ट यू रू
1: अच्छा
0: ये आमी अंडर 90 मतलब ये आमी 19 वर्ष ने खेलते रहूं
1: अच्छा हाँ
0: हाँ और उनचल पन छोटे टीम रे मैं उन 18 वर्ष लोग चो रहे 18 वर्ष मतलब 18-17 उन रहे
1: तो विजय और संग जैसन की तुम्हें राज्य जिला स्तर तो जाओ लाज भी तो ये चल फिर आगे ये चो कहीं स्कोप नहीं है आगे और खेल तो भी थी
0: नहीं ये चो इसको पास है जिला स्तर चो बाजू बाद जैसा स्टेज स्टेट मतलब राज्य स्तर चो उन पन हुआ है ये चो खेल
1: अच्छा
0: नेशनल पन हुआ है
1: तो ये बात तुम चो नंबर नहीं लगली
0: ना ये चो बाद मैं पढ़ाई बाढ़ गेले उन चो बाद
1: अच्छा
0: पढ़ाई लाइन दर
1: पढ़ाई लाइन चली
0: हाँ
1: अच्छा और ये संग संग और कहीं दूसर खेल चो रुचि नहीं है तुझे
0: हाँ और ये चो संग संग ये दूसर खेल चो रुचि तो नहीं है बस तैयार करते हैं रनिंग चो
1: अच्छा हाँ हाँ बल्ले ने पढ़ाई बल्ले ने का मतलब पढ़ से चले
0: ए बे मुझो यही 2024 में बीएससी निस्काले
1: अच्छा हाँ बोले नहीं था ने
0: हाँ ये बस्तर यूनिवर्सिटी में
1: अच्छा तो ये भी जैसन की पढ़ाई तो चो ये भी का विचार खेल वगैरह आगे और कहीं दूसरा तान भाग दर से कि मतलब पढ़ाई चो लाइन के दर से जाले ना
0: ये भी खेल चो लाइन तो शायद ही आए
1: अच्छा
0: तो ये भी तो आजकल जो पन इतना नहीं मिले से तो आजकल तो पढ़ाई करुक पड़वा है अच्छा मेहनत करुक पड़ा है थोड़ी तैयारी
1: हाँ नहीं हाँ उन तो आए थी मतलब का है कि तू जिला स्तर ने बोले बाहरी के लिस्ट ये बोले गोटक तुझ का उपलब्धि आए बोलू बे
0: हाँ
1: आए कि नहीं
0: हाँ
1: तो जैसन कि ये जोन डाजबाल आए नवा खेल आए ये खेल चो जैसन कि तुमके प्रमाण पत्र वगैरह बोल मिल रही होती
0: हाँ
1: है कि नहीं
0: प्रमाण पत्र तो मिल ली
1: मेरे
0: ले मैंने दोनों तान ले
1: अच्छा ये चो कहीं तुम चो कहीं चीज ने तुम चो भविष्य का जो कहीं ये चो माना से प्रमाण पत्र चो
0: हाँ प्रमाण पत्र चो माना चे जैसन आजकल फॉरेस्ट होयला सीजी पुलिस होयला और जित्रो पने पोस्ट निकलते रुआ है आजकल स्पोर्ट कोच टाने आजकल भर्ती करा सोत तो उन ताने खेल लोग के प्राथमिकता दे सोत
1: अच्छा हाँ हाँ बोले न कहीं काम तो ऐसे
0: हाँ।
1: कसन बोले का है कि इनोवा खेल हो ऐसे
0: हाँ।
1: है गाँव चो लोग बोले डाच बाल बोले ने का जाए कि नहीं जानो
0: हाँ।
1: कबड्डी आए क्रिकेट आए फुटबॉल है वॉलीबॉल एक जान हो तो ये नवा खेल आए ये तो बोले अच्छा खेल है आम चो और बस्तर ने और कोनी था स्कूल ने चो बोले आसे का है खेल तो बीती
0: ये चो खेल तो बीती आसे लेकिन मैं उतरो नहीं जाने
1: अच्छा
0: हाँ
1: अच्छा हाँ तुम असन बस्तर संभाग ने कोनी ताने असन स्कूल संग स्कूल स्कूल मन संग असन
0: स्कूल संग तो नहीं करा
1: नहीं
0: रहा
1: होला
0: बस उन्हीं बस जिला हिसाब ने नहीं
1: जिला
0: हो
1: जिला हिसाब ने नहीं हो रहा
0: हाँ
1: तो दक विजय कश्यप तो इतना अच्छा तू जो ये जन नोआ बीती खेल दाज बाल बल्ले ने जो पूरा बल्ले सांगलिस कई लोग नहीं जानते रहला आर तुम बोले जसन की जिला स्तर ने दुई तीन जगह जाऊन बाती बोले ने प्रथम इनाम बोले खेल ने फर्स्ट जिला ये बोल तुम चुका गोटक उपलब्धि आए ताल खूब खूब जुआर ना
0: जुआर
1: ठीक है
2: हल्बी खेल पत्रिका अभी आपने ये कार्यक्रम सुना इसमें आप सुन रहे थे डॉजबॉल खिलाड़ी विजय कश्यप से ली गई भेंट वार्ता भेंट करता थे बलबीर सिंह कच्च ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है आइए अब लोकगीत में सुने लोकनाथ वैष्णव के गाए कुछ खेल गीत

0: लोकगीत में अभी आप सुन रहे थे लोकनाथ वैष्णव और साथियों का गाया हल्बी खेल गीत। इन्हीं का गाया अगला हल्बी खेल गीत हम आपको सुनवाएंगे इस विज्ञापन के बाद।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: लीजिए अब सुनिए लोकनाथ वैष्णव और साथियों का गाया अगला हल्बी खेल गीत।

0: लोकनाथ वैष्णव और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे कुछ हल्बी खेल गीत। ये आकाशवाणी जगदलपुर है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात की 10 बजे है। प्रस्तुत है लोक गीत, इसमें सुनिए सुंदरलाल और साथियों के गाए हल्बी जगार गीत।
3: Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama

ಸಂತ ಆಸು ತ್ರಿಭುವನ ಹರಿಜ ಪದಯಾಸು ಮುಖ ಕಂಠೇ ಸರುಲಾಭವಸು ಬಾಬಾ

0: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से लोक गीतों में आप सुन रहे हैं हल्बी चकार गीत और गायक स्वर है सुंदरलाल और साथियों का। इन्हीं का गाया अगला जगार गीत। सुनने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: लीजिए आप सुनिए सुंदरलाल और साथियों के स्वर में ये हल्बी जगार गीत।

0: लोक गीतों में अभी आप सुन रहे थे सुंदरलाल और साथियों के गाए हल्बी जगार गीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने वाली है। कुछ ही पलों में क्रमशः पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्ण ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्ण ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। आई